आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की आश्विन मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 7 अक्टूबर 2026। 5:57 में हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहामला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहामला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी

0: सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

आराधना यानी सच्चे मन से ईश्वर की उपासना, ये केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है। जब इंसान सच्चे दिल से आराधना करता है तो उसका मन शांत होता है, विचार पवित्र बनते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। राम एक दाता है, भिखारी सारी दुनिया, उनके दर की आस में सारी खड़ी है दुनिया। कोई मांगे धन दौलत, कोई मांगे सुख चैन, कोई मांगे प्रेम प्रभु का, मिट जाए मन का भय। जिसके सिर पर हाथ हो रघुनंदन श्री राम का, उसको क्या डर राहों में तूफानों और शाम का। राजा हो या रंक यहाँ, सब उनकी चौखट आते, अपने अपने मन की गठरी राम चरण में रख जाते। कोई मांगे पुत्र की खुशियाँ, कोई मांगे घर बार, कोई मांगे रोग से मुक्ति, कोई मांगे भव पार, लेकिन राम बिना मांगे भी सबका ध्यान रखते हैं। टूटे दिल की खामोशी को प्रभु पहचान लेते हैं। हम क्या लेकर आए जग में, क्या लेकर जाना है, जो कुछ मिला राम से मिला, फिर किस बात का अभिमान है। सांस सांस में नाम उन्हीं का, रोम रोम में राम, उनकी कृपा से रोशन जीवन, उनका ही सब काम।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: इस गणपति वंदना के साथ ही आज की आराधना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सरदार भगत सिंह के विचार।
1: 131 के 23 मार्च को सायंकाल ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर कांड के राजद्रोह में सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव इन तीन राष्ट्रभक्तों को फांसी दी थी। लाहौर कांड का संबंध पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या से था। ये सैंडर्स वही था जिसने सन 1928 में लाहौर स्टेशन पर साइमन कमीशन का विरोध करने पर महान राष्ट्रसेवी लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसवाई थीं कि एक महीने के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। इन क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने सैंडर्स की हत्या कर उसका बदला चुकाया था। इनमें शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम था, पर वे पकड़े नहीं जा सके थे। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली के असेंबली भवन में बम फेंककर भारत के क्रांतिकारी युवकों का सिंहनाद ब्रिटिश हुकूमत को सुनाया था। पहली बार भगत सिंह ने असेंबली भवन के दरवाजे पर बम फेंकने के साथ इनकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दो नारे लगाए थे। इस बम कांड के बाद उन्होंने अपने आप को वहीं गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला। भगत सिंह ने बलवंत सिंह इस छद्म नाम से पत्रकारिता भी की थी। वे देश की स्वतंत्रता चाहते थे तथा देश में समाजवादी प्रजातंत्र देखना चाहते थे। इसीलिए जिस दल का गठन किया गया था उस दल का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमें भगत सिंह के विचार उनकी पत्रकारिता के लेखों में तथा जेल से लिखी चिट्ठियों में मिलते हैं। उनसे ये प्रकट होता है कि स्वतंत्र भारत की कैसी तस्वीर सरदार भगत सिंह के हृदय में थी। सरदार भगत सिंह अखंड भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। उनके क्रांतिकारी साथियों में भारत के उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी तथा

0: पश्चिमी सभी क्षेत्रों के लोग थे। भगत सिंह मानव मात्र को अपना भाई समझते थे तथा भारत को हिमालय से समुद्र तक एक राष्ट्र मानते थे, जिसमें कई जातियों, धर्मों तथा भाषाओं के लोग निवास करते हैं। इन सभी का राष्ट्र धर्म एक है, ये उनका विचार था। वे आदर्श क्रांतिकारी नेता थे। उनकी स्वतंत्रता ये नहीं थी कि गोरों का शासन समाप्त हो जाए और भारतीय शासन करने लगे, वरन वे चाहते थे कि समाजवादी व्यवस्था कायम हो, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, धर्म और संप्रदाय के नाम पर भोली भाली जनता बेवकूफ न बनाई जाए। वे सिख होकर भी मानव मात्र को अपना भाई समझते थे। 2 फरवरी 1931 को जेल से गुप्त रूप से उन्होंने साथियों के नाम एक पत्र भेजा था। उस समय भगत सिंह के सामने गांधी इरविन समझौते का भी खाका था, जो इन क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं था। उस पत्र की कुछ पंक्तियों में ये कहा जाता है कि भगत सिंह के हृदय में आज़ादी की कितनी बड़ी तमन्ना थी, उसका हमें पता चलता है। राजनीतिक संग्रामों का समझौता एक अत्यावश्यक अंग है। किसी भी कौम के लिए जो किसी अत्याचारी शासन के विरुद्ध खड़ी होती है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी चाल थोड़े समय के लिए धीमी हो तो उसके नेता पीछे पड़ जाएं, किंतु जनता की बढ़ती हुई ताकत समझौतों को ठुकरा कर उस आंदोलन को जययुक्त करा देती है। नेता पीछे रह जाते हैं, आंदोलन आगे बढ़ जाता है। अपने भाई करतार सिंह को उन्होंने पत्र में लिखा था, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है, फानी रहे या न रहे। अर्थात मेरे बलिदान के पीछे स्वतंत्रता के विचारों की बिजली चमकेगी, ये मुट्ठी भर मिट्टी का नश्वर शरीर रहे या न रहे। उनके विचार और भाव बहुत सत्य थे। भगत सिंह के नाम के पीछे आज भी राष्ट्रीयता के भावों की बिजली चमकती है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शहीद आजम भगत सिंह के विचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है कृषि जगत।

0: इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए श्री भास्कर शुक्ल से घनश्याम सिंह की बातचीत, गेहूं की बुआई की उन्नत विधि।
1: किसान भाई, देखा गेहूं हर किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल मानल जात है। यही समय गेहूं के बुआई के समय है। गेहूं के बुआई अगर हम सही ढंग से करत है, पूरी तरह से सावधानी से करत है, तो गेहूं से बढ़िया लाभ हो सकेला। गेहूं के बुआई के उन्नत विधि का हो, अगर केवल जानकार से एक बारे में जानल जाए तो हम समझते हैं कि खेती किसानी का मौज बढ़ जाता है। आज गेहूं के बुआई के उन्नत विधि के जाने खातिर के बारे में बतावे खातिर श्री भास्कर शुक्ला भैया के अपने स्टूडियो में आमंत्रित के लिए बाटी। आपके बहुत बहुत स्वागत बा। हम सबसे पहले जानना चाहत भाई कि जो किसान भाई गेहूं के उन्नत खेती करे चाहत बाटे, तो बुआई का सही समय का हो और कौने कौने प्रजाति के वो बुआई करें जैसे उनके लाभ बढ़िया हो।
2: किसान भाइयों, गेहूं की समय से बुआई और प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें यदि समय से बुआई नहीं होती तो जो पैदावार है उस पे कमी आ जाती है
1: जी।
2: और प्रजाति जो अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त है और किस समय पे है, कुछ समय से बोने वाली प्रजातियां हैं जो कि अक्टूबर के 25 अक्टूबर के बाद से लेकर के 25 नवंबर तक बोई जा सकती हैं अपने क्षेत्र के लिए, जैसे PBW 343 है, PBW 443 है, एक नई प्रजाति PBW 502 आई है, इसके अलावा WH 542 और UP 2338।

0: जी
1: ये समय से बुआई के लिए उपयुक्त हैं, और उसी प्रकार यदि विलंब से किसान बो रहा है, खेत देर से तैयार हुआ है, तो दिसंबर के अंतिम तक मालवी 234, पीबीडब्ल्यू 524, के सीरीज की 7903 और यूपी 2425, ये प्रजातियां अपने क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त हैं।
0: यानी कि भैया शुक्ला जी, कि अगर किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, अगर वो विलंब भी हो जाता तो जर प्रजाति बतौना है आप, अगर उपयोग करें तो हम समझे दे कि खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित ना
1: नहीं होगी
0: जी। और बात आवत है कि गेहूं का बढ़िया पैदावार हो, अच्छा पैदावार हो, एकरे बदे खेत की तैयारी करत के किसान कौन बात का ध्यान दें?
1: गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसान भाई जो सबसे बड़ी चीज ध्यान में रखने योग्य बात है कि उन प्रजातियों को लें जो जिससे धान की उन प्रजातियों को लिया करें जिनसे कि अक्टूबर के माह तक आते आते खेत उनका खाली हो जाए, क्योंकि आम तौर पर धान और गेहूं का ही फसल चक्र यहाँ चलता है
0: जी जी।
1: तो वो ही बहुत लेट प्रजातियों का चयन धान की ना करें ताकि अक्टूबर में खेत उनका खाली हो, पहली बात। दूसरी बात, खेत चूंकि पलेवा देने और पानी लगातार रहने से हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो मिट्टी पलट हलसी या डिस्क हैरो से वो खेत को भुरभुरा और काफी मुलायम कर लें, खेत कर लें। आजकल जो रोटावेटर किसान जानते हैं, एक ऐसा यंत्र आ गया है, रोटावेटर से यदि डायरेक्ट दो बार वो कर लेते हैं तो भी खेत गेहूं बोने के योग्य तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ उसी समय पर यदि गोबर की सड़ी हुई खाद कंपोस्ट 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर अगर संभव हो, मिल सके, तो किसान भाई उसे अवश्य डाल दें। उससे जीवाश्म खेत में जो है ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और गेहूं की क्वालिटी और उसकी पैदावार पे बहुत फर्क कर देती है। इसके अलावा मिट्टी की जांच किसान भाई करवा लिया करें तीसरे साल पर, और उसके अनुसार जो है रासायनिक खादों का उपयोग करें। आमतौर पर किसान भाई प्रति हेक्टेयर 120 केजी नत्रजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटाश जो है प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। और एक गंधक सल्फर एक ऐसा तत्व है जो दाने की चमक और उसकी क्वालिटी को बनाने के लिए उसको 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भी मिला ले।
0: यानी कि मिलाकर किसान भाई देखा कि अपने खेत में सबसे पहले जौन कंपोस्ट खाद हो 50 कुंटल बढ़ के 4 बीघा के हिसाब से। शुक्ला जी, एक बात है कि किसान 50 कुंतल खाद का एक अनुमान ट्रैक्टर के ट्राली से कैसे लगावा?
1: हाँ देखिए, ये किसान आम तौर पे उसका जो चाहे वो ट्रैक्टर की ट्रॉली हो या जैसे उसका जो टोकरी होती है उसमें उसे पता है कि हम 12 से 15 किलो एक टोकरी में आता है, वो अपना जो भी देसी इंतजाम वो कर सकता है उस हिसाब से वो कर ले, या ट्रॉली में उसको पता है कि छोटी ट्रॉली एक सिंगल टायर की है तो उसमें हमारे कितना कुंटल माल आ रहा है, उस हिसाब से अपनी जाँच करके 2-4-10 कुंटल आगे पीछे भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
0: अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने जो नई बिंदु है बात को उसे थोड़ा सा हट के हम आपसे जानना चाहते बटे कि किसान भाई देखें दो ही तरह से गोबर का खाद बनावत हैं। कुछ हमारे जागरूक किसान हैं जो बायोगैस लगो ले बाय उसे खाद लेते हैं, कुछ लोग घूर में सड़ावत हैं, कुछ लोग का करते हैं कि कच्चा गोबर
1: जी
0: ले जाके खेत में डेली की डेली छिटक देते हैं
1: जी।
0: एक सही समुचित खाद का जो उनकी मजबूती खाद में हो वो सही तरीका का हो?
1: देखिए, जो कच्चा गोबर ले जाके खेत में डाल देते हैं वो किसान कदापि ना करें, उससे दीमक की समस्या जो है वो बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: और फिर दीमक जो है वो एक और बड़ी समस्या बन जाएगा, बजाय पैदावार बढ़ाने के उससे जो आम पैदावार ले रहे हैं उससे भी उनको फिर कम मिलने लगेगी और परेशान हो जाएगा किसान। तो आज की तारीख में गोबर की कंपोस्ट जो है वो जहाँ पे यदि वो घूर प्रक्रिया में भी जो कर रहे हैं अपने देसी इलाज वो खेत से दूर जहाँ पर डाल रहे हैं उसको वो जब बिल्कुल समुचित रूप से सड़ जाए, उसमें डिकम्पोजिशन हो जाए जिसको कहते हैं, उसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं, उस टाइम पे करें। और यदि संभव हो तो एजेटोबैक्टर जो जीवाणु खाद आती है वो प्रति 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद से 25 किलो तक में 1 किलो जीवाणु खाद अगर वो एजोटोबैक्टर डाल देते हैं और उसको 6 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो और अच्छी कंपोस्ट तैयार होगी। तो बजाय 50 कुंटल के यदि वो 20 कुंटल भी डालेंगे तो भी उतना काम मिल कर सकती है।

0: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा सजग होए से किसान भाई, देखा कि खाद का मात्रा कम भी खेत में जात हो तब भी लाभ उतना या उसे बढ़िया होता। शुक्ला जी, अगर बुआई किसान भाई करत हैं तो बुआई करत समय कोने कोने बात का ध्यान दें।
1: जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर अपने क्षेत्र में किसान भाई थोड़ा सा अपने परिश्रम और अपनी लेबर को बचाने के वजह से छिटकवा विधाई से गेहूं की बुआई करते हैं। मैं किसान भाइयों से ये बताना चाहूँगा कि छिटकवा विधि से गेहूं की बुआई ना करें, उसके फायदे कम नुकसान ज़्यादा है। एक तो जहाँ पर आपको 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना है, वहाँ पर आपको 150 किलो तक बीज डालना पड़ता है या उससे भी अधिक। दूसरी चीज कि उचित गहराई पे चूंकि बीज नहीं जाता है तो 25-30% जो है बीज आपका नष्ट हो जाता है, वो चिड़िया खा जाती है या उसमें जो है जमाव नहीं होता क्योंकि उचित नमी नहीं पाता। तो इसलिए किसान जब भी बुआई करें तो उसे लाइन में बुआई करें और बीज दर जो है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ही डालें। तो जो 40 किलो तक वो बीघे में डाल देते हैं, जहाँ 25 किलो डालना है तो वो 15 किलो की जो बीज की लागत है वो किसान भाई बचा के अपनी आमदनी में उसे जोड़ सकते हैं। उस रूप से अगर आप देखें,
0: बिल्कुल कह जाते कि लागत में कमी करके अगर लाभ बढ़िया हो तो हम समझे सजग और सही किसान वह है।
1: जी हाँ, और इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पंक्तियों की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर की रखें और गहराई जो है वो ऐसा सेट करें कि वो 5 सेंटीमीटर गहरे पे बीज पड़े तो जमाव जो है संपूर्ण होगा।
0: अच्छा, एक चीज़ और आओ थे कि आज आप लोग भी समय समय पर सलाह किसान भाई के देते रहते हैं कि माटी का जांच करावा, बीज का उपचार करा, कितना जरूरी हो बीज उपचार खेती में?
1: देखिए, गेहूं की फसल में बीज का शोधन और उपचार जी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि गेहूं में जो बीज जनित रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, जैसे कंडुआ है, कनाल बंट, अनावृत है, गिरुई है, इन रोगों से बचाव के लिए आप किसान भाई 2.5 ग्राम थीरम अथवा टेबुकोनाजोल जो है प्रति किलोग्राम की दर से बीज को शोधित अवश्य कर लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल भास्कर शुक्ला भैया, आप हमारे किसान भाई के गेहूं की बुआई के उन्नत विधि बहुत बढ़िया ढंग से बताना है, उम्मीद बा किसान भाई इसे लाभ लिए। आपके ये जानकारी देव खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गेहूं की बुआई की उन्नत विधि कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आपने श्री भास्कर शुक्ल से घनश्याम सिंह की बातचीत सुनी।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, स्तनपान बच्चों के लिए कितना लाभदायक।
1: अर्चना, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आपका।
1: सबसे पहले ये बताइए कि नवजात शिशु के लिए स्तनपान यानी माँ का दूध क्यों इतना जरूरी माना गया है?
2: देखिए, नवजात शिशु के लिए जो स्तनपान है, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो ये है कि एक तो बहुत आसानी से उपलब्ध है, एक्यूरेट टेम्परेचर पे बच्चे को मिल जाता है, सही मात्रा में उपलब्ध होता है, और इसके अलावा जो है बच्चों को ये आसानी से पच जाता है। इससे जो है बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शारीरिक मानसिक विकास होता है, और ये भी एक चीज़ है कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं जैसे ऐसे, या प्रीमेच्योर या मैच्योर बच्चे होते हैं, एक उसके अकॉर्डिंग माताओं का दूध जो है उसका स्वरूप भी बदलता है।
1: अच्छा,
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे बच्चों को लगता है कि प्रीमेच्योर बेबी है तो सिर्फ मेरा क्या दूध पर्याप्त होगा, उसको ऊपर से कुछ देना चाहिए, नहीं। जो भी माताएं हैं, चाहे प्रीमेच्योर या मैच्योर, माओं का दूध जो है वो उसका स्वरूप भी बदलता है विद द एज ऑफ द बेबी।
1: कई बार देखने में आता है कि बहुत सारी माओं को दूध नहीं हो पा रहा है या कुछ समस्या आती है, ऐसे में क्या करना चाहिए?
2: बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग के अस्पताल में भी बच्चे पैदा होने के बाद तुरंत ही भर्ती हो जाते हैं, कभी सीरियस प्रॉब्लम होती है, कभी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने में ही हमको 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। उस स्थिति में जैसे माओं की काउंसलिंग

0: हम लोग स्टार्टिंग से ही करते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि माओ को कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ कि बच्चा वेंटिलेटर पे है या बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, किसी भी परिस्थिति में बच्चे के पेट से हाथों से खून आ रहा है, कुछ भी ऐसी परिस्थितियां हैं, तो उसमें हम माताओं को गाइड करते हैं कि आप सेकेंड डे थर्ड डे से हम मदर को, जैसे ही बेबी स्टेबलाइज होता है थोड़ा, हम मदर्स को NICU में बुलाना शुरू करते हैं। जैसे ही मदर बेबी को टच करती है अपने आप ही दूध आना शुरू हो जाता है मदर्स का,
1: ये नेचुरल प्रोसेस,
0: इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो इसके साथ ही जैसे मदर को हम लोग सिखाते हैं कि आप कुछ कुछ आवर्स में अपना दूध निकालते रहिए, तो वो फिर एक मेंटेनेंस हो जाता है मिल्क का। और कई बार हमारे यहाँ 15 दिन बाद भी, 1 महीने बाद भी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग पे लेकर के गए हैं बच्चा।
1: अच्छा, बीच बीच में हमने सरकारी विज्ञापनों में भी देखा कि सरकार और डॉक्टर्स भी जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं उसको पिलाने पर बहुत जोर देते हैं। क्या ये जरूरी है, और ये कब, क्या तुरंत ही पिलाया जा सकता है?
0: ये तुरंत ही पिलाना चाहिए, जैसे ही कोई भी डिलीवरी होती है तुरंत ही 1 घंटे के अंदर, नॉर्मल डिलीवरी में 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, इसीलिए उसको गोल्डन आर भी कहते हैं हम लोग। पहला गाढ़ा कोलेस्ट्रम दूध है वो बच्चे को तुरंत मिल जाता है, उससे बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है, और होता वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है लेकिन फिर भी बच्चे के लिए वो पर्याप्त होता है। बच्चे को ऊपर से और भी कुछ साथ में दूध वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना अमाउंट बच्चे को नीडेड होता उतना चाहिए होता उतना वो होता है।
1: मतलब वो अपने आप में
0: इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है, बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से तुरंत ही बचाने के लिए शुरू कर देता है वो अपने।
1: इसी प्रश्न पर मैं आने वाला था कि ये प्रतिरोधक क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। क्या जो शुरुआती बीमारियां अक्सर आज देखने में आती हैं जैसे निमोनिया, डायरिया, इससे भी वो सुरक्षा प्रदान करता
0: हाँ,
1: है?
0: इसमें बेसिकली कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो, मतलब कोलेस्ट्रम इज रिच इन एंटीबॉडीज लाइक सिक्रेटरी IgA, इसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसमें लाइसोजाइम होते हैं, इसमें बाइफिडोबैक्टीरियम होता है, इसमें लैक्टोफेरिन होता है, और अच्छी खासी इम्यूनिटी स्टार्टिंग से ही बच्चे को प्रोवाइड करता है जिससे बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता जिसके जिससे बढ़ जाती है, बीमारियों से बचाव होता है।
1: कोई एक निश्चित अवधि है कि इस अवधि तक बच्चों को स्तनपान कराते रहना चाहिए, 5 महीने, 6 महीने?
0: आइडियली एक्सक्लूसिव 6 महीने तक हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए,
1: जी
0: और उसके बाद भी कराते रहना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने के साथ भी जो है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखा जाता है, और आप 2 साल 3 साल तक करा सकते हैं बशर्ते कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे।
1: जी
0: कई बार उसमें गलतफहमी में माएँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती जाती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पर ध्यान नहीं देती, अलॉन्ग विथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कि बच्चे को संपूर्ण पोषण पूरी तरह से मिले, माँ के दूध के साथ अन्य आहार भी देना चाहिए।
1: ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग?
0: कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जैसे कि 6 महीने के बाद जो बच्चों का की ग्रोथ हो रही है उसके लिए आप सिंपल खाली माँ के दूध से या ऊपर के दूध से आप बच्चे को पोषण प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब जो नॉर्मल खाना हम लोग अपने खाने में डेली यूज़ में है होता है कि नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी प्रोटीन वसा का जो भी हम स्रोत ले रहे हैं वो बच्चों को भी स्टार्ट करना चाहिए, तभी उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो कम्प्लीट होती है। तो अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम्प्लीट करनी तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में उनको दाल का पानी, चावल का माड़, वेजिटेबल सूप्स हैं, ये सब चीज़ें, दलिया, खिचड़ी, और धीरे धीरे करके उनका गाढ़ापन बढ़ाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके खाना बढ़ाते हैं और बच्चे को एक नॉर्मल डाइट पे ले आते हैं।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का पहला भाग, जिसका विषय था स्तनपान बच्चों के लिए कितना लाभदायक। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे निरीक्षक साइबर क्राइम अर्जुन द्विवेदी एवं उप निरीक्षक राहुल कुमार से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग, विषय है साइबर क्राइम। रात 9:30 चर्चा का विषय है कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:00

31 मिनट पर आप सुनेंगे हमारा खास कार्यक्रम बोलते नगमे। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी वंदना राठौर और नेहा गुप्ता। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे। इसके बाद 7:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 8:45 पर और 9 बजाने दीजिएगा फिल्म संगीत का।

0: साज चौरसिया का बांसुरी वादन है। नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 8:45 पर और 9 बजाने दीजिएगा फिल्म संगीत का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर आपको सुनवाएंगे एस के घोष के गाए भजन और गीत। सुबह 10:30 पर होगा लोकगीत का कार्यक्रम, कलाकार राम कुमार निर्मल और साथी। एक ही कलाकार कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 11 बजे और 11:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आपको सुनवाएंगे उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश 12:30 पर। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी नीतू पांडे की वार्ता निजता बनाम सोशल मीडिया। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा 2:30 पर। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुन सकते हैं युववाणी रोज की तरह शाम 5:15 से। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे राम कुमार निर्मल और साथियों के गाए लोकगीत। ये थे कार्यक्रम विवरण।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिः गी पामला च अद्य भारत मंडपम् इत्यत्र द्वितीयं भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलनं संबोधयिष्यतः। भारत ईएफटीए व्यापारार्थिक सहमति संधेः प्रथम वार्षिकोत्सवस्य अवसरे सम्मेलनमिदं आयोज्यते। अस्मिन् सम्मेलने भारतस्य तथा ईएफटीए संघटने अंतर्भूतानां स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड लिक्टेनस्टाइन चेत्येतेषां देशानां वरिष्ठाः प्रशासकीय अधिकारिणः उद्योगक्षेत्रस्य नेतारः प्रमुखहितधारिणश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यम् आर्थिक सहकारं सुदृढीकर्तुं व्यावसायिक सहमतिं प्रवर्धयितुं तथा व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी सहकार नवोन्मेष चेत्येतेषु क्षेत्रेषु नूतनानाम् अवसराणां सृजनमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सार्वजनिक जीवन यात्रा अद्यैव आरब्धा आसीत्, यस्याः अद्य 25 वर्षाणि पूर्णानि भवन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः च अद्य विकसित भारत संकल्प सभां संबोधयिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणः तथा भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य संबोधनाभ्यां सह दलस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः अपि उत्तर प्रदेशस्य विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: विशद वृत्तान्ताय एक्स माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मंचे च न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
1: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बहुमाध्यम सम्बद्ध परिवहन योजनां सुव्यवस्थितां कर्तुं एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य स्थापनायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्नस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् इदं प्राधिकरणं 10-वर्षीय योजनावधिम् आधृत्य दीर्घकालिकं राष्ट्रीय परिवहन महायोजना

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायन स्वर उत्तरा केलकर, उषा मंगेशकर और साथियों का था। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। पहली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी से ली गई ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं किशन कन्हैया फिल्म से ली गई एक भक्ति रचना जिसे लिखा इंदिवर ने। धुन तैयार की राजेश रोशन ने, गाया है नितिन मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व पर पारित किया बधाई प्रस्ताव। आज सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन तथा एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को भी दी मंजूरी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के 8 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। और 5 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए कल एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। आज वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिक है। बहुत कम दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पर किसी एक लीडर को जनता ने बार बार समर्थन दिया है, और ये समर्थन उनकी कार्यपद्धति के कारण, उनकी सही नीतियों के कारण और बहुत अच्छी शुद्ध नीयत के कारण जनता ने ये समर्थन दिया है।
0: मंत्रिमंडल ने कल एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दे दी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी तथा प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी।
1: रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। नोएडा के रहने वाले संजीव शर्मा ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर आभार जताते हुए इसे

0: औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
1: ये सरकार का सराहनीय कदम है, इससे जो SMEs हैं इनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लॉन्ग टर्म पैसा उनको मिलेगा जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा और इससे ग्रोथ इसी को मिलेगी, और मुझे लगता है कि ये SMEs के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्रिमंडल के SME ग्रोथ फंड की स्थापना के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लघु एवं मध्यम उद्यमों को विस्तार, आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा के 25 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक खेती से कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
2: देश में 24 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF को 2024 में 2481 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। यह वैज्ञानिक सत्यापन और खेत स्तरीय मार्गदर्शन के साथ साथ पशुधन, विविधीकृत फसल प्रणाली और पारंपरिक भारतीय ज्ञान से एकीकृत रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेचुरल फार्मिंग पर बल देते हुए कहा कि नेचुरल फार्मिंग से केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है।
3: भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है।
2: प्राकृतिक खेती करने वाले वाराणसी के किसान ओम प्रकाश पटेल का कहना है कि प्राकृतिक खेती करने से रासायनिक पदार्थों से होने वाला नुकसान कम होता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।
4: मैं पिछले 13 वर्षों से जैविक प्राकृतिक खेती से अपना कार्य कर रहा हूं। तो प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी खेती है, हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, ऐसी खेती करके अपने लोगों के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। इस पर हमें काम करने की जरूरत है और करना भी चाहिए।
2: प्राकृतिक खेती भारतीय कृषि को अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनाने की दिशा में अग्रसर है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कल भाजपा के 8 उम्मीदवारों ने लखनऊ स्थित विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।
5: भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और प्रदर्शित भी करती है। अगर मेरे 8 प्रत्याशियों को आप देखेंगे तो सभी हमारे कार्यकर्ता चुन करके आए हैं और सभी जाति से और सभी क्षेत्र से जल करके आए हैं।
0: प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय बर्नार्ड पारमेलिन ने 65 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया।
6: प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल सुरक्षा

0: सुरक्षा क्षेत्र, बोर्डिंग गेट्स सहित विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर प्रदेश के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा मौजूद रहे। इस एयरपोर्ट को स्विस कंपनी ने विकसित किया है। इस दौरे से एविएशन के साथ साथ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में स्विस निवेश की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए 5 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मुकाबले में भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 8 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 14 ओवर और 4 गेंद पर ही कप्तान श्रेयस अय्यर के नाबाद 102 रनों की शतकीय पारी की बदौलत जीत दर्ज कर ली। मथुरा के वृंदावन में कल देर रात पानी के अंडरग्राउंड टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से एक गुरुकुलम के 4 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र की स्थिति गंभीर है। वहां के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि इस हादसे की मजिस्ट्रेट से जाँच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व पर पारित किया बधाई प्रस्ताव। आज सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन तथा एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को भी दी मंजूरी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के 8 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। और 5 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भैरवी में बांसुरी वादन, वादक कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

बांसुरी पर बजाया राग भैरवी अभी आपने सुना। वादक कलाकार थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। आपके साथ तबले पर संगत की श्री महावीर प्रसाद भट्ट ने। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप ट्यून कर सकते हैं FM 100.3 MHz। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हमारे प्रसारण उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है DD फ्री डिश।

अपने सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण संवाद दिवस और नेशनल एलईडी लाइट डे। ये विषय आप सुन सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। समय है 8:45, तो सुनना न भूलिएगा नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम। वॉइस ऑफ प्रयागराज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे निरीक्षक साइबर क्राइम अर्जुन द्विवेदी एवं उप निरीक्षक राहुल कुमार से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग, जिसका विषय है साइबर क्राइम। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे राम कुमार निर्मल और साथियों के गाए लोकगीत, देवदत्त तिवारी से नीति वचन और डॉक्टर अजय कुमार तिवारी की वार्ता का विषय होगा आलू और मटर की सहफसली खेती। बोलते नगमे हमारा ये खास कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7:31 से, जिसे पेश करेंगी नेहा गुप्ता कार्यक्रम प्रमुख और वंदना राठौर।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। समाचार प्रभात की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
3: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
4: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है।

0: पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
1: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
2: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
1: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की दो अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
4: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
3: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष

0: कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोर्वोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोबड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में

0: as the pioneer. AIR Marshal Ashutosh Dixit to be next IAF chief informs the pioneer. And finally, master storyteller Jeffrey Archer dies at 86, reports the Financial Express. The paper writes, British novelist, former politician leaves a lasting literary legacy. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat Ji Ramji scheme, marking 41% expansion from the previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हुकूमत के एक सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी काबीना ने इस अहम कामयाबी को यादगार बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। हुकूमत ने विकसित भारत जीरामजी स्कीम के तहत काबिल इजाजत 375 कामों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले के 266 कामों में 41% तौसी की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोबाइल मुवासलात एसोसिएशन के आलमी निजाम के बोर्ड अरकान के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत वाली और लगातार तरक्की का आलय कार होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन 2001 में जनाब मोदी ने पहली मरतबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए
4: इस तारीखी कामयाबी की याद में मरकजी काबीना ने करारदाद मंजूर की, जिसमें उनके तर्ज हुक्मरानी के सफर को उजागर किया गया। इत्तलातो नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि जनाब मोदी की 25 साल मुद्दत कार भारतीय जमहूरियत की मजबूती का सबूत है। उन्होंने कहा कि एक आम खानदान से ताल्लुक रखने वाला ऐसा शख्स जिसने खुद को मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और मुसलसल मुल्क की खिदमत कर रहा है, जमहूरियत की ताकत, पायदारी और पुख्तगी की एक बड़ी मिसाल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने ऐसी तारीख रकम की है जो किसी भी जमहूरी मुल्क में मुनफरिद है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहां आवाम ने मुस्तकिल एक ही रहनुमा पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें अपनी हिमायत से नवाजा है। उनके मुताबिक ये हिमायत उनके काम करने के तरीके, दुरुस्त पॉलिसियों और वाजह और नेक इरादों की वजह से हुई। वजीर मौसूफ ने मरकजी काबीना की करारदाद के 10 अहम निकात को उजागर किया। पहला नुकता तरक्की के विजन को गुजरात से वसत देकर पूरे मुल्क तक फैलाने से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने प्रोग्रामों और पॉलिसियों के जरिए मुतअद्दिद तब्दीलियां मुतारिफ कराई, जिनके बाइस उन्हें दुनिया भर में एजाज से नवाजा गया। गुजरात के तरक्याती मॉडल को दुनिया भर में तस्लीम किया गया और सराहा गया, जिसके बाद इसे पूरे भारत में नाफिज किया गया। दिल्ली से कुमांदे पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
2: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि एक प्रधान सेवक के तौर पर जनाब मोदी के सफर से सबकी शमूलियत वाली तरक्की का विजन एक मुल्कगीर मिशन में तब्दील हो गया है, जिसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास

0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हुकूमत के एक सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी काबीना ने इस अहम कामयाबी को यादगार बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। हुकूमत ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत काबिले इजाजत 375 कामों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले के 266 कामों में 41% तौसी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोबाइल मुवासलात एसोसिएशन के आलमी निज़ाम के बोर्ड अरकान के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत वाली और लगातार तरक्की का आलाकार होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज और मैं हूं आपका मेजबान उज्जवल सिन्हा। कहते हैं जहां संवाद होता है वहां समाधान की उम्मीद जिंदा रहती है और जहां संवाद समाप्त हो जाता है वहां दूरियां जन्म लेने लगती हैं। आज का दिन हमें इसी खूबसूरत विचार की याद दिलाता है कि बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का माध्यम है। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण संवाद दिवस की। दुनिया में भाषाएं अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं, विचार अलग हैं, लेकिन इंसान की एक चाहत लगभग समान है, शांति, सम्मान और बेहतर जीवन। कई बार विवाद किसी बड़े मुद्दे से नहीं बल्कि एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू होता है। एक शब्द गलत समझ लिया जाता है, एक बात अधूरी सुन ली जाती है और फिर वही छोटी सी बात दूरी में बदल जाती है। लेकिन अगर उसी क्षण हम रुकें, सुनें, समझें और बात करें तो शायद कहानी बदल सकती है। संवाद क्यों जरूरी है? संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं है, संवाद का पहला नियम है दूसरे को सुनना। जब हम किसी व्यक्ति की बात बिना बीच में टोके सुनते हैं तो हम केवल उसके शब्द नहीं सुन रहे होते, हम उसके अनुभव, उसकी चिंता और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया है, बहस में हम ये साबित करना चाहते हैं कि कौन सही है, लेकिन संवाद में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। परिवार में संवाद हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं, समाज में संवाद हो तो गलतफहमियां कम होती हैं, देशों के बीच संवाद हो तो तनाव को बातचीत के रास्ते सुलझाने की संभावना बढ़ती है। इसलिए बात कीजिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि शांतिपूर्ण संवाद ही

उन्नति की पहली सीढ़ी है। आज पूरी दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। किसी भी मतभेद का अर्थ ये नहीं कि इंसानियत हार जाए। हम अलग सोच सकते हैं, अलग भाषा बोल सकते हैं, अलग संस्कृति से आ सकते हैं, फिर भी एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। असहमति दुश्मनी नहीं है। अलग विचार होना नफरत का कारण नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण संवाद हमें यही सिखाता है कि हम अपनी बात मजबूती से कहें, लेकिन दूसरों की आवाज़ के लिए जगह भी छोड़ें।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए

0: पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूं आपका मेजबान उज्जवल सिन्हा। जहां रोशनी उम्मीद बन जाए, जहां हर किरण बचत का संदेश लाए, वहीं से शुरू होती है एक बेहतर कल की कहानी। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम में कुछ बातें नेशनल एलईडी लाइट डे के बारे में। एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक ऐसी प्रकाश तकनीक है जो पारंपरिक बल्बों की तुलना में कम बिजली में प्रभावी रोशनी उपलब्ध करा सकती है। आज एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, स्ट्रीट लाइट, डिस्प्ले और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल हो रहे हैं। श्रोताओं, बिजली की बचत सिर्फ हमारे बिजली के बिल को कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी योगदान देती है। एलईडी तकनीक की प्रमुख खूबियां हैं कम बिजली की खपत, लंबी उपयोगी आयु, कम गर्मी पैदा करना, अलग अलग रंग और रोशनी के विकल्प, घर, कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों में व्यापक उपयोग, यानी छोटी सी तकनीकी पसंद भी ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक कदम हो सकती है।

0: याद रखिए, रोशनी वही अच्छी जो आँखों को सुकून दे, घर को जगमगाए और ऊर्जा को भी बचाए।
1: ये चांद सा रोशन

0: इसी के साथ आज का नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम समाप्त करने की अपने मेजबान उज्ज्वल सिन्हा को इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अभय कांत तिवारी। कार्यक्रम के लिए अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8004926250, यानी 8004926250। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी प्रयागराज से अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति मजरू की गीत रचना, आर डी बर्मन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम आंचल।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे हैं आनंद बख्शी की गीत रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम उपहार।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा दो गाना। संगीत कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम ललकार।

0: उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
1: आगामी चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए वाराणसी में ईवीएम के फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत निर्वाचन के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी शामिल रहे। इस कार्यशाला में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और FLC सुपरवाइजर शामिल हुए। कार्यशाला में अधिकारियों को ईवीएम की जांच से लेकर मार्क पोल और FLC की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए नोएडा में कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि FLC में चुनाव में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT की बारीकी से जांच की जाती है। मशीन के प्रत्येक बटन और उसकी कार्यप्रणाली को परखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी मशीन चुनाव में इस्तेमाल से पहले पूरी तरह दुरुस्त है। FLC के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लिखित सूचना देकर आमंत्रित किया जाता है। उनकी मौजूदगी में मार्क पोल कराया जाता है जिससे प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालकर मशीन के परिणाम का मिलान किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य ईवीएम की कार्यप्रणाली को पारदर्शी तरीके से परखना और राजनीतिक दलों की संतुष्टि सुनिश्चित करना है। कार्यशाला में अधिकारियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं दी गई बल्कि मशीनों पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराई गई। अधिकारियों ने स्वयं ईवीएम को कनेक्ट करने, मार्क पोल कराने और मशीन के परिणाम की जांच करने की प्रक्रिया को समझा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया,
2: भारत निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग जी, उन्होंने न केवल FLC के बारे में बताया बल्कि निर्वाचन जो आगे होने वाला उसकी तैयारियां किस प्रकार करनी है आने वाले समय में उसके बारे में भी अपना मार्गदर्शन सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया।
1: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी एवं टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में होटल ताज में नदेसर में TWA टूरिज्म कैलेंडर ऑफ उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डिजिटल काशी, ग्लोबल काशी, AI से पर्यटन को नई उड़ान विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा रहे। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में तकनीक और नवाचार के बढ़ते महत्व पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष R.K. चौधरी रहे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के माध्यम से काशी सहित उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में काशी की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन स्थलों और स्थानीय उत्पादों को डिजिटल माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने तथा पर्यटन के क्षेत्र में AI के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही TWA टूरिज्म कैलेंडर ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को नए स्वरूप में प्रस्तुत करने की पहल की गई। उन्होंने बताया कि
3: जो पर्यटन स्थल हैं, उनका विकास बहुत जरूरी है। हमें अपने पर्यटन स्थलों पर आधुनिक सुविधाएं तो देनी चाहिए, लेकिन उन आधुनिक सुविधाओं के नाम से हम अपनी परंपराओं को नष्ट न होने दें, तब उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है।
1: विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीचौरा से हुआ। पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रैली को रवाना किया। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में निकली रैली में स्वच्छता कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, जल भराव की रोकथाम, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने और संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए प्रत्येक नागरिक की सहभागिता जरूरी है। अभियान को जन आंदोलन का रूप देकर ही डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान स्वास्थ्य टीमें घर घर पहुंचकर लोगों को संचारी रोगों के लक्षण, बचाव और समय पर उपचार के बारे में जानकारी देंगी। संवेदनशील क्षेत्रों में मच्छर जनित रोगों की विशेष निगरानी की जाएगी। उन्होंने लोगों से घर और आसपास पानी जमा न होने देने तथा बुखार होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय स्वास्थ्य केंद्र पर जांच और चिकित्सा

0: की परामर्श लेने की अपील की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर बनारस रेल इंजन कारखाना में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाप्रबंधक आशुतोष पंत के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रमों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बरेका प्रशासन भवन के स्वागत हॉल में स्वच्छता शपथ के साथ हुई। महाप्रबंधक ने अधिकारियों, कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बलों के जवानों, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा संगठन, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। सभी ने अपने कार्यस्थल, घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने तथा दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत गोल्फ कोर्स से प्रशासन भवन तक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विवेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली सूर्य सरोवर, बैंक ऑफ बड़ौदा और बरेका चिकित्सालय होते हुए प्रशासनिक भवन पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, आरपीएफ जवान, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा संगठन, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा छात्र छात्राएं शामिल रहे। प्रतिभागियों ने स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नारों और तथ्यों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।
1: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीराम राय का।
2: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गाजीपुर में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वास्थ्य शिविर में गाजीपुर में स्वास्थ्य मेला लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने पंजीकरण कराया और चिकित्सकों की टीम ने उनका इलाज किया। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बताया,
3: स्वास्थ्य सेवा शिविर की खास बात यह है, यहाँ सभी दवाइयाँ निःशुल्क मिलेंगी, पूरी जांचें निःशुल्क होंगी और ये मरीज को उच्च श्रेणी के अस्पताल की आवश्यकता है तो जांचों उपरांत उसको संबंधित कल कॉलेज में ले जाकर उसका ऑपरेशन भी निःशुल्क कराया जाएगा।
2: वाराणसी में 24 से 26 अक्टूबर तक प्रस्तावित एयर शो में गाजीपुर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एयर शो के लिए भारतीय वायुसेना के 6 M1 17 हेलीकॉप्टर गाजीपुर के अंधव एयरपोर्ट पर तैनात किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने भी अंधव एयर स्ट्रिप को तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि करीब 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी की साफ सफाई एवं आवश्यक मरम्मत कराई जा रही है। अंधव स्थित ऐतिहासिक एयर स्ट्रिप का निर्माण वर्ष 1941-42 के दौरान हुआ था। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि
4: एयरफोर्स द्वारा वाराणसी जनपद में होगा अक्टूबर लास्ट वीक में, उसके अंतर्गत जनपद गाजीपुर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को यहाँ स्टेशन किया जाएगा, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में इसमें एक फ्लाइंग अकेडमी भी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाएगा।
2: बालिका शिक्षा के साथ साथ बालिका सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर है, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गांधी जयंती पखवाड़े के अवसर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय मोहम्मदाबाद, रंजीत कुमार जायसवाल और मोहम्मदाबाद थाना के संयुक्त तत्वावधान में पास्को एक्ट 2012 के विशेष प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मिशन शक्ति की महिला प्रचार सामग्री वितरित किए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के बालक बालिकाओं द्वारा नाटक प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को पास्को एक्ट के प्रति जागरूक किया गया। गत दिनों गाजीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया तथा पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। जमानिया थाना क्षेत्र के सिंचाई विभाग के खंडहर में चल रही फैक्ट्री से 9 देसी तमंचे, कई अर्धनिर्मित तमंचे एवं अवैध असलहा बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गाजीपुर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप भी पकड़ी। इस दौरान गाजीपुर के सैदपुर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय शराब तस्कर की गिरफ्तारी की तथा उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब तथा मोबाइल फोन भी बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गाजीपुर के मोहम्मदाबाद ब्लॉक सहित सभी 16 ब्लॉक सभागारों में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कैंप लगाकर विविध आयोजन किए गए। एक सप्ताह तक चले इस आयोजन में ब्लॉक सभागारों में गर्भवती माता की गोद भराई एवं बच्चों के अन्न प्राशन संस्कार का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अन्न से निर्मित विविध खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत गाजीपुर जनपद में आयोजन कार्यालय एवं एक निजी डिग्री कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला पंचायत की प्रशासक ने मेले में रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर गाजीपुर में जन सेवा से देश सेवा कार्यक्रम के तहत सूचना विभाग ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं

0: योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत एवं जिला पंचायत के प्रशासक ने संयुक्त रूप से किया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे अगले
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सामेईन को निकहत सिद्दीकी का आदाब। सामेईन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला मिर्ज़ा हादी रुसवा नावेल उमरावजान अदा के आईने में, और कलामी शायर के तहत सुनिएगा जनाब आफताब अहमद अंसारी से उनका कलाम। सबसे पहले समाद फरमाइए डॉक्टर जूही बेगम से मकाला मिर्ज़ा हादी रुसवा नावेल उमरावजान अदा के आईने में।
3: मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का शुमार उर्दू के नाबग़े रोज़गार उदबा में होता है। हमा जहत शख्सियत के मालिक रुसवा बयक वक्त मुफक्किर, फ़लसफ़ी, रियाजी दां और मौसीकी के रमज़ शनास थे। उनकी इल्मी इस्तेदाद ने उनकी तख्लीकी बसीरत को गहराई गिराई अता की। यही वजह है कि उनका तख्लीकी जहान जज्बात व एहसासात के साथ साथ फ़िक्र व दानिश की रोशनी से भी मुनव्वर है। मिर्ज़ा हादी रुसवा का ताल्लुक नावल के हवाले से उर्दू अदब के उन अजीम मेमारों में होता है जिन्होंने सिर्फ नावल को इस्तेहकाम बख्शा। उन्होंने नावल निगारी की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब उर्दू फिक्शन दास्तानवी असरात से मुकम्मल तौर पर नजात हासिल नहीं कर सका था। रुसवा ने अपनी खलाकाना सलाहियत, फनी शऊर और हकीकत पसंदाना तर्ज इजहार के जरिए उर्दू नावल को एक नई फिक्री और जमालियाती जहत अता की। उन्होंने इस सिन्फ का रिश्ता न सिर्फ जिंदगी की हकीकतों से जोड़ा बल्कि उसे अजमत, वक़ार, फनी पुख्तगी और नफसियाती बसीरत अता की। अगरचे उर्दू नावल के इब्तदाई नकूश डिप्टी नज़ीर अहमद, रतन नाथ सरशार और अब्दुल हलीम शरर के यहाँ मिलते हैं, लेकिन नावल को इंसानी शख्सियत के दाखिली रमूज व असरार, मुआशरती तजादात और तहजीबी जवाल के शऊर से मुतारफ कराने का कारहाए नुमाया रुसवा ने अंजाम दिया। रुसवा का अहद सियासी, तहजीबी, मुआशी, समाजी हर सतह पर बहरान का शिकार था। बिलखसूस 1857 के बाद हिंदुस्तान की मुआशरती और तहजीबी जिंदगी शदीद तगैरात से गुजर रही थी। कदीम अकदार मिट रही थीं और नई तहजीबी क़ुवतें सर उठा रही थीं। रुसवा ने इस उबूरी दौर के इंसानी और तहजीबी मसाइल का बनज़रे गैर मुताला किया और उन्हें अपने नावलों में नहायत हकीकत बीनी से पेश किया। यूं तो रुसवा का तख्लीकी सरमाया इफ़्शाए राज़, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम जैसे नावलों से मामूर है, लेकिन उनकी शोहरत का तमाम तरदारो मदार उनके शोरह आफाक नावल उमराव जान अदा पर है। उर्दू नावल की तारीख में बाज़ तसनीफ़ात ऐसी हैं जो महज अदबी सरमाया नहीं बल्कि अपने अहद का तहजीबी, समाजी और तारीखी दस्तावेज भी हैं। उमराव जान अदा का शुमार ऐसी ही तख्लीकात में होता है। अपने नावलों को अपने ज़माने की तारीख कहकर पुकारने वाले रुसवा ने उमराव जान की सरगुजश्त के पसे पर्दा लखनऊ की उस तहजीब की दास्तान बयान की है जो अपने हुस्न व लताफत के बावजूद जवाल के दहाने पर खड़ी है। महफिलें, मुशायरे, मौसीकी, रक्स व सुरूर, ज़बान की शाइस्तगी और मुआशरती आदाब ये सब मौजूद हैं, लेकिन उसके बतन में एक टूटती हुई दुनिया की आहट भी सुनाई देती है। रुसवा ने किसी मुअर्रिख की मानिंद नहीं बल्कि एक हसास फनकार की हैसियत से लखनऊ की जवाल पजीर तहजीब, तवायफाना और ऐश परस्ताना मुआशरत, इंसानी जज्बात और नफसियाती कैफियात को इस फनकाराना महारत से पेश किया है कि नावल उर्दू अदब के नवादिरात में शामिल हो गया। मिर्ज़ा हादी रुसवा की अदबी शख्सियत और उनकी नावल निगारी के फनकाराना महासिन को हम उमराव जान अदा के आईने में बखूबी देख और समझ सकते हैं। उमराव जान अदा पहली मरतबा 1899 में शाया हुआ। ये नावल लखनऊ की एक मशहूर तवायफ उमराव जान की जिंदगी की दास्तान पर मबनी है। उमराव जान अदा खुद अपनी जिंदगी की रुदाद रुसवा से बयान करती है। उमराव जान को जिसका असल नाम

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार SK घोष। इनके स्वर में पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं सूरदास जी की लिखी एक भक्ति रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा जा रहे हैं एस के घोष का गाया एक और भजन, जिसे लिखा योगेश प्रवीण ने।

सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार थे एस के घोष। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष और पिछले 12 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की भी सराहना की। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पूर्व में शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: पेश है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।
1: श्रोता बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में। और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी साइबर फ्रॉड की, साइबर क्राइम की, कि इस साइबर फ्रॉड में किस किस तरह के अपराध आते हैं। हमने बात की थी 112 के बारे में, हमने बात की 1930 के बारे में। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं अभयकांत तिवारी जी और गेस्ट के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर अर्जुन द्विवेदी जी हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, और राहुल जी हैं, आप सब इंस्पेक्टर हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हम लोग जब बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, आपने कहा कि भाई 1930 पे केस रजिस्टर करा दें, फिर बात हो रही थी कि भाई 24 घंटे के अंदर करा देना है, लेकिन जो विक्टिम है उसको लगता है कि पैसे फ्रीज हुए कि नहीं उसको पता नहीं चलता, उसको कैसे पता चलेगा?
3: बिल्कुल, इस बारे में जब कोई भी विक्टिम जब 1930 पर या वेबसाइट के माध्यम से कंप्लेन करता है तो एक अपना नंबर रजिस्टर कराता है, तो अगर पैसे फ्रीज होते हैं या लीन होते हैं तो उसको मैसेज जरूर जाते हैं। दूसरी बात, और चाहे तो संबंधित थाने पर, जिस थाने की शिकायत है उस थाने पर भी जाकर पता कर सकता है कि उसके कितने पैसे फ्रीज हुए हैं।
1: अच्छा, अगर वेबसाइट पे साफ ना दिख रहा हो थाने पर भी, तो क्या उसे इंतजार करना चाहिए? कितने दिनों वो इंतजार में रह सकता है?
3: इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस है जो लीन या फ्रीज का जो प्रोसेस है वो बैंक द्वारा की जाती है, और हम लोग लगातार बैंक से संपर्क करके कोशिश करते हैं कि वो फ्रीज की कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाए।
1: अच्छा, एक और मामला प्रकाश में आया कि ऐसे अखबारों में हमने पढ़ा था कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ, उसने पैसे लिए और तुरंत ये जो लेयरिंग होती है इस अकाउंट से उस अकाउंट, उस अकाउंट से उस अकाउंट, एक आम आदमी के समझ के बाहर की बात है कि वो जो फ्रॉडस्टर होता है अपने अकाउंट में लेने के बाद और कई अकाउंट्स में भेज देता है और एटीएम से तुरंत निकाल भी लेता है। तो भाई पैसे तो बचे नहीं, फिर जो विक्टिम है उसकी एक छोटी सी गलती है, छोटी सी ही, क्या पैसे वापस थोड़े बहुत मिलते हैं या नहीं?
4: निश्चय ही मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेयरिंग को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ
1: जी,
4: तो फ्रॉडस्टर ये चाहता है कि वो तमाम खातों में बढ़ जाए जिससे पुलिस आसानी से रीच ना कर सके, तमाम खातों में बांट के छोटे छोटे खातों में पहुंचा के फिर वहां से विड्रॉल या एक्सपेंस करते, खर्च पे दिखा देते हैं। लेकिन पुलिस जब व्यवस्था शुरू करती है तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, जहां तक वो पैसा गया हो, जहां से वो विड्रॉल होता है वहां तक पहुंचती है। सामान्यतः ये भी देखा गया है कि ये खाते एक लीन अकाउंट आता है, ये गरीब, किसान, रिक्शा चालक, आदिवासी महिलाएं, आदिवासी पुरुष, ऐसे लोगों के खातों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब विवेचना करते हुए पुलिस वहां तक पहुंचती है जिनके खातों में पैसा गया है, तो यही बात प्रकाश में आती है कि ये सब्जी वाला है, ये ठेले वाला है, ये आदिवासी है, ठीक है, एक्चुअल फ्रॉडस्टर उससे दूर है। फिर अकाउंट धारक के पास जब पहुंचते हैं तब वो ढूंढ के बताता है कि साहब मेरे अकाउंट का इस्तेमाल अमुक व्यक्ति विवेक कुमार द्वारा किया जा रहा था, तो वो डायरेक्ट तो हमारे नक्शे में नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति हमें पहुंचाता है, तब हम फ्रॉडस्टर को ला पाते हैं।
5: अर्थात किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट को लोग एक तरह से इस्तेमाल करते हैं।
4: करेक्ट है, ये एकदम मतलब सही बात है, अंतिम सत्य है कि कोई भी फ्रॉडस्टर अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेता है, वो ऐसे ही अकाउंट का इस्तेमाल करता है जो जीरो बैलेंस वाले, ठीक है। ये भी बात प्रकाश में आई है कि उनको इस लालच में कि आपको हम 1,000 रुपया दे देंगे, इतना पैसा आपके खाते में आएगा, हम निकाल लेंगे, इस बात के लिए आपको 1,000 रुपया दे देंगे, जब पुलिस पहुंचती है तब ये बात तो बताता है कि भाई राम कुमार ने हमको 1,000 रुपये दिए थे और उन्होंने ये पैसे मंगा के निकाले थे, उन्होंने बताया था कि मेरी बेटी का इलाज का पैसा है और मेरे रिश्तेदार के यहाँ से आ रहा है। लेकिन पुलिस सब चीज़ें जानती है और वो पहुंचती है आखिरी व्यक्ति तक।
1: अच्छा, कई एक स्टूडेंट के साथ मैंने ये पढ़ा कि वो उसके स्कॉलरशिप के पैसे आए थे, कुछ 2 लाख रुपए गवर्नमेंट से आए थे, और उसने इंस्टाग्राम देखना शुरू किया, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, यूज करते हैं, गलती से कोई एक वेबसाइट का एड्रेस था वो क्लिक हुआ, पता नहीं क्या उनके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल होता है या क्या, वो सारे के सारे पैसे वो चले गए। तो ऐसा क्या हो जाता है इतनी ही देर में? क्या वो मालवेयर इतना इफेक्टिव है कि आपके फोन की ओटीपी, आपके फोन की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है वो?
4: ये संभव है कि जब आप फोन चला रहे हैं कोई पॉपअप आया और गलती से ही सही लेकिन क्लिक हो गया, तो अगर क्लिक हो गया तो आपका फ़ोन का जितना भी डिटेल है अगले के पास पहुंच गई, और वो वास्तव में इतना पावरफुल है, वो रेल के इंजन के बराबर पावरफुल है। अगर आपने गलती कर दी तो जो भी बैलेंस है वो आपका चला जाएगा।
1: तब तो भाई अगर हल्की सी नींद भी लग रही हो तो फोन ना देखें,
4: बिल्कुल
1: श्रोताओं से ये अनुरोध करेंगे।
4: हाँ, सामान्यतः आप लोग ये प्रसारित भी करते हैं कि सोने से दो घंटा पहले, एक घंटा पहले फोन को अलग कर देना चाहिए, अलग कर दे।

0: अर्जुन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करें समाधान की, सोल्यूशन की, तो एक तो उसका पक्ष है जागरूकता, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है
1: लोगों को, बेहद जरूरी है,
0: क्योंकि जो अपराधी हैं, जो ठग हैं, वो न सिर्फ तकनीक का यूज कर रहे हैं, मनोविज्ञान का भी यूज कर रहे हैं, लालच है, डर है और जल्दबाजी, ये तीनों का ही यूज करके वो कर रहे हैं। तो इसमें जब आप अवेयरनेस कैंप चलाते होंगे या रेडियो टीवी के माध्यम से, तो किस तरह आप लोगों को अवेयर करते हैं? क्योंकि जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके, सुन चुके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ नई चीज आ जाती है, वो अपराधी रिसर्च और डेवलपमेंट में हमसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है।
1: मैं इसमें थोड़ा सा सुधार करूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि आम धारणा भी यही बन गई है कि अपराधी हमारी सोच से आगे चल रहे हैं,
0: आम आदमी की सोच से,
1: आम आदमी की सोच से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी सोच से आगे नहीं है। हो क्या रहा है कि जो अपराध कर रहे हैं, एक बार उनका लेवल सोचिए, कोई सर्विस करने वाला, जॉब करने वाला आदमी नहीं कर रहा है, कोई बिजनेसमैन नहीं कर रहा है, मुट्ठी भर लोग हैं और कम उम्र के लोग, ठीक है, उनको आसान लगता है कि किसी को शिकार कर लो। एक फ्रॉडस्टर से मेरी बात भी हुई फोन पे, उसने कहा साहब हम दिन भर में 100 कॉल करते हैं, उनके शब्दों पर कह रहे 100 कॉल करता हूँ, 5 लोग फंस गए, हमारी दिहाड़ी बन गई, महीने भर की बन गई, ठीक है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि वो 100 कॉल करके अगर एक महीने भर का पैसा एक दिन में निकाल ले रहे हैं, तो ये है। बाकी कोई टेक्निक नहीं है, हमारी साइकोलॉजी है कि हम दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं और तकनीकी गलती करके अपना पैसा गंवा देते हैं, बाकी वो कहीं एडवांस नहीं चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी उतनी ही जितनी आप जानते हैं, उससे कम ही वो जानते हैं, लेकिन वो केवल अपने व्यवसाय में दक्ष हैं और हम आप अपने में दक्ष हैं। बस
2: ये बात नोट करने वाली है कि वो अपने व्यवसाय में दक्ष हैं और इसलिए एक आम इंसान को वो बर्गला ले जाते हैं, उसकी हार्ड अर्न्ड मनी कहीं ना कहीं उसके हाथ से निकल जाती है। अभय जी, श्रोताओं को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इन्फोटेनमेंट भी देना है और गीत और गजलें तो हम सुनवाते ही चलते हैं। अर्जुन जी, आपके जहन में कोई गजल याद हो, गीत याद हो, तो जरूर साझा करें हमारे दोस्तों के साथ।
1: एक गाना मैं जरूर बताऊंगा, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था।
2: बहुत सुंदर ये गजल है, राहत फतेह अली खान साहब ने ये बहुत सुंदर सी गजल उन्होंने गाई है और लोगों के दिलों में रच बस गई है, तो चलिए सुनते हैं इसको।

0: अभी जी हम लोग साइबर फ्रॉड पर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस पर भी बात की जाए, तो आपके मन में क्या कुछ प्रश्न कौन रहे हैं?
1: इसके लिए आप लोग जैसे अवेयरनेस कैंप चलाते होंगे
2: जी, जी.
1: और विज्ञापन न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, रेडियो में करते ही होंगे
2: जी.
1: तो किस तरह आप लोग लोगों को अवेयर करते हैं?
2: राहुल जी बताएंगे बहुत बेहतर इस बारे में।
3: मैं कुछ साइबर सेफ्टी के कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन रूल दोहराना चाहूंगा आप लोग के साथ
0: जी,
3: जिसमें पहली बात OTP पिन CVV और पासवर्ड किसी को शेयर ना करें।
2: OTP CVV और पासवर्ड

0: किसी को शेयर नहीं करना है।
1: सी वी
2: वी वी
1: क्या है ये?
0: एटीएम कार्ड के पीछे लिखा
2: पीछे
0: रहता
2: तीन डिजिट का जो कोड
1: अच्छा,
2: होता है
1: जी।
2: दूसरी बात है, पैसा रिसीव करने समय यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं होती है।
0: ये जो आप बात कर रहे थे ना कि कुछ अनअवेयर लोग हैं, वो पैसा रिसीव करने के लिए पिन डायल करते हैं, वो पे हो जाता है उनसे
1: जी।
0: ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप पिन डायल करिए, मैं आपको 10,000 रुपया भेज रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। रिसीव करने के लिए, मनी रिसीव करने के लिए किसी भी पिन की जरूरत नहीं पड़ती है, मंत्र की तरह याद रखना।
1: जी,
2: यूपीआई पिन जैसे ही आप डालेंगे तो पैसा जाएगा ही, आपके अकाउंट में आएगा नहीं, इस चीज को हमें याद रखेंगे
1: जी।
2: और अननोन क्यूआर या पेमेंट रिक्वेस्ट को वेरीफाई करने के बाद ही एक्सेप्ट करें। बिना वेरीफाई किए एक्सेप्ट करने से आपका उसमें नुकसान हो सकता है।
1: वेरीफाई कहाँ से करेंगे राहुल जी?
2: बिल्कुल, पैसे आपको कहाँ से आ रहे हैं, अगर किसी से मंगा रहे हैं तो उसे वेरीफाई करिए, क्या पैसे आप भेज रहे हैं
1: जी?
2: या किसी क्यूआर पर आप स्कैन कर रहे थे, पता करिए क्या क्यूआर उसी का है या किसी और का है। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्यूआर आता है, हम उसमें पेमेंट कर देते हैं और सामने वाले के अकाउंट में नहीं जाता, कहीं पैसे और चले जाते हैं, तो इससे पहले वेरीफाई करना हमारा बहुत जरूरी होता है
1: जी।
0: अननोन ग्रुप में ना जुड़ें, व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप बना के भेजता है उसमें ना जुड़ें। एक नए टाइप का फ्रॉड है, इन्वेस्टर फ्रॉड, ठीक है, वो आपको ग्रुप में जोड़ेंगे, 1 महीने का ट्रेनिंग सेशन चलाएंगे। अब बताइए आप उस पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? 1 महीना के ट्रेनिंग सेशन के बाद वो आपसे कम अमाउंट इन्वेस्ट कराएंगे, उसमें आपको लाभ भी देंगे, आपको मौका भी देंगे कि पैसा निकाल लीजिए। अब ऐसी स्थिति में आप विश्वास क्यों नहीं करेंगे? और फिर जब आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, उसको भी वो दूना करके दिखाएंगे, आपने 1 करोड़ किया, वो 15 दिन में 2 करोड़ डिस्प्ले पे दिखेगा। जब आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो कहेंगे भाई इस पे टैक्स लगेगा, और आप 30 लाख टैक्स देंगे तब 2 करोड़ विड्रॉ होगा। अब आप 2 करोड़ 30 लाख उसको दे चुके हैं, फिर बात करेंगे, फिर वो बताएगा 5 लाख और किसी बात का लगना है। जब तक आप बात करेंगे तब तक वो टैक्स लगाता रहेगा, लेकिन अमाउंट आपका दिखता है 2 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगा, बट वो विड्रा नहीं होगा, अंत में आप सरेंडर होंगे, क्योंकि जब तक आप लालच के वश में रहेंगे ना आप विड्रा कर पाएंगे और उसको एक्स्ट्रा पैसे देते रहेंगे।
3: लोगों के मनोविज्ञान से खेल रहे हैं कि आपका इतना पैसा तो फंसा है, थोड़ा सा और दे दीजिए,
0: बिल्कुल
3: निकल आएगा।
0: वो आपको जो लिंक देंगे उस पर डिस्प्ले भी करेगा कि आपका इन्वेस्ट अमाउंट 1.5 करोड़, प्रेजेंट बैलेंस 5 करोड़,
1: मतलब दिख कुछ और रहा है और है असल में और, कुछ और।
0: राहुल
1: जी कुछ बोल रहे हैं आप?
2: जनरली ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ऐसा होता है कि अगर उसमें ग्रुप में 20 लोग जुड़े हैं तो 19 लोग वो खुद हैं, अकेले या उनके लोग, उसमें एक सिर्फ आप हैं जिनके लिए यह सब चारे की तरह यूज किया जा रहा है, और वो दिखाएंगे कि आज हमें इतना मैंने इन्वेस्ट किया, 1,000 किया, 2,000 मिला, 4,000 किया। तो हम क्या करते हैं, शुरू में 1,000 लगाएंगे, हमें चेक करना है, तो 1,000 लगाने के बाद वो अगले दिन आपको 1,200 वापस भी कर देंगे, फिर 2,000 लगवाएंगे। जब आप बड़ा अमाउंट लगाने लगेंगे तो फिर आपको तरह तरह के टैक्स हैं, आपको बताएंगे कि ये सर्वर लो है, बहुत सारे बहाने बताते हुए और भी आपसे पैसे ही लेते रहेंगे, जब तक आप दे रहे हैं तब तक लेते रहेंगे वो।
1: आप 1930 के अलावा कोई वेबसाइट का भी जिक्र कर रहे थे जहाँ पे कम्प्लेन रजिस्टर होती है?
2: जी, 1930 के अलावा एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। अगर मैं 1930 एंड cybercrime.gov.in को दोनों लेके बताऊं तो cybercrime.gov.in जो है वो फाइनेंशियल सोशल मीडिया जैसे क्राइम दोनों के लिए भी वर्क करती है, और जो 1930 जो हमारे कॉलिंग नंबर है उस पे हम 24 आवर्स के विदिन, मतलब के अंदर जो इतनी कंप्लेन होती है उस कंप्लेन को हम उस पर रेज करने पे हमारे सुविधाएं होती है। जैसे क्या होता है कि हमारे सुदूर गांव के लोग हैं जो कंप्यूटर चलाना उतने अच्छे से प्रोसेस नहीं जानते या वेबसाइट के बारे में नहीं जानते, तो ये सुविधाएं उनके लिए खासतौर पर लाई गई कि वो 1930 पे कॉल करके आसानी से अपने कंप्लेन को रेज कर सकें। और कंप्लेन करने के बाद हम या तो वेबसाइट के माध्यम से करें या 1930 के माध्यम से करें, हम अपने नज़दीकी थाने पर जाके एक प्रार्थना पत्र जरूर दें, क्योंकि हर थाने पर अब साइबर सेल का गठन है। तो देने के बाद हमें अपनी कंप्लेन की पूरी जानकारी वहाँ थाने से हमें मिल जाएगी।
1: किस किस तरह के डॉक्यूमेंट जरूर अपने पास रखने चाहिए ताकि जब तफ्तीश हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट रहे साक्ष्य के तौर पर?
2: जी बिल्कुल, कोई भी कंप्लेन करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, किस बैंक से पैसा गया अकाउंट नंबर
1: जी,
2: किस यूपीआई आईडी से गया है या किस यूपीआई आईडी में गया है होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर के अलावा हमारे पास मोबाइल नंबर होने चाहिए, किस नंबर से कॉल आया है, चैट है तो देन बेटर है, जिस ईमेल आईडी से हमको अगर कोई मेल आया है
1: जी
2: वो ईमेल आईडी, अगर सोशल मीडिया फ्रॉड तो सोशल मीडिया प्रोफाइल होनी चाहिए, और उसके अलावा जो भी चीज हमें लगे कि यह हमें विवेचना में सहयोग मिल सकती है वो हमें कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, विक्टिम क्या करता है, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा या फिर जो भी कहे बचने के लिए चैट डिलीट कर देता है या किसी को सोने, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि अपराधियों तक पहुंचने का वो बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे प्रूफ हैं, तो हम अपराधियों तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

0: सकते हैं।
1: और जिस नंबर से फ्रॉड हुआ है अगर किसी ने वो नंबर ही बंद कर दिया, डर के मारे क्लोज कर दिया, फिर
0: जी उसके लिए एक पुलिस प्रोसेस है। बंद कर दिया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी आप उस नंबर को जरूर बताएं कि इस नंबर से हमें कॉल आया था, और ये जरूर बताएं कि व्हाट्सएप कॉल था, टेलीग्राम कॉल था, या नॉर्मल कॉल था, या किसी अन्य ऐप से कॉल था।
2: आप केवल नंबर दीजिए, बस उस तक हम पहुंच जाएंगे। बेशक वो नंबर बंद कर ले, कुछ भी करे, केवल एक बार उसका नंबर आ जाना चाहिए, फिर हम उस तक पहुंच जाएंगे।
3: आपको साइबर पुलिस को सच्ची इन्फॉर्मेशन और पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है।
2: कोई भी अपराधी इतना बड़ा नहीं है जो अपना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट ना छोड़े। एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि कुछ मैट्रिमोनियल साइट पे भी फ्रॉड होने लगे हैं। मैट्रिमोनियल साइट से वो कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कुछ इमोशनल डायलॉग होते हैं, फिर एक सूरत आती है कि मेरी माता जी बीमार हैं और मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं दुबई में हूँ, ऐसा करके किसी का इस हद तक शोषण करते हैं कि उसका खेत जमीन, क्योंकि लोग इमोशन में आ जाते हैं कि बात में तो शादी करनी ही है, खेत जमीन तक बिकवा लेते हैं। तो इसके लिए भी लोगों को अवेयर होना जरूरी है, ठीक है, लालच में ना पड़े।
3: और अब समय हो गया म्यूजिकल ब्रेक का।
1: जी जरूर।

0: दोस्तों, हम लोग साइबर फ्रॉड और उसके सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं। ये बात तो रही पैसों की। अब कोई फीमेल है, उसके साथ किसी ने मिसबिहेव किया, उसकी फोटो मॉर्फ कर दी या फिर कहीं पे अपलोड कर दी, या कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, वो डर गई, वो घर पे नहीं बता पा रही है, उसको लगता है कि अगर भैया को बताऊंगी या पापा को बताऊंगी तो डांट पड़ेगी, और हर इंसान सोचता है कि हमारे घर की प्रतिष्ठा गिरे नहीं, तो ऐसे केस में वो घबराई हुई है, क्या कर सकती है वो लड़की?
1: वो जहाँ भी है, जिस भी हाल में 1090 डायल कर सकती है, वो डायल करें, उनकी कॉल गोपनीय रहेगी। प्रदेश के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क है, सारी जानकारी गोपनीय रखी जाती है, और गोपनीय रखते हुए भी उसकी पूरी मदद होगी। दूसरी चीज, हर जिले में जगह जगह पिंक बूथ बनाए गए हैं, वो चुपचाप वहां जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
0: चूंकि मैं खुद महिला हूं, तो मैंने ये पाया है

0: गर्ल्स के अंदर एक भय रहता है कि कोई पीछा कर रहा है, व्यक्ति परेशान कर रहा है, वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, मैं कैसे जाऊं थाने तक, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती।
1: कहीं भी रुक के अगर पीछा करने की बात है 112 करें, 3 से 4 मिनट में पुलिस जहां भी रहेंगे, हो सकता है 30 सेकंड में भी पहुंच जाए, इतनी स्ट्रांग पुलिसिंग है। आप जहां भी हैं, जिस भी लोकेशन में हैं, आप डायल करें, आपके आसपास ही 112 की गाड़ी होगी, पहुंच जाएगी और प्रॉपर मदद होगी, इसमें संकोच करने की कोई गुंजाइश नहीं।
0: वो ऐसा तो नहीं सोचेगी कि भाई ये जो फोटो इस अमुक व्यक्ति के पास है, उसके गिरफ्त में है, वो ये बात कह रहा हो कि भाई ये फोटो हम पूरे जगह फैला देंगे, क्या उसको भी रोका जा सकता है?
1: उसको भी रोका जा सकता है, उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलती हो भी गई है तो पुलिस उसको ठीक करेगी, अपराधी को उसके अंजाम तक ले जाएगी।
0: सजा होती है कि नहीं इसमें?
1: निश्चय ही सजा होती है।
2: अगर किसी महिला का जैसे फोटो वायरल हो रहे हैं या फिर AI से वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है
0: जी,
2: तो साइबर क्राइम में भी इसकी एक अलग व्यवस्था की गई है। अगर महिला चाहे तो अननोन एनोनिमस कंप्लेंट भी कर सकती है। एनोनिमस कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, तो एनोनिमस कंप्लेंट करने के बाद उसकी भी इन्वेस्टिगेशन लोकल थाने से की जाती है, पर उस महिला की गोपनीयता, वो संबंधित थाने को भी नहीं पता चलती कि कंप्लेंट किसने किया है, बस उस URL पता चलेगा या उन्होंने जिस एक्यूज्ड का डिटेल भरा होगा, संबंधित आरोपी का, वो डिटेल संबंधित थाने को दिखती है, उस पर भी कार्रवाई की जाती है। और यदि चाहे तो महिला अपने नाम से भी कंप्लेन कर सकती है। ये दोनों व्यवस्थाएं cybercrime.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
0: महिलाओं वाला जो केस है 1090 है
1: जी।
0: ये नंबर याद रखिएगा दोस्तों, जो अगर घर में आपकी फीमेल हैं, बहनें हैं, बच्ची है, तो उसको याद करवा दीजिए 1090 और 112 आपने कहा,
1: बिल्कुल,
0: कि ये भी एक नंबर है। अगर उसको लग रहा हो कि कोई पीछा कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो ये नंबर्स मदद करेंगे। पिंक बूथ है, वहां पर भी जा सकते हैं। और हाँ, घर वालों से कोई बात ना छुपाएं, क्योंकि घर वाले ही हैं, वही साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और डांट खाने से भी ना घबराएं। गलती हुई है तो थोड़ी बहुत डांट पड़ती है घर से, लेकिन वो आपके अपने हैं, तो अपनों से हमेशा शेयर जरूर करें,
3: क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो उसपे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे ना,
0: क्योंकि कई बार बुद्धि काम नहीं करती विपरीत परिस्थितियों में।
3: अपराधी यही चाहते हैं कि आप डर से, संकोच के कारण आप किसी से शेयर न करें और वो अपना काम कर जाए। इसीलिए आपको तुरंत शेयर करना है, घर में शेयर करिए, पुलिस के साथ शेयर करिए, और जो भी आपके पास है, आपके मित्र हैं, उनसे शेयर करिए, क्योंकि समाधान तभी निकलेगा।
0: दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, और इस एपिसोड में हमने वेबसाइट के बारे में जाना है, 1090 के बारे में जाना है, और कैसे थाने पर जा सकते हैं, पिंक बूथ तक जा सकते हैं और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, और किन किन बातों का जरूर ध्यान रखें कि UPI कर रहे हैं तो अगर पैसे लेने हैं तो कोई पिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो फ्रॉड है। किसी भी ग्रुप में जुड़ने से पहले जांच पड़ताल जरूर कर लें, लालच में ना आए। अगर कोई कह रहा है कि हम आपके पैसे डबल कर देंगे, और राहुल जी की वो बात जरूर याद रखिएगा, कोई भी ग्रुप है, हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए 19 लोग एक तरफ हैं, आप अकेले हैं। तो चलिए, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और गोल्डन रूल्स हैं जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हैं, हम जानेंगे। तो अभय जी, अपने दोस्तों से अब आज के एपिसोड में हम लेते हैं विदा और कहते हैं
1: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे निरीक्षक साइबर क्राइम अर्जुन द्विवेदी एवं उप निरीक्षक राहुल कुमार से नेहा गुप्ता एवं अभय कांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग, जिसका विषय था साइबर क्राइम। इसी के साथ आज का वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम, कलाकार राम कुमार निर्मल और साथी। सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं इनका गाया एक देवी गीत।

0: कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं राम कुमार निर्मल और साथियों का गाया नकटा।
1: अरे जमुना वही के लहरा, अरे जमुना वही के

0: लोकगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मुंशी लाल सोनकर और साथियों का गाया कहरवा।
1: हाय ए प्रभु तुम राजा रंग में आई।

ये आकाशवाणी प्रयागराज है। सुरों के सजते बाजार में यादों के झरोके से लेकर हाजिर हूँ मैं रोशनी बंसल, आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज तारीख है 7 अक्टूबर। आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा की उस जाबाज और बहुत ही प्रतिभावान महिला का, जिन्होंने पुरुषों के दबदबे वाले संगीत जगत में अपनी धुन पर पूरी दुनिया को नचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीत निर्देशिका उषा खन्ना जी की। उषा जी के इसी सुरीले सफर को सलाम करने के लिए आज हम उनके स्वरबद्ध किए हुए कुछ चुनिंदा नगीने लेकर हाजिर हुए हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साल 1959 की फिल्म दिल देके देखो के इस टाइटल सॉन्ग से, जिसने उषा खन्ना जी को रातों रात स्टार बना दिया था।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, जब ये फिल्म आई तब उषा खन्ना जी की उम्र महज 19 साल थी। इस फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन साहब ने उनके टैलेंट को पहचाना और फिर जो इतिहास बना वो आज आपके सामने है। उषा जी की धुनों में एक खास बात थी, उसमें एक अजीब सी कशिश और सादगी होती थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उषा जी ने सिर्फ चुलबुले गीत ही नहीं बल्कि गहरे दर्द में डूबे नगमे भी तैयार किए। श्रोताओं, उषा खन्ना जी ने सिर्फ स्थापित गायकों के साथ काम नहीं किया बल्कि उन्होंने इंडस्ट्री को कई नए और बेहतरीन सिंगर भी दिए। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं साल 1974 की फिल्म हवस की तरफ। इस फिल्म का ये गीत आज भी हर आशिक की जुबान पर रहता है। मोहम्मद रफी की आवाज और उषा खन्ना जी का ये लाजवाब गीत सुनिए।

दिल को छू लेने वाली ये धुन सिर्फ उषा जी ही बना सकती थी। अब देख रहे हैं कि कैसे एक तरफ जोश से भरा दिल देके देखो है, वहीं दूसरी तरफ जुदाई का ये गम। यही तो एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। श्रोताओं, अब जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो साल 1981 की फिल्म सौतन का है। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे और उषा जी को इसके लिए फिल्मफेयर का नॉमिनेशन भी मिला था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में पेश है ये प्यारा गीत।

क्यों श्रोताओं, पैर थिरकने लगे ना आपके भी। इस गाने की बीट्स आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है। उषा जी के संगीत का ये कारवा रुकने वाला नहीं है। साल 1981 में ही एक और फिल्म आई थी जिसमें जिंदगी के फलसफे को बयां करता ये गीत हर किसी को हिम्मत देता है।

सचमुच जिंदगी प्यार का ही तो गीत है। श्रोताओं, उषा खन्ना जी ने लगभग 3 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और 350 से ज्यादा फिल्मों में अपना संगीत दिया। आइए अब रुक करते हैं साल 1980 की फिल्म उस फिल्म दादा के उस मशहूर दौर की तरफ, जब दिल टूटता है तो शब्द संगीत का रूप ले लेते हैं। यसुदास जी की दर्द भरी आवाज और उषा जी की रूहानी धुन, सुनिए ये खास गीत।

इस खूबसूरत नगमे के साथ ही घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आज आकाशवाणी प्रयागराज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने याद किया संगीत की मल्लिका उषा खन्ना जी को उनके जन्मदिन पर। उम्मीद है उषा जी की धुनों से सजी ये महफिल आपको पसंद आई होगी। एक ही कलाकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे थे रोशनी बंसल को।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रयागराज से कार्यक्रम फिल्म संगीत और माइक्रोफोन पर मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी बंसल। श्रोताओं, आज का ये दिन, ये पल मेरे लिए बहुत बड़ा और भावुक है, क्योंकि आज मैं पहली बार

एक उद्घोषिका के रूप में इस माइक्रोफोन के जरिए आप सभी श्रोताओं से सीधे रूबरू हो रही हूँ। सच मानिए, जब हम जिंदगी में कोई काम पहली बार करते हैं तो इस पहली बार शब्द में ही एक अजीब सा जादू होता है। पहली बार का वो एक अजीब सा नशा, जब कदम जमीन पर नहीं टिकते और आंखें ख्वाबों से भरी होती हैं, लेकिन इस नशे के साथ साथ पहली बार की वो मीठी सी घबराहट भी है। हाथ थोड़े से ठंडे हैं, दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं और मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या प्रयागराज के मेरे प्यारे श्रोता इस नई आवाज़ को अपनाएंगे। हम सब के जीवन में ये पहली बार आता है और पहली बार हमारे दिल में क्या क्या होता है ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन संगीत हर जज्बात को आसान बना देता है। तो आइए मेरे साथ मेरी इस पहली सुरीली यात्रा की शुरुआत करते हैं साल 1999 की फिल्म प्यार में कभी कभी के इस बहुत खूबसूरत गीत के साथ। शान की आवाज़ में सुनिए और महसूस कीजिए उस पल को।

पहली मुलाकात का वो पल ता जिंदगी दिल में महकता रहता है। श्रोताओं, जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में पहली बार आता है तो ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही बदल गई हो। हम खुद को भूल कर बस उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में सुनिए ये जादुई नगमा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर कार्यक्रम फिल्म संगीत और मैं हूं रोशनी बंसल। श्रोताओं, पहली बार का ये सफ़र अब आगे बढ़ रहा है और जब हम पहली बार की बात करते हैं तो ज़िंदगी का सबसे हसीन एहसास भला कैसे पीछे छूट सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पहली मोहब्बत की। वो एहसास जो इंसान को एक नई दुनिया से रूबरू कराता है। साल 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ तुम का एक ऐसा ही सदाबहार गीत जो आज भी हर धड़कते हुए दिल की आवाज़ है। समीर के लिखे और नदीम श्रवण के संगीत से सजे इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

सचमुच इस पहली बार में कुछ समझ नहीं आता, बस दिल अपने आप बहकने लगता है। और आज के दौर में भी जब युवा दिल धड़कते हैं तो उनकी जुबा पर भी यही पहली बार का खुमार होता है। आइए थोड़ा सा वक्त में आगे बढ़ते हैं और साल 2016 की फिल्म सनम रे के उस दौर में चलते हैं जहां अमाल मलिक के संगीत ने इस एहसास को एक नया रूप दिया। अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की रूहानी आवाज़ में पेश है

वैसे जब पहली मोहब्बत की बात हो तो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी कल्ट फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं। साल 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन का एक ऐसा ही गीत जिसने शादियों और रोमांस के मायने ही बदल दिए। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की इस फिल्म में कुमार सानू और अलका जी की आवाज़ में सुनिए ये एक और लाजवाब नगमा।

इस गाने की मिठास आज भी वैसी ही है। श्रोताओं, आज फिल्म संगीत के इस मंच पर आपके साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी। पहली बार की जो घबराहट लेकर मैं स्टूडियो में आई थी, आपके इस सुरीले साथ ने उसे एक खूबसूरत भरोसे में बदल दिया। ये रोशनी हमेशा आपकी आभारी रहेगी। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इस सफ़र को यहीं पर थामना होगा, लेकिन जाते जाते पहली बार के इस खुमार और जादू को एक आखिरी अंजाम तक पहुंचाना तो बनता है।

मुलाकात थी। पहली बार की जो घबराहट लेकर मैं स्टूडियो में आई थी, आपके इस सुनीले साथ ने उसे एक खूबसूरत भरोसे में बदल दिया। ये रोशनी हमेशा आपकी आभारी रहेगी। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इस सफ़र को यहीं पर थामना होगा, लेकिन जाते जाते पहली बार के इस खुमार और जादू को एक आखिरी अंजाम तक पहुंचाना तो बनता है। कार्यक्रम का अंत हम करेंगे साल 2008 की फिल्म रेस के एक बहुत ही स्टाइलिश और रोमांटिक गाने के साथ, प्रीतम का संगीत और आतिफ असलम की मखमली आवाज़। इस गाने के साथ ही अपनी दोस्त रोशनी बंसल को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार जो हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर

0: आशीर्वाद का परिणाम है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that the trust of the people and the dedication of millions of party workers have been his greatest sources of strength. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that the people's trust accumulated over 25 years and the experience gained during this period are a great asset. The Prime Minister also said that this is the time to set big targets for Bharat. Attributing his entire political journey to the unwavering faith and support of the citizens, Mr. Modi said that the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
0: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारत

फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा। 12:30 बजे कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। सवाई बजे महिलाएं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगी गृहलक्ष्मी, जिसमें चर्चा होगी बेगम अख्तर हिंदुस्तानी संगीत की अमर स्वर साधिका। नीतू पांडे की वार्ता सुन सकेंगे निजिता बनाम सोशल मीडिया पर, और गृहलक्ष्मी टिप्स में जानेंगे घर पर माउथ वॉश कैसे बनाएं। ढाई बजे श्रोता सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। रोज की तरह युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर। शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार से सुनेंगे वार्ता आलू और मटर की सह फसली खेती पर। साथ ही सुनवाएंगे लोकगीत राम कुमार निर्मल और साथियों के स्वर में। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आइए अब जानकारी लेते हैं खोए हुए व्यक्ति के बारे में। रामराज यादव निवासी गांव कैथा थाना मोहम्मदपुर पैंसा जनपद कौशाम्बी सूचित करते हैं कि उनका पुत्र रविशंकर 30 मई 2025 से गांव कैथा से लापता है। रविराज यादव सूचित करते हैं कि उनके पुत्र रविशंकर की उम्र लगभग 26 वर्ष, ऊंचाई लगभग 6 फीट, इकहरा बदन, रंग सांवला और चेहरा गोल है। विलुप्त व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर थाना मोहम्मदपुर पैंसा कौशाम्बी को संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना अब समाप्त हुई।

तरक्की की राह पर दौड़ते हमारे देश को ऊर्जा की ज़रूरत है, पर याद रहे संसाधन सीमित हैं। दिन के उजाले में सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें और कमरे से निकलते ही स्विच बंद करना ना भूलें। ऊर्जा की बचत देश की प्रगति है। समझदारी दिखाएं, बिजली बचाएं।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सुनिए उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। राग है तिलक कामोद।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। लीजिए अब श्रोता सुने अपने फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार
1: हाँ मैडम, हम बोल रहे हैं रमेश गुप्ता बोल रहे हैं मैडम,
0: जी
1: और रहने वाले हैं जिला प्रयागराज, गांव का नाम है चकश्यामपुरी इंचा।
0: जी जी जी
1: और इसमें हम बात कर रहे हैं मुंबई से, रहते हैं मुंबड़ा कल्याण फाटक।
0: जी
1: मैडम आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैंने आज में गांव समाज फिल्म का नाम है आज का अर्जुन,
0: जी
1: और गाने बोले हैं गोरियां कलाइयां पहना दो हरी हरी चूड़ियां, अपना बना लो बालमा।
0: ये अमिताभ बच्चन और जया प्रदा के ऊपर फिल्माया हुआ गाना है आज का
1: हाँ
0: अर्जुन फिल्म से। जी।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार मैडम जी,
0: नमस्कार जी
1: हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: जी राकेश जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हीरो नंबर वन विनोद राठौर और पूर्णिमा कवाद में है।
0: आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं राकेश जी। किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: नहीं मैडम जी, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु। आपके गीतों के साथ अपना नाम बता दीजिए।
1: आकाश मानी का जुम दिल में रहता है, जल गंगा नदी के मेरा जहां है, जल जल नाम है मेरा, नाम है तिलकुंडा, जिला है प्रताप
0: जी, जिला प्रतापगढ़ से राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। तो राजेंद्र जी की क्या फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है
0: जी
1: और गाने के

0: आई फूल की रानी बहारों की मलका पुराना कसब हो गया उसमें है ना हम उसमें है नजर का मिलाना हो गया।
1: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत चुना है प्रतापगढ़ से राजेंद्र जी ने। तो राजेंद्र जी अब आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: करिश्मा मैम,
0: करिश्मा जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं।
1: फिल्म का नाम है तेरे नाम, गाना का
0: जी
1: नाम हमने किया अपना सारा संग तेरे।

0: बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। करिश्मा जी, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती हैं आप?
1: हमारे हस्बैंड चलने
0: जी
1: सर।
0: अच्छा, बच्चन ने सरोज जी आपके हस्बैंड हैं, और किसी का नाम लेना चाहती हैं?
1: जी
0: जी बताइए।
1: हमारी बहन एक का नाम है सपना, का नाम कलोनी, का नाम मनोरमा है, हमारा भाई अनिल।
0: जी अच्छा, ये बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? हेलो फरमाइश कार्यक्रम
1: बहुत अच्छा लगता है मैम
0: रोज सुनती हैं आप?
1: जी, 2021 सुनते हैं हमको,
0: अच्छा
1: बहुत अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है।
0: अच्छा इसके अलावा और कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी प्रयागराज के?
1: ये पनघर सुनते हैं, हेलो फरमाइश सुनते
0: जी
1: हैं, जो आता है पंचायत घर इसको सुनते हैं
0: अच्छा, सारे कार्यक्रम सुनती हैं, तो ठीक
1: जी।
0: है, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं और हमें बताती भी हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं। तो करिश्मा जी, हम आपको सुनवाते हैं तेरे नाम फिल्म का ये गाना।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। अपना नाम बताइए।
1: हम गुलाब चंद्र मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामदयालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: जी गुलाब जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हम फिल्म कुली का गीत सुनना चाहते हैं।
0: गाने के बोल बताइए।
1: हमका ऐसा हो गया यारो हमारी पूरी खबरिया लो।
0: ये अमिताभ बच्चन की फिल्म थी।
1: हाँ हाँ
0: जी, तो अब आपने जिस गीत की फरमाइश की उसे सुनवाएं आपको।
1: चलिए
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: Akashvani at 90.
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार हिंदी में जो हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
3: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
2: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी

0: बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 72,827 पर, जबकि निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 22,659 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He said that over the past 12 years, the situation has changed completely.
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: Home Minister Amit Shah has hailed the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public service and described it as a golden and historic day. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today, he stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished, including the abrogation of Article 370, the elimination of nationalism, and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. The Reserve Bank of India, RBI, today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, the monetary policy

0: Policy Committee unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points.
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening by a majority of 4-2.
0: Central Bureau of Investigation, CBI, has registered an FIR against OSD to Punjab Chief Minister Rajbir Ghuman and his associates in a case of cash for transfers and manipulating postings of officers, including of IAS and IPS rank officers, and other corruption cases to investigate these allegations. Subsequently, raids were conducted at 8 premises. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's partnership with Africa is being built not just for today, but for generations to come. Addressing a gathering at the Foreign Service Institute of Ghana in Accra, he highlighted India's progress in the economy, infrastructure, digital technology and manufacturing. Dr. Jayashankar stressed the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. India has called for stronger climate action and faster implementation of the Paris Agreement at the pre-conference of the parties or COP31 meeting in Fiji. Union Environment Minister Bhupinder Yadav said there is a need to close gaps in understanding, fulfill existing climate commitments and accelerate progress towards the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. Addressing the plenary session, Mr. Yadav stressed the need for greater capacity building and adequate means of implementation. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by agricultural economist Ashok Gulati on the transformation of Indian agriculture. The article highlights Prime Minister Modi's 25-year journey from Gujarat's agrarian transformation to a broader transformation of Indian agriculture, shows how better irrigation, reliable power, rural roads, technology and market access helped farmers increase productivity and income. And benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% lower during afternoon session today. Sensex slipped 241 points to 72,827, while Nifty lost 117 points to 22,659 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का
3: अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में मुनक़िद तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान संकल्प सभा के जरिए कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज वो हुकूमत के सरबरा की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर चुके हैं। ये आवाम की मेहरबानियों का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके लिए आवाम ही खुदा है और मुल्क
4: यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन। ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे।
3: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ मुनक्किदा सेवा ज्योति यात्रा विकसित भारत संकल्प सभा में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र का दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के सरबरा के तौर पर 25 साल मुकम्मल होने का दिन है। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम की हैसियत से गुज़िश्ता 12 बरसों में उन्होंने हिंदुस्तान को एक काबिल और मजबूत कौम के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया।
5: आज हर भारतवासी के लिए गौरव का दिन है जब अहर्निश सेवा के 25 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज भारत पूरा कर रहा है। यह अवसर बहुत कम प्राप्त होता है जब एक गुजरात के छोटे से गांव से निकलकर आज वैश्विक स्तर पर भारत को नेतृत्व प्रदान कर रहे किसी एक सामान्य कार्यकर्ता या स्वयंसेवक ने भारत को एक नई पहचान दिलाई हो।
3: وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر گجرات کے وڈنگر سے کاشی تک شروع ہونے والی بائک سیوا یاترا کا وارانسی پہنچنے پر استقبال کیا گیا. سمپورنا نند سنسکرت یونیورسٹی منعقد پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری کی قیادت میں سیوا یاترا کے مسافروں کو

0: एजाज से नवाजा गया। इस दौरान मुसाफिरों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब भी सुनाया गया। प्रोग्राम में सेवा यात्रा के मुसाफिरों ने सफर के दौरान अपने तजुर्बात और यादें शेयर की। उन्होंने वडनगर से काशी तक के सफर के तजुर्बात को वहां मौजूद लोगों के साथ शेयर किया। प्रोग्राम में पार्टी अहदेदारान, कारकुनान और दीगर लोग मौजूद थे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वजीर आला हिमंत बिस्वा सरमा और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी जलसे आम से खिताब करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज दोपहर वाराणसी पहुंचेंगे। वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मुनक्दा नमो बुक फेस्ट काशी एडिशन का इजरा करेंगे। इसके बाद वजीर आला जलसे आम में शिरकत करेंगे। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में सेवा संकल्प के तहत मुनक्द प्रोग्राम में वर्चुअल हिस्सा लिया। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नोएडा मुनक्द सेवा संकल्प अभियान प्रोग्राम में अमली तौर पर हिस्सा लिया। इधर हिंदुस्तान और जापान के करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात की एक और झलक काशी में देखने को मिली। साबिक जापानी वजीर आजम शिंजो आबे की अहलिया और जापान की साबिक खातून अव्वल मिसेज आकी आबे का काशी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से रहनुमाई में मुस्तकिल अज्म और अच्छी हुक्मरानी हुकूमत 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए अंथक मेहनत कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम आपको बताएंगे कि कुदरती काश्तकारी ने लोगों की जिंदगियों को किस तरह बदल दिया है।
1: देश में आज 24 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेचुरल फार्मिंग पर बल देते हुए कहा कि नेचुरल फार्मिंग से केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है।
2: भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है।
1: प्राकृतिक खेती करने वाले वाराणसी के किसान ओम प्रकाश पटेल का कहना है कि प्राकृतिक खेती करने से रासायनिक पदार्थों से होने वाला नुकसान कम होता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।
3: प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी खेती है, हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, ऐसी खेती करके अपने लोगों के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं।
1: प्राकृतिक खेती भारतीय कृषि को अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनाने की दिशा में अग्रसर है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मथुरा के वृंदावन में टैंक की सफाई के दौरान चार तालिब इल्मों की मौत हो गई जबकि एक की हालत नाजुक है। मालूमात के मुताबिक वृंदावन के चेतना विहार सेक्टर 2 में वाकई गुरुकुल में पानी की टैंक साफ करने के लिए नीचे गए 5 तालिब इल्म जहरीली गैस से हलाक हो गए। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश ने कहा कि टैंक काफी दिनों से बंद था इसलिए इसमें गैस बन गई थी और हादसे के मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: श्रोताओं, दोपहर का ये वक्त भी कितना खूबसूरत होता है ना। सुबह की आपाधापी पीछे छूट जाती है, सूरज अपनी सुनहरी किरणों से फिजा को रोशन कर रहा होता है और दिन के इस सुकून भरे पहर में दिल चाहता है कि कुछ पल ठहरें, कुछ पल अपने लिए जिएं और कुछ मीठी सी बातें अपनों के साथ बांटें।
1: और इन्हीं सुकून भरे पलों में हम भी दस्तक दे रहे हैं रेडियो के माध्यम से आपके घर आंगन में, कुछ अपनेपन के साथ, कुछ प्यार के साथ और ढेर सारी खूबसूरत बातों के साथ। मैं हूं आपके साथी गुंजन।
0: और मैं हूं निकहत। और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। गृहलक्ष्मी एक ऐसा नाम जिसमें समाई है घर की रौनक, रिश्तों की गर्माहट, ममता की मिठास और जीवन को संवारने वाली अनगिनत छोटी छोटी खुशियाँ।
1: तभी तो कहा गया है कि घर की खूबसूरती दीवारों से नहीं, रिश्तों की मुस्कुराहटों से होती है। और घर की रौनक सामान से नहीं, अपनों के प्यार

0: से होती है।
1: बिल्कुल, तो इन्हीं रिश्तों की खुशबू और एहसासात की मिठास को अपने साथ लिए हाजिर हैं आपकी दोनों सखियां, तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और आज की इस खूबसूरत दोपहर में हम करेंगे कुछ ऐसी बातों का जिक्र जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी है। कभी कोई उपयोगी जानकारी आपके काम आएगी, कभी कोई प्यारी सी बात आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी, और संगीत की मधुर धुनें आपके दिल के किसी खूबसूरत कोने को छू जाएंगी। तो आप जहां कहीं भी हैं, घर के कामों में व्यस्त हैं, आराम के कुछ पल बिता रहे हैं या दोपहर की चाय का आनंद ले रहे हैं, बस अपनी दुनिया की हलचल को थोड़ा सा थामिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ रेडियो की आवाज नहीं, ये है आपके घर आंगन से जुड़ी एक आत्मीय आवाज, ये है आपके एहसासों की बात और आपके अपनेपन का एक खूबसूरत सिलसिला।
0: तो बात जब अपनेपन भरी हुई मुलाकात की हो तो संगीत का जिक्र भला कैसे ना हो।
1: बिल्कुल,
0: कभी कभी किसी से मिलने की कोई खास वजह नहीं होती, बस दिल चाहता है कि कोई मुलाकात हो ही जाए।
1: हाँ।
0: कुछ पल साथ गुजर जाए और उन पलों की खुशबू हमारी यादों में बस जाए।
1: बिल्कुल, तो बस आज गृहलक्ष्मी की इस महफिल में हमारी और हमारे श्रोताओं की जो मुलाकात भी कुछ ऐसी ही है गुंजन, तो आइए बातों और मुलाकातों के इस सिलसिले को कुछ पल के लिए सुरों के हवाले करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो मुलाकात की खुशी, साथ के एहसास और दिल में छुपी अनकही बातों को बहुत खूबसूरती से बयां करता है।
0: कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई खास वजह ही नहीं होती, बस दिल किसी अपने से मिलने का बहाना ढूंढ लेता है। कुछ पल साथ गुजरते हैं और वही पल बाद में खूबसूरत याद बनकर दिल में कहीं ठहर से जाते हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसी ही एक नर्म, प्यारी और दिलकश भावना के साथ दोपहर की हमारी इस मुलाकात को भी एक खूबसूरत याद में बदलते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: क्या ये मुलाकात एक बहाना है। वाह, क्या खूबसूरत लाइन और क्या खूबसूरत एहसास थे, क्यों
1: वाकई
0: गुंजन,
1: में,
0: है ना?
1: वाकई।
0: और गुंजन पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मोड़ पर मिलने वाला इंसान, हर गुजरती हुई हवा का झोंका और इस प्रोग्राम के सफर में हमारी और हमारे श्रोताओं की मुलाकात है। सच कुछ ये मुलाकात भी महज एक बहाना है। ये बहाना है रोजमर्रा की इस भागदौड़ से चंद लम्हे चुराने का। ये बहाना है वक्त की दहलीज पर रुककर कुछ पुराने सुनहरे और मखमली पन्नों को पलटने का।
1: और आज की ये मुलाकात सिर्फ हमारे और आपके बीच का बहाना नहीं है, बल्कि आज की मुलाकात तो एक जरिया है, एक बहाना है उस हस्ती से रूबरू होने का, जिन्होंने जब जब आंखें बंद करके सुर लगाई तो वक्त मानो ठहर सा गया, जिन्होंने दर्द को रोना नहीं बल्कि उस दर्द को गाना सिखाया।
0: जी हाँ, आज हम इस खूबसूरत बहाने के जरिए याद कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का वो चमकता हुआ सूरज, जिन्हें हम मलिकाए गजल बेगम अख्तर के नाम से जानते हैं। आज उनकी जयंती है, तो इस बहाने से बड़ा, इस मुलाकात से हसीन भला आज के दिन और क्या हो सकता है, है ना गुंजन?
1: बिल्कुल।
0: तो 7 अक्टूबर सन 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की मिट्टी में एक नन्ही कली खिली। नाम रखा गया था अख्तरी बाई फैजाबादी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी ये कली सुरों के बागान में महकी तो इसकी खुशबू पूरी उपमहाद्वीप में फैल गई और वो बेगम अख्तर बन गई।
1: बेगम अख्तर सिर्फ एक गायिका ही नहीं थी, वो अपने आप में संगीत की एक पूरी यूनिवर्सिटी थी।
0: बिल्कुल।
1: हिंदुस्तानी संगीत में ठुमरी, दादरा और गजल को जो मकाम और संजीदगी बेगम साहिबा ने दी, वो ना उनसे पहले कोई दे पाया था और ना ही उनके बाद कोई दे सका। उनकी आवाज में एक अजब सा सूफियाना ठहराव था, एक खास तरह की खनक और एक टूटा हुआ दिल धड़कता था। कहते हैं कि उनकी आवाज में जो दर्द था वो बनावटी नहीं था, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों, अकेलेपन और आंसुओं से छनकर निकला हुआ वो दर्द था जो सीधे सुनने वाले के दिल में उतर जाता
0: बिल्कुल
1: था।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और गुंजन, एक दौर था जब गजलों को सिर्फ पढ़ा जाता था या दरबारों में बेहद संभल कर गाया जाता था, लेकिन बेगम अख्तर साहिबा ने गजल को आम इंसान की धड़कन बना दिया। मिर्ज़ा गालिब की पेचीदा शायरी हो या जिगर मुरादाबादी और शकील बदायूनी के जज्बात, बेगम अख्तर ने जब इन शायरों के शब्दों को सुर दिया तो शायरी और सुर मानो कोई खूबसूरत संगम हो गया हो। उनकी गाई हुई गजल गुंजन तुमने सुनी होगी, बहुत ही मशहूर गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है ना? अभी
1: बिल्कुल।
0: हम लोग प्रोग्राम से शुरुआत में बात भी कर रहे थे, जब हम लोग इस गाने गजल को निकाल रहे थे, तो ये बात तुम्हारी और मेरे भी छो भी रही थी।
1: बिल्कुल हो रही।
0: बहुत खूबसूरत और बहुत ही मशहूर ये गजल है। तो ये जो गजल है हवाओं में तैरती है, तो ऐसा लगता है मानो मोहब्बत ने खुद अपनी दास्तान बयां की हो। ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो से लेकर बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल तक जब वो हारमोनियम पर उंगलियां फेरती थी तो सामने

0: बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
1: वाकई में बिल्कुल। क्या कभी आपने सोचा है कि बेगम अख्तर की आवाज में ऐसा क्या था जो कभी किसी और की आवाज में सुनाई नहीं दिया? उनकी आवाज में कोई भी बनावटीपन नहीं था।
0: बिल्कुल,
1: उनकी आवाज में खूबसूरत सा कर्कश था।
0: हाँ,
1: एक ऐसी खनक थी जो लोगों के दिल को छू जाती थी। संगीत की पारखी कहते हैं कि बेगम साहिबा में कभी सुरों को केवल गाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के व्यक्तिगत दुखों को, अपनी तन्हाइयों को और अपने सीने में दबे उस दर्द को सुरों के सांचे में ढाल दिया था। वो दर्द की एक ऐसी जादूगर थी जो आंखों के आंसू को अपनी गायकी के जरिए रूहानी नूर में बदल देती थी।
0: बिल्कुल सही कह रही हो गुंजन। और देखो, ठुमरी की नज़ाकत हो, दादरा की चंचलता हो या गज़ल की गंभीर गहराई, बेगम साहिबा ने इन विधाओं को कई तरह की बंदिशों से आज़ाद कराया। और एक दौर था कि जब लोग ये सोचते थे कि शास्त्रीय संगीत सिर्फ विद्वान ही समझते हैं, लेकिन जब बेगम अख्तर ने हारमोनियम पर अपनी उंगलियां फेरते हुए पूरब अंग की ठुमरी गाई तो हर आंख नम हो गई और हर दिल बोल पड़ा, वाह क्या आवाज़ है। कहने का मतलब ये है कि शास्त्रीय संगीत को आम इंसान की समझ और पहुंच में उन्होंने ही लाकर खड़ा किया था।
1: भारत सरकार ने उनकी इस महान साधना को नमन करते हुए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा। लेकिन उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था श्रोताओं के दिलों पर उनका राज
0: करना। बिल्कुल। और देखो, वक्त का पहिया चलता रहा और साल 1974 के अक्टूबर महीने के आखिरी दिनों में अहमदाबाद के एक कॉन्सर्ट के दौरान अपनी आखिरी सांस तक सुरों की सेवा करते हुए इस आवाज ने हमेशा हमेशा के लिए खामोशी की चादर ओढ़ ली। मल्लिका गजल इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन गुंजन, क्या कला कभी मरती है?
1: नहीं।
0: क्या सच्चे सुर कभी खामोश हो सकते हैं?
1: कभी नहीं।
0: आज बेगम अख्तर भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गाई हुई ताने, उनका गाया हुआ दादरा, ठुमरी और उनकी जो आवाज का वो जो दर्द था ना, वो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। तो आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी ही जादुई मखमली आवाज में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गजल।

0: तो गुंजन, ये खूबसूरत गजल जो अभी हम सुन रहे थे, जाहिर सी बात है तुम्हें भी जरूर पसंद
1: बहुत
0: आई होगी ना।
1: भाई मैं भी इसका बहुत ही लुत्फ ले पा रही थी और इस गजल में एक गहरा ठहराव और एकांत मैंने महसूस किया।
0: बिल्कुल,
1: गजल की ये विदा हमेशा से मनुष्य के अंतर्मन और उसके आत्ममंथन और उसकी भावनाओं को सहेज कर रखने का एक प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: साहित्य का वैसे भी ये नियम रहा है कि जो जज्बात जितने गहरे होते हैं वो उतने ही व्यक्तिगत होते हैं।
0: लेकिन इस खूबसूरत गजल के सुरों से निकलते ही आज हम खुद को एक बिल्कुल अलग धरातल पर खड़ा पाते हैं गुंजन, और ये जो धरातल है ना वो हमारी आज की वार्ता का एक विषय है, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को एक बहुत ही गुड न्यूज दे दें, इन्फॉर्मेशन दे दें जिसका हमारे श्रोता हमेशा से इंतजार करते हैं, वो है हमारा खास कार्यक्रम हेलो गृह लक्ष्मी, जो कि 9 अक्टूबर शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा दोपहर 1:15 से 2 बजे के बीच। और इस प्रोग्राम में हम 2 फिल्मों के गीतों को लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फिल्म तेरे नाम और उमराव जान। और इन दोनों फिल्मों में से किसी एक फिल्म का कोई गीत आप अपनी पसंद का सुन सकते हैं, और गीत को सुनने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0532-242-3649। हमारा दूसरा नंबर है 0532-2970-462। और आप अपनी पसंद का गीत हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो भाई हम इस फोन नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपकी फरमाइशों का इंतज़ार करेंगे। समय है दोपहर 1:15 से लेकर 2 बजे के बीच, और तारीख हम आपको फिर से बता देते हैं 9 अक्टूबर दिन शुक्रवार को। तो हमें आपकी फोन कॉल्स का रहेगा बेसब्री से इंतजार। और गुंजन फिर से हम अपनी बातों पर वापस आते हैं, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि आज हम खुद को एक बिल्कुल अलग धरातल पर खड़ा पाते हैं, और ये जो धरातल है हमारी आज की वार्ता का विषय भी है, है ना। तो हमारे जो वार्ता का विषय उन्हें हम बता देते हैं कि सोशल मीडिया से बदलती कार्यशैली। और ये जो वार्ता हम उनके लिए लेकर आए हैं, हम अपने श्रोताओं की विशेष अनुरोध पर लेकर आए हैं, पहले भी हम इन्हें सुनवा चुके थे जिसको श्रोताओं ने बहुत पसंद किया था और अनुरोध कर रहे थे बार बार कि इस वार्ता को हमें फिर से सुनवाया जाए। तो बस आज उनके लिए हम लेकर आए हैं ये वार्ता, फिर से बता देती हूँ इसका विषय, सोशल मीडिया से बदलती कार्यशैली। वार्ताकार हैं डॉक्टर तृप्ति सिंह।
2: सोशल मीडिया, मोबाइल और वेब पर आधारित डिजिटल मंचों प्लेटफॉर्म का एक व्यापक संग्रह है जिसने लोगों के बातचीत और संवाद करने के तरीकों को मूल रूप से बदल दिया है। इसके माध्यम से सोशल मीडिया उपयोगकर्ता खुद के द्वारा बनाई अथवा उत्पन्न की गई सामग्री जैसे चित्र, वीडियो और एनिमेशन को लोगों के बीच साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया बातचीत का एक जरिया तो है ही, यह नेटवर्किंग और नए रिश्ते या संबंध बनाने में सहायक है, पर अभी ये बहुत नई प्रणाली है और इसके लिए नियमों और नीतियों की ज़रूरत है। आजकल विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया उपलब्ध हैं और पूरे विश्व भर में इसका उपयोग हो रहा है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। हम सभी लोग इसके प्रति जागरूक हैं। 2018 के एक सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया है कि पूरे विश्व में हर साल 13% लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। यदि हम पिछले साल की तुलना में करें, देखा जाए तो सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा लोग, करीब 32%, भारत में

31%, चीन में 22%, जबकि अमेरिका में 7% और यूरोप में 5% उपभोगकर्ता अधिक हुए हैं। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में कई लोग सोशल मीडिया के प्रति जागरूक हो गए हैं। विश्व स्तर पर फेसबुक सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया है, पर भारत में फेसबुक के साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। ज़्यादातर पुराने जनरेशन के लोग जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, नए जनरेशन यानी कि 15 से 18, 20 साल के वर्ष के लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि भारत के साथ विश्व स्तर पर 18 से 29 वर्ष के लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया उपयोग करते हैं। इसमें विद्यार्थी, महिलाएं, ग्रामीण लोग, शहरी लोग, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 28% लोग कम से कम 2-3 घंटे सोशल मीडिया प्रतिदिन उपयोग करते हैं। विश्व स्तर के में इसका उपयोग थोड़ा कम होता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन में बहुत हस्तक्षेप कर रहा है, चाहे वह पेशेवर जिंदगी हो या फिर निजी जिंदगी। अतः सोशल मीडिया का कार्यस्थल या कार्य प्रणाली पर बहुत अच्छा या बुरा प्रभाव दोनों ही देखने को मिला है। सोशल मीडिया के उत्थान से कार्यस्थल की संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया है। इस असीमित कार्य प्रणाली को कार्मिक को पूर्ण रूप से सौंपना भी उचित नहीं है, इसलिए कई मामले में कंपनियां बहुत सूझबूझ के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोग कर रही हैं, क्योंकि इसने कार्य क्षेत्र की सीमाओं को लगभग खत्म कर दिया है, इसका विस्तार हो गया है और इसका असर लोगों की कार्यशैली पर भी पड़ रहा है। इसलिए अधिकांश कंपनियों ने इस तरह के प्लेटफॉर्म को उपयोग करने के लिए नियम और नीतियों को विकसित करना शुरू कर दिया है। कंपनियां सोशल मीडिया को एक मंच की तरह उपयोग कर रही हैं, जिसमें कंपनियां अपना पूरा जीवन वृत्त दिखाती हैं और इसके द्वारा कंपनी ग्राहक अथवा सहभागियों के साथ जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए हम किसी भी कंपनी का फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हैं। पिछले कुछ समय में उद्यम सोशल मीडिया का चलन बढ़ गया है, जिसमें कंपनियां सिर्फ अपने कार्मिक से बातचीत करने अथवा कार्य से संबंधित चीज़ों की चर्चा करती हैं। प्राय यह भी देखा गया है कि भारत सरकार और उससे संबंधित विभागों में भी सोशल मीडिया पेज बना लिया है। इसके द्वारा वह सामाजिक लोगों से मेल जोल बनाने, योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग कर रही हैं। अभी तक कानूनी रूप से सोशल मीडिया को लेके कोई अधिनियम नहीं पारित हुआ है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा इसको विनियमित किया जा रहा है। सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई विकास कार्यों में भी मदद मिली।

0: दी है, जिससे कि लोकतंत्र को समृद्ध बनाने का काम हुआ है। अगर हम सोशल मीडिया के प्रभाव को कंपनियों के ऊपर गौर करें या कंपनियां किस तरह से इसका उपयोग कर रही हैं, तो हमें यह देखने को मिलता है कि कंपनियां सोशल मीडिया को जागरूकता फैलाने के लिए, बातचीत करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, नई भर्तियां करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए और नई चीज़ों को सिखाने के लिए उपयोग कर रही है। इसके साथ कंपनियां अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए, ग्राहकों से अच्छे पेशेवर संबंध बनाने के लिए उपयोग कर रही है, जिसे वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। पारंपरिक मीडिया की तुलना से सोशल मीडिया की लागत अब बहुत कम है अथवा ना के बराबर है, इसलिए ज़्यादातर लोग इससे जुड़ रहे हैं। कई शोधों में पता चला है कि यह कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन में भी वृद्धि करता है और उनके रोज़मर्रा के जीवन में कार्यों में भी मदद करता है। लेकिन सोशल मीडिया का हमारे जीवन और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को भी मिला है। एक अध्ययन के मुताबिक सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल करने से याददाश्त अथवा भूलने की बीमारी, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, ये भी एक कारण बन सकता है तथा यह चिंता और तनाव को भी बुलावा देता है। इसके सबसे ज़्यादा शिकार नवयुवक और विद्यार्थी होते हैं। एक दूसरे शोध में यह पता चला है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से व्यवहार संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, अनिद्रा का शिकार हो जाता है तथा मनुष्य अपने लोगों से दूर हो जाता है और मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ा रहता है, जो हमारे निजी जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया ऑडिट या सोशल मीडिया कमीशन बनाकर बहुत से अव्यवहारिक संदेशों को कंट्रोल किया जा सकता है। मोबाइल की वजह से गांव शहर में हर आदमी इंटरनेट से जुड़ गया है। ज़रूरी यह है कि इस अथाह सूचना को कैसे सकारात्मक तरीके से उपयोग किया जा सके। व्हाट्सएप जैसे मीडिया ने भी एक शासन अधिकारी की नियुक्ति की है, जो समाधान के लिए इससे हमको दो संकेत मिलते हैं। पहला, यह समस्या वास्तविक है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तथा दूसरी, अब कंपनियां इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सोशल मीडिया का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे ही करना चाहिए। साथ ही भारत सरकार को भी इस पर नियम और नीतियों को बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके और इसके अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए।
1: सोशल मीडिया की बदलती कार्यशैली, इस विषय पर अभी आप सुन रही थी यह पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार थी डॉक्टर तृप्ति सिंह जी। तो हम तो यही कहेंगे कि तकनीक का उपयोग समाज से जुड़ने के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी निजता को खोने के लिए।
2: बिल्कुल।
1: जीवन में कुछ लम्हे, कुछ यादें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, उन्हें हर किसी के साथ साझा करना जरूरी नहीं है।
2: और जीवन की सच्ची खुशियाँ, सच्चे सपने और सच्चे रिश्ते तो बहुत व्यक्तिगत होते हैं। किसी के प्रति प्रेम या विश्वास सोशल मीडिया की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आंखों के मौन में दिखाई देते हैं। तो आइए अपनी इस निजता, इस रिश्ते को सहेजने के लिए खूबसूरत संकल्प लीजिए और एक किसी संकल्प के साथ एक बेहद ही सुरीले और सदाबहार गीत की तरफ हम चलते हैं, जहां सिर्फ दो आंखें और उनके सपने हुए कुछ अनमोल सपने हैं। तो आइए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद अब हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि 9 अक्टूबर शुक्रवार को दिन में 1:15 से 2 बजे के बीच हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी। इस प्रोग्राम में हम 2 फिल्मों के गीत आपको सुनवाएंगे, फिल्म तेरे नाम और उमराव जान। तो अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए हमें कॉल कीजिए, हमारा फोन नंबर है 0532-242-3649 और हमारा दूसरा नंबर है 0532

0: 2970462। और हमारे वो श्रोता जो किसी कारणवश फोन के माध्यम से इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पसंद का गीत हमें मैसेज कर दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो 9 अक्टूबर शुक्रवार को दिन में 1:15 बजे हमें रहेगा आपकी फोन कॉल्स का इंतजार।
1: तो इसी के साथ फिर अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले चरण में।
0: हाँ हाँ।
1: और आज हम लेके आए खाना खाने के बाद जो बेहद जरूरी होता है, माउथ फ्रेशनर।
0: वही मैं कहने वाली थी गुंजन की, अब जो समय है वह है खाना खाने का। तो खाना खाने के बाद फिर ऐसा क्या खाया जाए जिसे खाना जो है जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, और कई बार ये होता है कि हमारे जो मुंह से थोड़ी स्मेल भी आती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए और खाना जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, इसके लिए आज क्या बता रही हो?
1: बस बिल्कुल मैं इसी को लेकर के आई हूँ कि कई लोगों को जैसे खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाने की आदत होती है।
0: हाँ।
1: है ना, उससे जैसा कि अभी आपने
0: मतलब
1: कहा
0: आदतन भी लोग कई बार खाते हैं।
1: जी जी बिल्कुल। और अभी आपने कहा भी कि उससे खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और साथ ही साथ इससे हमारा एक फ्रेशनेस जो माउथ का बना रहता है वो भी होता है। वैसे मार्केट से खरीदे हुए माउथ फ्रेशनर में कई तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हम जानते हैं, और ये काफी सेहत के लिए हानिकारक भी होते हैं, जो अच्छे नहीं माने जाते। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये प्रिजर्वेटिव कितनी भी कम मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा भी रोजाना ज्यादा मात्रा में माउथ फ्रेशनर खाएंगे तो वाकई ये हमारी सेहत के लिए कहीं ना कहीं से
0: बहुत
1: हानि ही करेगा।
0: अच्छा जी, हाँ।
1: जी बिल्कुल, है ना,
0: लाभ नहीं देगा, नुकसान ही पहुंचाएगा। तो देखो माउथ फ्रेशनर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर है जो हमारे लिसनर्स बनाकर रख सकते हैं, वो है अदरक का चटपटा माउथ फ्रेशनर। तो अदरक को साफ करके बारीक टुकड़ों में काट लीजिए, उसको किस लीजिए, एक ट्रे पर फैलाकर इस पर नमक और काली मिर्च पाउडर आप छिड़क दें, और कम से कम 4-5 दिनों तक उसे सुखाएं। फिर इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रखें, और रोज खाने के बाद थोड़ा सा ये माउथ फ्रेशनर आप ले लें।
1: वाह। और एक मैं भी बताती चलूं, मैं लाई हूँ मिंट माउथ फ्रेशनर, यानी कि पुदीना। पुदीना एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर है। आप खाने के बाद इसके पत्ते माउथ फ्रेशनर की तरह चबा सकते हैं। आप चाहें तो पुदीने के पत्तों को सुखा कर क्रश कर लीजिए, और नमक मिलाकर एक एयर टाइट डिब्बे में उसको भर लीजिए, और आप कभी भी उसको ले सकते हैं।
0: हाँ, और गुंजन पता है सौंफ और धनिया का माउथ फ्रेशनर जो है ना, वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप 1 कप सौंफ ले लीजिए, 1 कप बड़ा जो खड़ा धनिया ले लीजिए, 1/2 कप तिल और 1/2 कप इलायची दाने को मिलाकर एक पैन में आप रोस्ट कीजिए। जब तक रोस्ट करें तब तक इनका जो रंग जब बदल ना जाए, तब तक हमें इसको रोस्ट करना है जब तक इनका रंग बदल ना जाए। फिर इन्हें एक शीशे के जार में भरें, इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ कुछ भी मिला
1: जो
0: सकते
1: भी
0: हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल। और एक और है खरबूजे और अलसी का माउथ फ्रेशनर।
0: हाँ।
1: सबसे पहले खरबूजे के जो बीज होते हैं उसको 3-4 मिनट तक आप सूखा हल्का सा रोस्ट कर लें, और साथ ही अब अलसी के जो बीज हैं उसको हल्का सा रोस्ट कर लें। इन दोनों को ठंडा करके एक एयर टाइट डिब्बे में डाल दीजिए, इसमें 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर मिलाइए और थोड़ी सी मिश्री मिलाइए। बस इन सबको आपस में मिला लीजिए, और आपका एक तैयार है माउथ फ्रेशनर।
0: वाह क्या बात है। तो मतलब हमने जो टिप्स दिए हैं माउथ फ्रेशनर को लेकर, तो हमें उम्मीद है कि अपने जो श्रोता इस माउथ फ्रेशनर को बना करके इसका स्वाद जरूर लेंगे। और अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम अपने श्रोताओं से बस यही कहेंगे कि
2: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: बच्चों नहीं नर्सों।
1: कहाँ?
2: अच्छा तो हम चलते हैं और अब गुंजन अपने श्रोताओं से भी यही कहेंगे कि अब तो हम चलते हैं क्योंकि घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि आपके साथ बिताए इन खूबसूरत पलों को अब हमें यहीं पर समेटना होगा। तो अगली मुलाकात के वादे के साथ हम लेते हैं इजाजत। तो अनुमति दीजिए निकहत
3: और गुंजन को
2: नमस्कार।

0: शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद आकाशवाणी।
1: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1,00,000 रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
0: थ्रू द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, द लखपति दीदी इनिशिएटिव इज स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज, विलेजेस एंड रूरल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग टू द विजन ऑफ विकसित भारत। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर।
2: India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall at isolated places over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura during the day. After the Met Department of Himachal Pradesh issued a yellow alert, the weather today has taken a turn once again. Snowfall is occurring in the state's high altitude mountainous regions while other areas are experiencing thunderstorms and rain. More from our correspondent.
3: Due to the activity of a western disturbance, the weather in Himachal Pradesh has shifted. High altitude areas are witnessing snowfall, while lower regions are experiencing hailstorms and thunderstorms accompanied by rain. There are also apprehensions of damage to crops. This precipitation has led to a drop in temperatures and an increase in the chill. Snowfall has occurred on the high peaks of Lahul Spiti, Pangi and Kullu, while the high peaks of Pir Panjal range, including the Rohtang Pass, are now draped in a blanket of snow. According to the Meteorological Center in Shimla, a yellow alert has been issued for thunderstorms and lightning in the district of Una, Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, Shimla and Solan for the next 4 days, while light snowfall is expected in Kullu and Lahul Spiti. With Ritesh Kapoor's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News.
2: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says present government's policy focuses on solutions for all citizens, addresses Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar stresses the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. IMD forecasts heavy rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And India calls for stronger climate action and faster implementation of Paris Agreement at pre-COP31 meeting in Fiji today. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
5: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और

0: चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुँचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना

0: की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
4: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझ कर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
3: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
5: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
6: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बना

0: आने का लक्ष्य तय किया था उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
1: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
2: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
1: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
3: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ SJ ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT के तहत उमंग कार्यक्रम।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
1: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार।
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो

0: जाता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
1: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
0: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी,
0: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट, जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
1: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है, बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की।
0: जी,
1: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे।
1: जी, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ। लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
0: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है।
0: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
0: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में
1: किसी गांव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
0: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की

0: स्मृति में दिया जाता है।
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: एनसीईआरटी की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हर पल चलती जाती चींटी, शम का राग सुनाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
0: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।

0: हिरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
2: नाना ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
1: बस बस मैं समझ गई।
0: वो सोचने लगी,
1: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
0: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
1: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
3: तो बच्चों सुना आपने, मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना, है ना ये हमारा अपना काम। तो आइए जब सब करते हैं अपना अपना काम तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकटचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और

0: परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
1: बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
0: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
1: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है। इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
2: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
3: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
2: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
4: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
3: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
4: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
3: क्यों?
4: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
3: हो।
4: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
2: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए सक्कर में कर दिया जाए।
4: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
2: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
4: थैंक यू।
1: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
0: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी।

0: एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
1: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
2: किसने खींची चेन?
3: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
4: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
2: व्हाट? क्या मजाक है ये, आप कैसे कह सकते हैं?
4: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
2: आइए आइए, देखते हैं।
4: आइए, हम भी चलते हैं।
2: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
4: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
1: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
4: आइए सर, आइए देख लीजिए।
2: अभी तक तो यहां भी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहां पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहां पटरियां उखड़ी हुई हैं। मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
4: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
2: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
3: We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please?
4: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiya.
3: Oh, the engineer in chief of Mysore State.
5: Aur railway sachiv bhi.
2: Namaskar sir.
4: Ji sir. Main wahi hoon.
3: Namaskar sir. Namaskar. We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
4: धन्यवाद।
1: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
0: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
1: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
0: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
1: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
1: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी,

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT के तहत उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर भी सुन सकते हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने को है। अब ये सभा यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए रोशनी को दीजिए अनुमति। विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा जारी रहेगी FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के इस गाने के साथ। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल्ली का ठग के से ये गीत, आवाज़ें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। और इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

जब भी हम न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि हमारा भारत देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इकोनॉमी, हर फील्ड में इंडिया का नाम सबसे आगे रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 21st सेंचुरी में किस देश का असली ग्लोबल सुपर पावर बनना कहेंगे? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, चमकती सड़कें तैयार करना या फिर बड़ी फैक्ट्रियां लगा देना ही तरक्की है? जी नहीं, आज के दौर में असली विश्व शक्ति देश वही है जो प्रोग्रेस के साथ साथ एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा ख्याल रखे। इसी बैलेंस को हम इसी वर्ड में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा यादव और आप सुन रहे हैं युववाणी।

0: गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
4: 870-001-4242।
5: सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सिंपल वर्ड में समझें तो अपनी आज की जरूरतों और सपनों को इस तरह से पूरा करना ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए साफ हवा, पानी और कुदरत की खूबसूरती कभी खत्म ना हो। पहले लोग सोचते थे कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो पॉल्यूशन को तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन भारत ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। आज हमारा देश सोलर पावर और विंड एनर्जी जैसी क्लीन एनर्जी ऑप्शंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ें अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ के जरिए ये सिखाया कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें जैसे पानी बचाना, बिजली की बर्बादी को रोकना और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाना हमारे पूरे प्लैनेट को सेफ बनाता है। सो इन शॉर्ट, असली पावर सिर्फ पैसे और जीडीपी में नहीं होती है बल्कि दुनिया को एक साफ सुथरा और हरा भरा भविष्य देने में होती है। और जब हमारी तरक्की और कुदरत हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं तभी हमारा भारत सही मायने में विश्व शक्ति बनता है।

0: श्रोताओं, आज हमने अपने कार्यक्रम में कहानी शामिल की है। कहानी का टाइटल है सबक और कहानीकार है श्रेयांश वत्स। आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: ऑफिस में ही था जब मम्मी ने फोन करके मुझे बताया कि वो कल मेरे पास दिल्ली आ रही हैं। मेरी शादी के बाद वो पहली बार मेरे पास आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। मैं ऑफिस का काम फटाफट निपटा कर घर पहुंचना चाहता था। गाड़ी में बैठकर मैं घर के लिए निकला तो रास्ते में सोच रहा था कि मेरी शादी में मम्मी और पापा कितने खुश थे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि शरण्या जो कि मेरी पत्नी थी वो उन्हीं की पसंद थी।

मम्मी मेरी अगर आदर्श थीं तो पापा मेरे आइडल। भला उनकी पसंद को मैं कैसे नकार सकता था। यही सब सोचते सोचते मेरा घर आ गया। मैंने शरण्या को आवाज़ दी और बताया कि कल मम्मी पापा आ रहे हैं। ये सुनने के बाद भी उसका चेहरा भावविहीन ही रहा। उसकी इस प्रतिक्रिया का मुझे बिल्कुल भी भान नहीं था। उसके घर पहली बार उसके सास ससुर आ रहे थे और वो उनकी इकलौती बहू थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था पर मैंने शांत रहना ही उचित समझा। पर रह नहीं पाया। मैंने शरण्या से पूछ ही लिया, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? उसने तपाक से बोला, हाँ। मैं भी तुनक गया। तो मुंह क्यों बनाई हो? अब भगवान ने मुंह ही ऐसा दिया है तो क्या करूं। मैं भी टावल हाथ में रखकर बाथरूम जाते जाते बोलने से चूका नहीं। सुबह तक तो सही था और फ्रेश होने चला गया। सारी प्रतिक्रिया को देखने के बाद मैं इस बात से अनभिज्ञ बिल्कुल भी नहीं था कि शरण्या को मम्मी पापा कहना पसंद नहीं। मेरी आत्मा बहुत ही ज़्यादा कष्टित हुई। आज की इस जनरेशन की इतनी घटिया सोच को देखकर मेरा मन बहुत आहत हुआ और मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। फ्रेश होने के बाद सीधा मैं अपने कमरे में चला गया। बार बार मम्मी पापा का वह चेहरा याद आ रहा था। कभी उनका संघर्ष भरा दिन जो उन्होंने मेरी पढ़ाई में उठाए थे, और कभी मम्मी का वो हर परिस्थिति में मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने एक लार्ज पैक बनाया और सिगरेट जलाई। इसके पहले ही मैंने काम वाली बाई को अपने बेडरूम से सटा हुआ कमरा साफ करने को बोल दिया और मेरे रात का डिनर ना होने की घोषणा कर दी और अपना कमरा बंद कर लिया। शरण्या का ख्याल भी उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।

सुबह 10 बजे ही मम्मी पापा को लेकर मैं अपने घर आ गया। शरण्या भी एक आदर्श बहू की तरह तैयार थी, पर मुझसे उसका यह रूप देखा नहीं जा रहा था। मन में कुछ और बाहर कुछ और। मैंने सोच लिया था कि जितने दिन भी मम्मी पापा यहाँ रहेंगे, उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। ये कोई एहसान नहीं था मेरा उन पर, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ था। गरीबी हो या अमीरी, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और अब बारी एक बेटे की थी। रात के खाने पर शरण्या बार बार अपना दुपट्टा सही कर रही थी, तो पापा ने अपने बिंदास अंदाज में बोल ही दिया, बेटा आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जी पापा जी, कहकर वो सीधी सीधी बनकर बैठ गई। खाना खाकर जब मम्मी पापा आराम करने चले गए, तो फिर मैंने शरण्या को छेड़ा, बॉलीवुड में ट्राई करो, एक्ट्रेस अच्छी हो। शरण्या ने मुझे ऐसे देखा जैसे खा जाएगी। 3 दिन गुजर गए थे, मैंने छुट्टी लेकर पूरा दिल्ली घुमा दिया था मम्मी पापा को। आसपास का एरिया बाकी था, वो भी घूमने का प्लान बन रहा था। मैं कमरे में सोने गया तो शरण्या के तीखे बाण जैसे शब्द मेरे कानों में गूंजे, कब तक रहेंगे तुम्हारे जान से प्यारे मम्मी पापा? अगर उनका यहीं बसने का इरादा है तो मैं अपने मायके चली जाऊं। मैं बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकला ही था कि देखा मम्मी फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही हैं। उन्होंने शरण्या की पूरी बात सुन ली, पर उन्होंने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जो जैसे मैं जान सकूं कि उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं। पर मैं तो मम्मी को जानता था। सुबह हुई तो मम्मी पापा घर जाने को तैयार थे। मैं सब कुछ समझ गया, पर समझ कर भी नहीं समझ रहा था। मैं मूक दर्शक बना देख रहा था। जाते जाते मम्मी ने मेरा माथा चूमा तो मेरी आंखें बरस पड़ीं। उसी समय मैंने ठान लिया कि मैं शरण्या को इसका एहसास ज़रूर दिलाऊंगा। समय बीतता गया। एक दिन ऑफिस से लौटा ही था कि देखा शरण्या के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई घर आए थे। नाश्ते की टेबल सजी थी।

0: अरण्या खूब चहक रही थी। खाने पीने के आइटम तो ऐसे खिला रही थी मानो जैसे वो जन्म जन्मांतर के भूखे हों। मैंने अभिवादन किया और कमरे में आ गया। खाना भी मैंने अपने कमरे में ही मंगवा लिया। सब काम निपटा कर जैसे ही वो कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा, अब इनका क्या प्रोग्राम है, कब तक रहेंगे, क्यों आज ही तो आए हैं। तो मेरी आवाज़ तेज़ थी। शरण्या ने मेरा मुंह दबा दिया और दांत पीसते हुए बोली, अरे ज़रा धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं चीख कर बोला, वही जो मेरे माँ बाप ने सोचा था। तुम्हारे माँ बाप हैं क्यों, और मेरे घर वाले तुम्हारे दुश्मन, ये क्या बकवास कर रहे हो। अच्छा ये बकवास है, और जो तुम बोल रही थी वो ज्ञान है। इतने में शरण्या के घर वाले मेरे बेडरूम में आ गए। शरण्या की माँ बोली, बेटा आखिर बात क्या है, ज़रा हमें भी तो बताओ। रुआंसा सा गला लिए मैंने पूरी बात शरण्या के मम्मी पापा को बताई। तब शरण्या के पापा बोले, देखो शरण्या गलती तुम्हारी है। शिक्षा का और आधुनिकता का ये मतलब नहीं कि आप अपने संस्कार भूल जाएं। दोनों परिवारों का संतुलन बनाकर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ बाप बोझ नहीं होते बेटा। अगर तुम एक अच्छी कुशल बेटी बन सकती हो तो एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी क्यों नहीं। आखिर तुम्हारे भाई की जो पत्नी आएगी वो हमारे साथ ऐसे व्यवहार करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर तुमने अपना तरीका अपनी सोच नहीं बदली तो बेटा हमें भी भूल जाओ। शरण्या फूट फूट कर रोने लगी। सॉरी पापा, अब कभी ऐसा नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी। डबडबाई आंखों से उसने मेरी तरफ देखा। आज सच में उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने मुझसे भी सॉरी बोला और प्यार से गले लग गई। मैंने कहा, प्यार मैं तुमसे भी बहुत करता हूँ शरण्या, पर तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में मम्मी पापा हैं। अरे ये ज़िंदगी भी तो उन्हीं की दी हुई है। उन्हें अगर थोड़ा सा प्यार मान सम्मान दे दिया तो हमारा क्या घट जाएगा। माहौल बोझिल था। शरण्या के पापा ने कहा, भाई अब हम तो समधी समधन के साथ ही घूमने जाएंगे। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी कहानी। कहानी का टाइटल था सबक और कहानीकार थे श्रेयांस वत्स। हमें उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अभी हम अपने सेगमेंट प्रेरणा पुंज पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत आपके लिए।

जब भी हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े भाषण सुनने को मिलते हैं, लेकिन झारखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर एक महिला ने बिना किसी शोर शराबे के जो काम किया है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हम बात कर रहे हैं चामी मुर्मू जी की, जिन्हें लोग प्यार और आदर से लेडी टार्जन ऑफ झारखंड भी कहते हैं। बात उस समय की है जब चामी मुर्मू जी के इलाके में जंगल माफिया हावी थे। पेड़ों की अंधाधुंध इलीगल तरीके से कटाई हो रही थी, जिससे हरे भरे जंगल बंजर जमीन में बदल रहे थे और पानी का भारी संकट पैदा हो रहा था। इस पर्यावरण के विनाश का सबसे बुरा असर वहां की लोकल महिलाओं पर पड़ रहा था, जिन्हें पानी और लकड़ी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। चामी जी ने इस बर्बादी को मूर्ख दर्शक बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने बिना किसी इंतजार के अकेले ही अपनी यात्रा शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी एक साथ जोड़ा और महिला कल्याण समिति का गठन किया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चामी मुर्मू जी और उनकी टीम ने मिलकर अब तक कितने पेड़ लगाए होंगे? 1,000, 10,000? जी नहीं, उन्होंने अब

तक 28 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाकर बंजर पड़ी जमीन को एक विशाल घने जंगल में बदल दिया है। उन्होंने जंगल माफियाओं से सीधे टकराने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, लेकिन उनकी ये लड़ाई सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने हजारों रूरल वुमेन्स को सिलाई, पशुपालन और खेती जैसे कामों से जोड़कर उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उनके इस महान और असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री और नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रोताओं, मैं मानती हूँ कि बदलाव लाने के लिए किसी बड़ी डिग्री या बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी नीयत साफ है और इरादों में दम है, तो एक अकेला इंसान भी पूरे समाज और इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए दिया है। उन्होंने रसायन विज्ञान में मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292

4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। रात 10 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत और रात 8 बजे भी आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन होगा। शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के और प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आशुतोष श्रीवास्तव के गाए गीत और भजन होंगे। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 पर सुनिएगा गज़लों का कहकशा। रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन होगा। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में वर्षा तिवारी के स्वर में गीत होंगे। 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। कल प्रातः कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर कमाल अहमद से श्वेता श्रीवास्तव की बातचीत होगी आलू की बुआई हेतु खेतों की तैयारी विषय पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:45 पर डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत होगी स्तनपान बच्चों के लिए कितना लाभदायक। 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन होगा। 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में वर्षा तिवारी के स्वर में भजन और गीत होंगे। 10:30 पर लोकगीत सुनिएगा बाबूलाल दिवाकर सावित्री श्रीवास्तव और मोतीलाल और साथियों के स्वर में एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम होगा 11 बजे। 11:30 पर आप सुनेंगे बोलते नगमे कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण। दिन में 12:15 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन। दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघर, जिसमें वायु सेना दिवस पर शुभ मालवीय से कंचन श्रीवास्तव की बातचीत होगी महिलाएं सशक्त कैसे बने, संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम सुनिएगा 4 बजे। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आशीष कुमार मिश्र का काव्य पाठ होगा। ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए देशगान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:20 होने को है। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रवाचिका निधि ही झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। नागरिक समस्यानां स्थायी समाधानमेव प्रशासनस्य परमं लक्ष्यम्। विकसित भारत संकल्प सभायां प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्। युवशक्तिः समाश्रित्य वर्धतां भारत आफ्रिका देशयोः हितम् इति विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकरः। आरबीआई संस्थया रेपो अनुपातः 5.50% यावत् वर्धितः। अस्मिन् वर्षे तावत् विकास अनुपातः 7.1% भवितुम् अनुमानम्। जलवायु रक्षणाय पेरिस संधेः तीव्र कार्यान्वयनम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। फिजी गोष्ठ्यां भारतस्य स्पष्टः संदेशः। रसायनक्षेत्रे अभूतपूर्वशोधाभ्यां फ्रांस जापान देशयोः वैज्ञानिकाभ्यां नोबेल पुरस्कारः समुद्घोषितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याम् अद्य विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् दूरदर्शिन्या नीत्या कठोर परिश्रमेण च भारतम् 47.2 वर्षे विकसित राष्ट्रस्य स्वकीयं स्वप्नम् अवश्यमेव पूर्णं विधास्यति। वर्तमान प्रशासनस्य नीतयः सर्वनागरिकाणां समस्यानां समाधाने केन्द्रीकृताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् पुरा यत् भारतं नीतिगत शिथिलतायाः कृते चर्च्यते स्म तत् अद्य स्वकीयायाः वर्धमान शक्तेः दृढतायाः च कृते जगति विश्रुतमस्ति। गतेषु 12 वर्षेषु देशस्य स्थितिः सर्वथा परिवर्तिता। पूर्वतनस्य आयातनिर्भरता युगस्य स्थाने अद्य भारतम् उत्पादनसामर्थ्येन निर्यातक्षेत्रे नूतनकीर्तिमानानि रचयति। तेन सविशेषं संसूचितं यत् 25.5-26.5-26.5 स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कृषिक्षेत्रे उच्चतमस्य अनवरतविकासस्य साक्षीभूतम् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् ईदृशं युगान्तकारी परिवर्तनं तदैव सम्भवति यदा संकल्पः सुस्पष्टः नीतयः च सुनिश्चिताः भवन्ति।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् अयं समयः भारताय बृहत्तमानां लक्ष्यानां निर्धारणाय अत्यन्तम् अनुकूलः अस्ति। स्वकीयां समग्रामपि राजनैतिक यात्रां देशवासीनाम् अनन्यविश्वासाय समर्पयन् श्रीमोदी अवोचत् यत् वर्तमानशासनस्य नीतयः सर्वनागरिकाणां समस्यानां स्थायी समाधाने केन्द्रीकृताः सन्ति।
1: सबका साथ सबका विकास यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए। और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: भारत स्विट्जरलैंड देशयोः द्विपक्षीय वार्तायाः अंकीय प्रौद्योगिकी नवीन ऊर्जा आर्थिक विकास क्षेत्रेषु च गभीरा विचार विनिमय प्रक्रिया सुसंपन्ना। उभयोः देशयोः प्रतिनिधिभ्याम् अनुसंधान नवाचार क्षेत्रयोः सहयोगाय प्रलेखेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्य

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: हम कह रहा हूँ भैया,
0: हाँ हो सुमेर भैया।
1: देखा भाई एक बात, पंचायत से कहा एक बात है, खेती किसानी हो था
0: हाँ
1: और कथा फोत भाई हो, मैंने जाना था कि जमीन पे भूमि पे,
0: हाँ हाँ हाँ
1: और जमीन और भूमि अगर अच्छी नाई बा,
0: हाँ हाँ
1: ओकरे
0: हाँ
1: साथे वैज्ञानिक सोच व्यवहार नाई भा,
0: हाँ हाँ हाँ
1: थोड़ा बहुत दाएं बाएं भा भाई, तब माटी खराब हो जाता था, पीढ़ित का कमाई माटी अनुपजाऊ हो जाता था या खराब हो जाता था,
0: एकदम
1: और
0: सही
1: फिर
0: भैया।
1: ओका संहारे बनावे में बहुत समय लागत है।
0: हाँ भैया।
1: तो एक बात ही रहा कि भाई देखा अब धान कटत बाटे,
0: हाँ
1: जिनका
0: हाँ
1: अगर हाय कटते बा
0: हाँ हाँ हाँ
1: औरों पंचहरे कटी हैं, तो कमो कमो हो तो कहा कि मशीने से कटाई करावत हैं, तो ओकर खूंथी रह जाता है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: अब खूंथी अगर माना तो अमृत बा भाई,
0: हाँ हाँ
1: कड़ी
0: हाँ
1: खूंथी ना होते,
0: हाँ
1: अगर एक दुई पलेवा और मैं करवाए दिया
0: हाँ हाँ
1: तो भाई माटी पलट जा, तो खूंथी सर के खाद का काम करा था।
0: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात और है, जब किसान भैया बहनी हरे के भाई खूटी तो जो नहे भर के अपन गांव से जुताई देते हैं, कुछ किसान भैया बहनी हरे धान कटाई के बाद भैया का नाम से ओमन पराली रह जाता थे, और कम मेहनत करे बिदा वो का करते हैं भैया, ओमन आग लगा देते हैं, ओके जराई देते हैं, और जौने से ये है हो सुमेर भैया, उनकर जौन भैया खेते का उपजाऊपन है वो भैया बहुत कम हो जाता है, प्रभावित होता है। और ओमन सबसे बड़ी बात यह है कि जौन किसान भैया बहनी हरेन के मित्र कीट हैं भैया वो खत्म हो जाते हैं।
1: ये भाई देखा
0: हाँ
1: जैसे रोटी जरिया है तो मने ही मुंह बनवत है
0: हाँ हाँ
1: कि
0: हाँ
1: जरी रोटी बा कैसे खवाए,
0: कैसे
1: समझत
0: खवाए।
1: है ना,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो ऐसे माटी का अगर
0: हाँ हाँ
1: जरी गई ऊपर से
0: हाँ
1: भाई, धार लागे आग लागे तो जरबई करे,
0: जरिए। हाँ
1: तो जरी माटी कभो अच्छी फसल ना देते, समझत है ना।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ये कुल बात का पंचन का समझे का सबसे बढ़िया तो है
0: हाँ हाँ
1: कि ओकर वैज्ञानिक प्रबंधन करें,
0: हाँ हाँ हाँ
1: अगर खेत तनी ओत बा भाई गील बाटे तो एक दुई बाहों का बढ़िया जोतवा दी,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: खूंथी माटी के नीचे चली जात है, सरी जात है,
0: हाँ हाँ हाँ
1: ओकरे बाद बढ़िया खाद बन जात है।
0: हाँ हाँ
1: दूसर बात यह है
0: हाँ
1: कि जो कहा कि मित्र कीट जोन है, शत्रु कीट तो कम रह जाते हैं, मित्र कीट ज़्यादा रहते हैं,
0: हाँ हाँ
1: समझता है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ
1: केचुआ बाटे या तरीके से जो माटी को उपजाऊपन बढ़ावत है,
0: हाँ हाँ
1: माटी
0: हाँ
1: के संरचना बनावत हो, उन्हों आग
0: हाँ
1: के साथ ही झुलस के ख़त्म हो जाते हैं।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: कहा कि मतलब ये बा भाई कोनो तरीके से ये अच्छा ना बाटे, तो पंचर की चाहिए भाई कि पराली का प्रबंध करें वैज्ञानिक सोच के साथ में, कार्य व्यवहार के साथ में,
0: हाँ
1: ताकि उनकर माटी सुरक्षित रहे, अच्छी रहे और बढ़िया उत्पाद

0: धंधी समझता है ना।
1: हाँ भैया, अच्छा एक बात और है, कुछ किसान भैया बहनी हरे ऐसा नहीं कि पराली जो उन है भैया ओके इकट्ठा कराए के ओके भैया मन भूसा भी बना लेते हैं, जिसे भाई ओके दमा देते हैं तो कहा है कि जौन जानवर हैं भैया ओके भैया हरा चारा में मिलाई के भी ओके खिया सकते हैं। तो किसान भैया बहनी हरे के यह ध्यान देवे के है कि भैया ओकर एक एक चीज के उपयोगिता कैसे करे के हैं।
0: और सबसे बड़ी बात यह है भैया,
1: हाँ हाँ,
0: कि अगर खूंथी निकाल लेते हैं
1: हाँ
0: थोड़ के मेहनत का काम बाटे,
1: हाँ हाँ
0: ओकर इतना बढ़िया खाद तैयार होत है ना कंपोस्ट का,
1: अच्छा अच्छा
0: कि माटी के नीचे दबाई दिया हम केचुआ चुआ डाल दिया,
1: हाँ हाँ
0: तो एक महीना में जब तक गेहूं की तैयारी कर दिया ना,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तब तक तो इतना बढ़िया खाद तैयार हो जाता, खेत में छिड़क दे तो वाह वाह, समझता है ना।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो कहा कि मतलब ये बात है भाई कि पंचन का थोड़ का शरीर का विस्तार और दिमाग का विस्तार दोनों को एक जरूरत है,
1: एकदम भैया,
0: वैज्ञानिक सोच रखी का है तो खेती में फायदा बाटे।
1: हाँ हाँ हाँ
0: हम कहा एक बात और भाई, देखा कि जल जोन बाटे पानी,
1: हाँ हाँ
0: मान लो
1: हाँ
0: भाई तो बारिश का मौसम रहा है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: बारिश मजे के भाई साल,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पानी की दिक्कत ना आए आए
1: हाँ हाँ
0: मूल भाई, यही महीना दो महीना तीन महीना के फोफर पे
1: हाँ हाँ हाँ
0: फिर पानी की दिक्कत समझ में आवे लागे, जब जल स्तर एकदम नीचे चला जा पता चला तो भाई जो पंप है
1: पानी
0: हाँ
1: छोड़ता है।
0: पानी छोड़त बा, पट्टा उतरत बाटे तो पानी ना
1: हाँ
0: निकलत बा,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: कहा
1: हाँ
0: हो तो नीचे ले जावा जाए, तो
1: हाँ
0: पिए के पानी ना आए बा तो ओकरा उधा करावा।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: कहा कि मतलब ये बात है कि अगर आज से हम जल प्रबंधन के बारे में वैज्ञानिक सोच रखी, जल का बेकार न जाए दी
1: हाँ
0: समझत
1: हाँ
0: है ना,
1: हाँ
0: ओका रोक के रखी, तो जमीन का जल धारण क्षमता बढ़े, जल का अच्छी मात्रा रहे जमीन में,
1: हाँ हाँ
0: सिंचाई पताई पिए खाए के बड़े जल का दिक्कत ना हो
1: ना हो।
0: पाए।
1: अच्छा एक बात और है सुमेर भैया, देखे कहा है कि सरकार जोन है समय समय पे भैया जल के संरक्षण करे बेटा, तालाब जोन पुरान तालाब हैं ओके भैया खनवावत है और कम से ओके संरक्षण के भैया समय समय पे योजना भी ले आवत है। ऐसे ये है कि जोन कुछ किसान भैया बहनी हरे ऐसा नहीं कि जोन पुरान कुआँ है उमन भैया बरसात के भी पानी उमन डाल देते हैं जोन आवत है, तो उसे ये है कि जल स्तर उनका बना रहता रहन। और साथ ही साथ एक बात और है भैया, देखिए जल का स्तर जोन आप बतावत है नोमन सबसे बड़ा चीज़ यह है कि भैया हर किसान भैया बहनी हरन के पास तक पानी के पहुँचो जोन पानी पिए वाला पानी है,
0: हाँ
1: तो ओके विदा भैया सरकार जोन है कम से कि जल जीवन मिशन चालू की है और एकर जोन भैया मुख्य उद्देश्य ये रहन कि भैया जोन किसान भैया बहनी हरे हैं उन्हें पानी के नाम से शुद्ध पानी मिले और हर
0: और
1: क्यों के
0: दरवाजा
1: पानी
0: मिले भाई।
1: हर दरवाजा पे मिले। कहा है कि कुछ ऐसा जगह हैं जहाँ किसान भैया बहनी हरे इनके किलो 2 किलोमीटर तक भी जाए के पड़ता है, तो एकर भैया शुरुआत जौन है माननीय प्रधानमंत्री जी जौन है 15 अगस्त सन 2019 के एकर शुरुआत की हैं और जौन उनकर मुख्य उद्देश्य रहन भैया कि हर परिवार के सदस्य से कम 55 लीटर पानी मिले, तो मतलब उन्हें पर्याप्त पानी नहाए धोए खाए पिए के जो उनका रोज के मर्रा के भैया जल जीवन की जरूरत है वो पूरी होए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक बात कहें कि जो उन घरे घरे तो घरे घरे भैया पानी पहुँचे कि यह है कि कुछ किसान भैया बहनी हरे ऐसा नहीं कि भैया देखा एक बाल्टी पानी निकाले भी दें उन भैया पता चला समरसेबुल लगा हो तो पता चला एक ड्रम पानी बहता है, तो
0: ना
1: ऐसे
0: यूँ में भैया देखा रान लापरवाही बाटे, हम तो खुल के
1: हाँ
0: कहा था कि
1: हाँ हाँ
0: नल खुला बा पानी बहत बाटे,
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: सरकारी पानी हो,
1: हाँ
0: हाँ तो भाई सरकारी पानी ना हो पानी तो हार हो सब
1: हाँ
0: तो सुविधा के बड़े बाटे,
1: हाँ
0: और सरकारी ना हो तो भाई सरकार दे बाटे तो सुविधा ल ना
1: हाँ हाँ हाँ
0: खराब ना करा। दूसर बात यह है कि हम नल टोटी टूटी ये मान ले कोनो वजह से
1: हाँ हाँ
0: समझता है
1: हाँ
0: खराब हुई है,
1: हाँ हाँ
0: तो ओका भाई समय से बदलवाए लिया, ये ना
1: हाँ
0: है कि लखा था कि प्रधान जी यहीं तो बदलो यहीं तो काम चले,
1: हाँ
0: तो एमें का होता कि पानी भाई बेकार जाता,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: पानी बेकार ना ही जाता, अगले बगल में इकट्ठा होता, देखा था यहाँ समय में आदमी के जूड़ी बुखार और कतहूँ कतहूँ डेंगू का भी असर नजर आवत बाटे,
1: हाँ
0: ओकरे पीछे यह कारण बा कि पानी जब इकट्ठा होता
1: हाँ हाँ
0: शरत
1: हाँ
0: गन्हाथ मच्छर पैदा होते
1: हाँ हाँ
0: और काटे थे तो भाई तरह तरह के बीमारी होते समझता है ना।
1: हाँ हाँ
0: तो यहाँ कुल बातन पंचन का गौर विचार करे का है,
1: हाँ
0: सुविधा बाटे तो साथे साथ भाई तुहार सहयोग भी चाहिए हमें समझता है ना,
1: हाँ हाँ
0: तो यहाँ कुल बातन पंचन को देखा।

0: का कुछ भाई गीत गवने ही कभी बात हो जाए।
1: हाँ ताज भैया लोकगीत है राम कुमार निर्मल और संघाती के, विकास गीत है खेतवा बिन अहरा हुआ ना मिली। हम सोचे थे किसान भैया बहने सुनवा दिया जाए।

0: हाँ देखा हो भैया, लोकगीत
1: हाँ
0: रहन
1: हाँ
0: राम कुमार निर्मल और संघाती के, खेतवा बिन अहरवा न मिली है। अच्छा हम ये बात कहते रहे भैया, देखे आज दिन है बुधवार,
1: हाँ
0: तो किसान भैया बहनी रहे कि भैया देखे आज के दिन जौन है वो नीति वचन होता, और नीति वचन भैया ऐसा न है कि जौन किसान भैया बहनी हरिन के साथे साथे आम जनमानस भी अपने जीवन में ओके उतारत है, उससे उनके जीवन के सामाजिक विकास के साथ साथ भैया धार्मिक विकास भी होता।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो हम कहते रहे कि भैया आज जो नीत वचन है देवदत्त तिवारी भैया के, हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरिन को सुनवाई दिया जाए।
1: सुनवाए भैया।
2: नैतिकता की बातें, मानवता की बातें, इंसानियत की बातें, इसी के माध्यम से जनमानस को एक संदेश दिया जाता है। मानव को मानव बनाने की चेष्टा की जाती है। मानव के मन में उदारता, त्याग, बलिदान, समर्पण का भाव पैदा किया जाता है। यही नीति वचन का मूल सार है, नीति वचन का मूल तथ्य है। अब आप ध्यान दें, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संशय नीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संशय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष स्वयं अपने फलों का सेवन नहीं करता, नदियां अपने जल का सेवन स्वयं नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से दूसरों की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए अच्छे लोग पैदा होते हैं, अच्छे लोग करते हैं ऐसा काम। तभी तो कहा जाता है, अरे कोई मुश्किल नहीं इंसान का फरिश्ता बनना, कोई मुश्किल नहीं इंसान का फरिश्ता बनना। बनना इंसान का इंसान बहुत मुश्किल है, बनना इंसान का इंसान बहुत मुश्किल है। हम लोग आदमी बनकर जी लें, आदमियत अपने आप में लाएं, यही बहुत बड़ी बात है। नीति वचन का यही तो संदेश है। तुलसी पावस के समय, अरे तुलसी पावस के समय, धरी कोकिलन मौन, तुलसी पावस के समय, धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है, हम ही पूछी है कौन। यहां तुलसी बाबा ने प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग कर दिया है, बहुत अच्छी बात। इवे जो है एक मेढक और कोयल के माध्यम से समाज को नया संदेश देते हैं। एक शाब्दिक अर्थ इसका है कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल चुप हो जाती है, वो सोचती है अब तो मेढक बोलेंगे, मुझे कौन पूछेगा, हमारी मीठी आवाज को कौन सुनेगा। लेकिन इसी के माध्यम से कहा क्या जा रहा है, हमें आपको ध्यान इस पर देना है कि मूर्खों की मंडली में, मूर्खों की सभा में विद्वान लोग चुप हो जाते, जानते हैं अब तो मूर्ख चिल्लाएंगे, हमारी अच्छी बातों कौन सुनेगा, क्योंकि मानवता, प्रेम, उदारता की बातें यह बिगड़ता समाज नहीं सुन पा रहा है। नीति वचन यही आपसे संदेश देता है, आप कुछ सुनाता है। आगे सुनिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला इकयंग, तूलन ताहि सकल मिली, अरे तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अच्छी संगत में लोग कुछ सीखते हैं। विद्वानों ने तो यहां तक कह डाला है यार, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के सुख को तराजू के एक पड़ले पर रख दो और दूसरे पड़ले पर सत्संग, थोड़ी देर का सत्संग रख दो, दोनों में कोई समानता नहीं। जो सुख थोड़े सत्संग से मिलेगा, थोड़ी देर के ही सत्संग से मिलेगा, वह स्वर्ग और अपवर्ग के सुख में प्राप्त नहीं हो सकता। स्वर्ग और मोक्ष का सुख भी वह प्रदान नहीं कर सकता, याद रखिए। अच्छी लाइन।

नीति वचन का अर्थ संदेश, मंत्री गुरु और वैद्य दो, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नास। ध्यान दीजिएगा, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नास। अगर किसी राजा का मंत्री और उसका गुरु और डॉक्टर वैद्य अगर राजा के भय से बोलते हैं, राजा के डर से बोलते हैं, तो राज अगर मंत्री डर से बोलता है तो राज्य का अंत सुनिश्चित है, गुरु डर से बोलता है तो धर्म का अंत निश्चित, और वैद्य या डॉक्टर डर से बोलता है शरीर का अंत निश्चित है। इसलिए इन तीनों को कभी डर से नहीं बोलना चाहिए। नीति वचन का यह संदेश है, हम मानव को मानवता सिखाने का पाठ पढ़ाते हैं, जो हमारा संदेश है। आगे, नल की अरुणल नीर की, नल की अरुणल नीर की गति एक है करिजोय, जे तय नीचे होए चले ते तय ऊंचे होए। याद रखिएगा, सीखे इससे आप कुछ। नल माने पानी के कमल, और मनुष्य के और पानी के कमल की, और नल नीर की, नीर माने पानी, गति एक है कर जोए माने मनुष्य की, श्रेष्ठ मनुष्य की और पानी के कमल की, दोनों की स्थितियां एक जैसी है, उन्हें एक समान है। कैसे? जेते नीचे होए चले, मनुष्य या कमल, पानी का कमल जितना उसका झुकता है रूप, उतना उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। याद रखिए, कमल की सुंदरता सीधा खड़े होने में नहीं है, उसके झुकने में है। और मनुष्य जितना ही विनम्र होता है, मनुष्य में जितनी मानवता, प्रेम, उदारता आदि की भावनाएं पैदा होती हैं, उतना वह महान हो जाता है, उतना वह बड़ा हो जाता है, उतना वह श्रेष्ठ हो जाता है। ध्यान दीजिए, तभी तो कहा जाता है, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, साईं इतना दीजिए, अरे जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधन भूखा जाए। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे बस इतना तू दे, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ईश्वर, तू मुझे इतना दे, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हमारे अंदर लालच मत पैदा कर, हम लालची बनकर जीना नहीं चाहते। और हाँ, इतना अवश्य है कि मैं भूखा न रहूं, मेरा पेट भरता रहे, मेरे परिवार का पालन होता रहे, और मेरे दरवाजे से अगर कोई भूखा मनुष्य गुजरे तो मैं उसके पेट को भर सकूं, मैं उसका भरण पोषण कर सकूं, उसको नया जीवन प्रदान कर सकूं। यही नैतिक वचन है, यही नैतिकता की वाणी है। एक विद्वान ने लिखा है, आपको याद होगा, आज के समाज में आदमी चंद्रमा तक पहुंच गया है, लेकिन मानव से मानव के बीच की दूरियां बढ़ चुके हैं। याद रखो, आदमी चंद्रमा तक तो पहुंच चुका है, लेकिन मानव से मानव के बीच की दूरियां बढ़ चुकी हैं। तभी तो कहा जाता है, आदमी की भीड़ है, इंसान कोई ढूंढता हूं। आदमी तो बहुत है समाज में, इंसानियत लोगों में कम है। आदमी की भीड़ है, अरे इंसान कोई ढूंढता हूं। मंदिरों का शहर है, भगवान कोई ढूंढता हूं। मंदिरों का शहर है, भगवान कोई ढूंढता हूं। पेट की है आग, बस इसको बुझाने के लिए। बे आदमी, भूख लगती ही है ना, पेट की है आग, बस इसको

0: खाने के लिए है शराफत बेचनी, दुकान कोई ढूंढता हूँ। है शराफत बेचनी, दुकान कोई ढूंढता हूँ। आज के समाज में शराफत खरीदार है ही नहीं, इंसानियत को खरीदना नहीं चाहता। दो दिलों की दूरियों को याद रखो, दो दिलों की दूरियों को मैं मिटाने के लिए, दो दिलों की दूरियों को मैं मिटाने के लिए अरे आदमी की एक नई पहचान कोई ढूंढता हूँ। आदमी की एक नई पहचान कोई ढूंढता हूँ। मंदिरों का शहर है भगवान कोई ढूंढता हूँ। मंदिरों का शहर है भगवान कोई ढूंढता हूँ। हमारा नीत वचन संदेश यही देता है, इंसान को इंसान बनाने की चेष्टा करता है, उसके मन में इंसानियत की भाव पैदा करता है। और याद रखिए, अगर इंसानियत के भाव आप में नहीं है, आपके मन में नहीं है, तो आप एक श्रेष्ठ इंसान नहीं कहला सकते। तब वही तुलसीदास वाली बात रह जाएगी कि स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब कर यह रीति। क्या यही जगत है? क्या यही संसार है? क्या यह नीतिवाणी यही है? क्या नैतिकता का संदेश यही हम देते हैं? नहीं। ध्यान दीजिए, याद रखिए, जीवन क्षणभंगुर है। तभी तो कबीर ने कहा है, ऐसा यह संसार है, ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल। ध्यान देना, ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगन भूल। जैसे सेमल का फूल होता है ना, हवा का जरा झोंका आया उड़ गया, ऐसा यह जीवन है, ऐसा यह संसार है। कब जीवन समाप्त हो जाएगा यह किसी को नहीं मालूम है, यह कोई नहीं जानता। उसका जीवन कब समाप्त हो जाएगा किसी को पता नहीं है। कहा जाता है ना, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। जीवन 100 वर्ष का भगवान ने दिया है, पल की खबर नहीं है हम कब किधर चले जाएं। इसलिए दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगन भूल। अरे ईश्वर ने केवल 10 दिन का समय दिया जीने का यार, इसमें दिखावटीपन तो न लाएं, इसमें इंसानियत तो लाएं। नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग नाम पर थूकते हैं। नीति वचन इसी का संदेश दे रहा है, नीति वचन ऐसी वाणी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अच्छी लाइन है, मेरा एक संदेश है आपसे, ध्यान देना। सत्संग की महत्ता मैं बार बार कहता हूँ, नहीं तो आदमी का महत्व समाप्त हो जाता है। बस कुसंग चाहत कुशल कि ये रहीम बड़ सोच, बस कुसंग चाहत कुशल कि ये रहीम बड़ सोच। अरे महिमा भड़ी समुद्र की, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। याद रखो, कुसंग में आकर समुद्र, समुद्र विशाल है, महासागर है, लेकिन अगर किसी बुरे के साथ रह करके आप श्रेष्ठ होने की उम्मीद करते हैं, यह गलत। समुद्र रावण के समीप रहा, रावण के सानिध्य में रहा, उसकी महत्ता समाप्त हो गई। याद रखिए, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पुरुष। समुद्र की महिमा घट गई। क्यों घट गई? रावण जैसा राक्षस साथ रह रहा था। इसलिए सत्संग सर्वश्रेष्ठ है, और हम लोग इसी के माध्यम से, नीत वचन के माध्यम से, नैतिकता का संदेश, नैतिकता की वाणी, इंसानियत का भाव जन समाज में पैदा करना चाहता हूँ, लोगों के मन में भरना चाहता हूँ।
1: हाँ भैया, रानू।
2: हाँ भैया,
1: ये तो देखा नीति वचन रहा भैया।
2: हाँ हाँ,
1: अर्थाय समझाए के भैया बताएं।
2: हाँ हाँ,
1: कि भाई कौने दशा दिशा में कैसन का स्थिति हो था,
2: कैसे
1: बात व्यवहार करे के चाहिए।
2: हाँ हाँ,
1: तुम कहते भाई पंचेकर अनुपालन करें और जिंदगी का सुखमय बनावें। और एक बात और भाई की देखा, आलू और मटर,
2: हाँ हाँ,
1: ये दोनों भाई सब्जियन का जान हो थी
2: ना,
1: वो तो आदमी कहा था चला आलू मटर का सब्जी बने ली,
2: एकदम सही कह भैया,
1: मटर का बने ली।
2: हाँ हाँ,
1: तो भाई एक सा फसली खेती कैसे हो सका था, वैज्ञानिक सोच का बा कोने तरीका से करें ताकि दोनों फसल अच्छी रहे,
2: हाँ हाँ,
1: ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पावे।
2: हाँ हाँ।

0: देखा डॉक्टर अरुण कुमार से अपने विजय शंकर सिंह भैया बतियाना है,
1: हाँ हाँ
0: पंचरे
1: हाँ
0: सुन ले भाई।
1: ठीक है भैया, क्या हमसे सुनवाई दें।
2: देखा है समय हम सब धान के फसल में लगा हन, हो सकत है कि जौन बरसात अच्छी न होए के कारण हमार तुहार जौन धान के फसल अच्छी ना भय, ए खातिर आवे वाली फसल जौन है रबी के फसल है ओकर बेहतर हो, ए खातिर फसल के बारे में जानकारी अगर हम सबका होए तो बहुत अच्छा लाभ मिल पावत है। यहीं के जानकारी खातिर आज अपने बीच में हम आलू और मटर के जौन सह फसली खेती के बारे में बतावे खातिर डॉक्टर अजय कुमार भैया को बुलाए हैं। डॉक्टर अजय कुमार भैया आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले तो भैया हम ये आपसे जानना चाहब कि इस सह फसली खेती का बाटे और ऐसे हमारे किसान भैया हन का क्या लाभ हुई बताओ भैया।
1: सह फसली मुख्य फसल के साथ सह फसल को लेना है।
2: अच्छा
1: इससे
2: भैया
1: किसानों को उनकी भूमि से उत्पादन बढ़ाने में केवल सहायता नहीं मिलती बल्कि प्रति

0: हमार तुहार जौन धान के फसल अच्छी ना भय, ए खातिर आवे वाली फसल जौन है रबी के फसल है ओकर बेहतर हो, ए खातिर फसल के बारे में जानकारी अगर हम सबका हो तो बहुत अच्छा लाभ मिल पावत है। यहीं के जानकारी खातिर आज अपने बीच में हम आलू और मटर के जो सह फसली खेती के बारे में बतावे खातिर डॉक्टर अजय कुमार भैया को बुलाए हैं। डॉक्टर अजय कुमार भैया, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले तो भैया हम ये आपसे जानना चाहब कि इस सह फसली खेती का बाटे और ऐसे हमारे किसान भैया हनका का लाभ हुई बताऊँ भैया।
1: सह फसली मुख्य फसल के साथ सह फसल को लेना है।
0: अच्छा,
1: इससे किसानों को उनकी भूमि से उत्पादन बढ़ाने में केवल सहायता नहीं मिलती बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में क्षति के कम होने की संभावना बनी रहती है। इससे विभिन्न कृषि निवेशों की लागत में कमी लाई जा सकती है। इसके साथ भूमि में उपलब्ध तत्वों व सूर्य की रोशनी का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।
0: अच्छा भाई,
1: सह फसली खेती मुख्यतः दो फसलें, मुख्य फसल एवं सह फसल, जैसे आलू मुख्य फसल और मटर सह फसल के रूप में ले सकते हैं। सह फसल खेती में दोनों एक ही जाति की फसलें ना हो तथा दो फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का भूमि स्तर अलग अलग हो, साथ ही एक फसल की छाया दूसरे पर ना पड़े। दो फसलों में एक फसल दलहनी हो। जब आलू और मटर की सह फसली खेती की बात कर रहे हैं तो आलू कंद वाली फसल है तथा मटर दलहनी फसल है।
0: बिल्कुल भैया, देखा जाते मान ले अगर आलू और मटर के हम खेती कर रहे हैं तो कितना मात्रा में किसान भैया हरे आलू लगावा और कितना मात्रा मटर के रहा है कि उनका लाभ बढ़िया मिले।
1: देखिए, आलू और मटर की सफसली के रूप में बोने के लिए 3:2 के अनुपात में आलू और मटर की बुआई की जा सकती है। 3 पंक्ति आलू की और 2 पंक्ति मटर की।
0: अच्छा भैया,
1: इसमें आलू की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा मटर की पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाए।
0: अच्छा भैया, माने अगर यह प्रकार से हमारे किसान भैया हरे करी तो अच्छा उत्पादन मिली। हम कही भैया कि देखा खेत के चयन बहुत जरूरी होता है कि कह कौन प्रकार के माटी में एकर उत्पादन कीन जाए कि बढ़िया लाभ मिले, तो एक बारे में थोड़ा भैया बताऊँ।
1: देखिए, आलू की अच्छी पैदावार के लिए अच्छे जल निकासी वाली समतल एवं अधिक उर्वरायुक्त बलुई दोमट एवं दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है।
0: अच्छा भैया,
1: मटर के लिए भी इसी प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है।
0: अब भैया बात यह है कि जो खेत बांटे उनकर तैयारी कैसे किसान भैया करें।
1: आलू और मटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए 2-3 जुताई करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए। बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार कर लें ताकि बुआई के समय पर्याप्त नमी हो।
0: अच्छा अच्छा,
1: जिससे जो है अंकुरण अच्छा हो सके।
0: बिल्कुल भैया, खेत के तैयारी के साथ ही साथ बात ये आवत थी कि हम कौने किस्म के माने प्रयोग करी, कौने किस्म का बीज बोई कि बढ़िया उत्पादन मिले। तो सबसे पहले हम जानना चाहब कि जौन आलू के उन्नत किस्म बाटी वो कौन कौन ऐसा है कि जौने से किसान भैया अगर साथ में दोनों को बोवा था तो अच्छा लाभ मिली।
1: हाँ, आलू की कुछ अच्छी किस्में हैं, जैसे कुफरी बहार है, ये 90 से 100 दिन की प्रजाति है।
0: अच्छा,
1: जिसकी उपज करीब 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। कुफरी बादशाह है।
0: अच्छा,
1: जो 110 से 120 दिन की प्रजाति है, जिसकी उपज 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कुफरी पुखराज है, जो 90 से 100 दिन की प्रजाति है, जिसकी उपज 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है।
0: ठीक ठीक।
1: कुफरी सिंदूरी है, जो 110 से 120 दिन की प्रजाति है, जिसकी उपज 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है।
0: हाँ।
1: कुफरी सतलुज है, जो 100 से 110 दिन की प्रजाति है, जिसकी उपज 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। कुफरी आनंद है, जो 110 से 120 दिन की प्रजाति है, जिसकी उपज 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। इनमें से कोई भी जो प्रजाति उपलब्ध हो किसान भाई, उसमें से कोई भी एक प्रजाति ले सकते हैं ताकि उन्हें उपज अधिक मिले।
0: बिल्कुल भैया, हम कहें कि आलू की उन्नत किस्म में अगर ऐसे भैया हरे वही तो जरूर लाभ मिली। और साथ ही साथ जैसे हम लोगों सह फसली खेती ले का है तो मटर की कुछ ऐसे उन्नत किस्मन के बारे में बतावा जो बढ़िया उत्पादन दें।
1: इसमें सब्जी वाली मटर की उन्नत किस्में जो हैं काशी नंदिनी, बुआई के 60 दिन बाद पहली तुड़ाई, इसकी उपज 60 से 65 दिन 65 कुंतल प्रति हेक्टेयर
0: बिल्कुल
1: प्राप्त होती है। इसकी फलियां

0: मोटी तथा मीठी होती हैं।
1: अच्छा भैया,
0: दूसरी जैसे अर्किल है एक प्रजाति जिसमें बुआई के 60 से 65 दिन बाद पहली तुड़ाई कर सकते हैं। इसकी उपज जो है 50-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है।
1: हाँ भैया,
0: इसके पौधे छोटे फलियां 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी तथा 7-8 दाने वाली होती हैं।
1: हाँ हाँ,
0: इसके अलावा और भी प्रजातियां जैसे आजाद मटर 3 है, इसकी पहली तुड़ाई 70 दिन में किसान भाई कर सकते हैं और इसकी उपज जो है 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है।
1: हाँ,
0: इसी तरह से प्रजाति है VL7 इसकी पहली तुड़ाई जो है 65 दिन बाद की जाती है और इसकी उपज भी 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। एक और प्रजाति है जिसे मटर अगेता के नाम से जाना जाता है, इसकी पहली तुड़ाई 55 से 60 दिन में कर सकते हैं, इसकी उपज 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके अलावा एक और है प्रजाति आजाद मटर 1, इसकी पहली तुड़ाई 75 दिन बाद की जाती है, इसकी उपज 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और काशी शक्ति, इसकी उपज इसकी पहली तुड़ाई 75 दिन में कर सकते हैं और इसकी उपज जो है 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है।
1: अच्छा भैया, माने कि अगर बीजन के उपयोग करें तो सब्जी वाली खेती में जो मटर के है बहुत अच्छी हुई। साथ साथ भैया बात आवत है कि जैसे हम कौनो सब्जी साग सब्जी लगा रहे हैं तो हम कौन खाद डाली, कितना खाद डाली, एकर भी चयन जरूरी है। जैसे किसान भाई बहुत ज़्यादा कभी डाल देता, बहुत कम डाल दें तो उससे नुकसान होता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, जो माटी है वो को नुकसान होता है। तो खाद एवं उर्वरक के चयन, माने खाद कितना पड़े चाहिए, एक बारे में थोड़ा बताना।
0: देखिए, आलू और मटर की सह फसली अगर खेती करते तो आलू और मटर की अच्छी पैदावार के लिए अंतिम जुताई के साथ 20 टन सड़ी गोबर या कंपोस्ट खाद खेत में मिलाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके साथ 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 75 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में दें।
1: अच्छा भैया, साथ ही साथ बुवाई के बाद आवत है कि बुवाई के कौन समय अच्छा रही, एक बारे में थोड़ा बताऊँ।
0: हाँ, इसमें आलू और मटर की बुवाई अगर करनी तो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का समय जो है वो सबसे उपयुक्त रहता है।
1: बिल्कुल भैया, बीज के मात्रा हम किसान भैया हरे कितना डाली, ये जानकारी हम सब किसान भैया को हो चाहिए, तो एक बारे में थोड़ा जानकारी।
0: इसमें जो सह फसली खेती हम कर रहे हैं, आलू के लिए बीज की मात्रा 3:2 अर्थात 3 पंक्ति आलू और 2 पंक्ति मटर की के लिए ले रहे हैं, तो आलू का बीज 35 से 40 ग्राम वजन का या 3.5 से 4 सेंटीमीटर आकार वाले कंद के आलू बीज की मात्रा 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और मटर की 2 पंक्तियों के लिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का प्रयोग करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, साथ ही साथ बुवाई की विधि, जैसे सह फसली खेती ले रहे हैं हम लोग तो एक खातिर सह फसली खेती खातिर कैसे बुवाई की जाए, एक विधि का रहा है एक बारे में बताऊँ थोड़ा।
0: इसमें आलू की बुवाई जो है वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और जो कंद से कंद की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जो 35 से 40 ग्राम वजन का जो आलू होगा उसकी दूरी इस दूरी पर बोएं और मटर की बुआई जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, बात यह है कि जैसे हम लोग जो बीज लहे हैं ओकर बुआई करे खातिर तो का ओकर उपचारित करत जरूरी होता है, अगर उपचारित करत तो कैसे किन जाए, एक बारे में थोड़ा जानकारी।
0: आलू के बीज को सड़ने तथा रोग से बचाने के लिए अंकुरण से पहले 0.5% एग्लॉल 3 या एरिटॉन 6 500 ग्राम दवा को 1000 लीटर पानी में लेकर के घोल बना करके और आलू को जो कंद को 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करें।
1: बिल्कुल भैया,
0: मटर के बीज की बुआई से पहले थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या बावस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम से उपचारित करें तो फसल को भूमि जनित रोग से बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ राइजोबियम कल्चर को 10 किलोग्राम बीज के प्रति पैकेट कल्चर 50 ग्राम गुड़ के घोल में मिलाकर उपचार करें, छाया में सुखा करके इसके बाद मटर की बुआई कर दें। पहले फफूंदी नाशक दवा से उपचारित करें फिर राइजोबियम कल्चर से।
1: बिल्कुल भैया, हम कहे कि देखा आलू और मटर के सह फसली खेती के बारे में इतना बढ़िया जानकारी दी आप, हम सब किसान भैया ऐसे जरूर लाभान्वित हो। डॉक्टर अजय कुमार भैया आप आएँ, इतनी अच्छी जानकारी।

0: जानकारी हमारे किसान भाईजान का दीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ
2: और
1: देखा हो
2: अगर
1: सुमेर भैया,
2: हाँ भाई
1: वार्ता रहन आलू और मटर की सह फसली खेती, डॉक्टर अजय कुमार सिंह से विजय शंकर सिंह भैया का बातचीत रहन। और एक
2: कहती
1: बात
2: सनेस बाटे पंचर सुनने पे बात कही हुई
1: सुनवाए दे भैया।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ भैया,
2: देखा भाई, एक बात पंचन सिंह कहा बैठे कि अब एक तूर लगभग भाई तैयार हो चुका बाटे।
1: हाँ,
2: तो एक चीज तो यह है कि भाई कटाई मड़ाई और भंडारण।
1: हाँ,
2: अब धान का देख लें भाई कि जब धान पूरी तरीके से पक जाए, कमो कच्चा धान कटाई जाता था, तो फिर होकर बढ़िया न तो भाई दूध पड़ा रहा है उनमें, न पढ़ा था और न अच्छा बाजार मिला, न धान में चावल में चमक आवा था।
1: एकदम सही कह भैया।
2: तो एक तो ये कह लें भाई कि देख लें जब फसल पूरी तरीके से पक जाए।
1: हाँ,
2: अच्छा कभों कभों का हो था कि एक का ही अगर लापरवाही भाई
1: हाँ,
2: शुरू में बेहन डावत समय में, तो हो तो का कि कभों कभों एक ही खेत में दो तीन रकम का या दो रकम का धान लग जाता, तो कुछ पाक जात कुछ कच्चा ही रहा था, समझता है ना। तो ये देख लें भाई ओका अलग अलग करें, या बड़े के दोबारा ना मिल पावे
1: एकदम सही
2: नुकसान।
1: कह भैया। अच्छा एक बात और है, देखें भाई अजय कुमार भैया से बातचीत रहन विजय भैया का, उमन ये बताएगी कि भैया आलू और मटर के सह फसली खेती, तो उमन सबसे बड़ी बात यह है कि देखें इस समय किसान भैया बहनी हरे जिसे धान से काट के अगर खाली होते हैं, तो एक बात ये करें कि भैया जौन माटी है ओके भैया काम से जाँच करा लें, और माटी के जांच कराए कि भैया बहुत आसान है कि खेते के चारों कोनों से माटी ले लें भैया, और उसके बाद ओके ले जाए कि क्या उसे ब्लाक पे भैया जांच करा लें, और जांच कराए से भैया उन्हें ये पता चल जाए कि भैया नाइट्रोजन का मात्रा का है, कितना का उन खाद देवे के
2: हाँ,
1: है।
2: सोच मतलब
1: हाँ
2: पोषक तत्व का कुछ स्थिति है उन्हीं तरीके से कार्य व्यवहार
1: हाँ
2: करें।
1: अच्छा, और साथ ही साथ एक बात और है भैया, देखे किसान भैया बहनी हरे अपनी जो लगेती खेती है ओके भैया तैयारी करत हैं, तो जौन उन तैयारी करते हैं कि भैया जिसे जुतावत हैं अपन कम से घास नहीं करावत हैं और खेती के तैयारी करते हैं, अब धीरे धीरे भैया देखे जौन किसान हैं भैया अगेती आलू बोत हैं ओकर भैया वो तैयारी लगभग कर लिए हैं, तो किसान भैया बहनी हरन के ये जरूर चाहे कि भैया कम से अपनी खेती के माटी के जात कराए के साथे साथे भैया हरी खाद जौन है और जैविक खाद है एकर भी उपयोग करें, और एकर उपयोग करें और एकर उपयोग करके भैया काम से अच्छी फसल के पैदावार करें, और साथ ही साथ भैया जो अपन उनकर आमदनी है वो के दुगना करें। एक बात तो रहे भैया, देखे समय समय पे हम सभी किसान भैया बहनी हरण से एक बात जरूर काम से कही थे कि भैया जौन आपन प्रोग्राम है ये अपन पंचायत घर भैया आवत है उमन कोनो अगर सुझाव देवे चाहत हैं या कोनो काम से कार्यक्रम में ऐड करे चाहते हैं जुड़े चाहते हैं, तो भैया जो अपन व्हाट्सएप नंबर है वो है 800-4926-250। भैया एक बार हम फिर से नंबर बतावत ही 800-4926-250। सुमेर भैया देखे अब धीरे धीरे चली चले के बेला होता है, तो किसान भैया बहनी हरन से विदा लेवे के समय है, तो
2: अच्छा पंचो
1: राम राम, राम।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा समाधान पर केंद्रित है वर्तमान सरकार की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना।

0: रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण। कहा, जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। इस मौके पर आज उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल किया गया अनुभव उनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भारत के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का समय है। उन्होंने कहा कि समाधान पर केंद्रित दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही सेवा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में नए भारत के निर्माण में सफलता प्राप्त की है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 वर्ष में उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एक समर्थ और सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के हर नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में इस नए भारत का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। और इसलिए आज हर भारतवासी के लिए, हर उत्तर प्रदेशवासी के लिए गौरव का क्षण है।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में गुजरात के वडनगर से काशी तक निकाली गई बाइक सेवा यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, नेतृत्व, नीतियों और शासन मॉडल पर आधारित पुस्तकों का एक मंच पर लाने वाले नमो बुक फेस्ट जन वी का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में आयोजित सेवा ज्योति कार्यक्रम यात्रा में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में अभियान के अंतर्गत सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
3: इतना बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने के बावजूद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रुकने नहीं दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था जहां 2%, 1.5% और 3% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं पर विश्व में इतना बड़ा संकट पैदा होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 7.4% की दर से बढ़ रही है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में सेवा ज्योति कलश यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने सेवा

0: का संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिली है।
2: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपए का काम को गति मिली।
1: UPSTC के CEO मनोज सिंह ने बताया कि प्रगति की बैठकों के कारण जवाबदेही तय होती है।
3: PM प्रगति जो मीटिंग होती है उसमें प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं और एक ब्रीफ होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि इसे 4 साल में पूरा होना था। तो ये जब चीजें सभी डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट में आती हैं तो लोगों को पता होता है कि उनका रोल क्या है। मीटिंग होने के पहले 80-90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती
1: है। प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अके आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इसे 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से श्री आबे को विनम्र श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि 2027 में भारत जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे और ये गलियारा उस अमृत पर्व की पहली भेंट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की युवा ऊर्जा दोनों देशों के विकास को गति देगी।
4: आज लगभग 1400 जापानी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं। अब भारत जापान की साझेदारी भविष्य के क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच चुकी। जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टैलेंट, जापान के पास अनुभव है और भारत के पास युवा ऊर्जा।
0: कार्यक्रम में जापान की पूर्व प्रथम महिला अके आबे ने कहा कि काशी में आबे मेमोरियल का निर्माण इसलिए अहम है क्योंकि शिंजो आबे के मन में वाराणसी आने की प्रबल इच्छा थी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 सदस्यीय रणजी टीम का ऐलान कर दिया है। आर्यन जुएल की कप्तानी में टीम में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ लखनऊ के जीशान अंसारी, करण शर्मा, प्रशांत वीर, यश दयाल और कार्तिक त्यागी जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जगह दी गई है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में आज तेज हवा और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ जगहों पर तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा समाधान पर केंद्रित है वर्तमान सरकार की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण, कहा जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछार

0: खबरें पढ़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम बोलते नगमे। स्वर हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के, प्रस्तुति है नेहा गुप्ता की।

0: बोलते नगमे। दोस्तों नमस्कार, वंदना जी नमस्कार।
1: नमस्कार नेहा जी, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार।
0: देखिए कई बार क्या होता है कि हवाएं तो वही होती हैं जिसे हम वेवलेंथ बेतार के तार के जरिए हम श्रोताओं से मुखातिब होते हैं, है ना।
1: हाँ, ध्वनि तरंगे हमारी जो होती हैं वो सीधे दिल तक तरंगित होती हैं।
0: हाँ, जहन को निखारती हैं, सवारती हैं। ऐसे ही कुछ मुलाकात एक इंसान की और खुद से भी होती है। और जरा देखिए इस जीवन में हमारे कितने रूप बदलते जाते हैं ना।
1: और खास तौर पर ये तब ज्यादा होता है कि अगर हम कोई गीत सुन रहे हों, उस दौरान गीत क्या कुछ कह रहा है, उसके भीतर कौन से ऐसे जज्बात हैं जो हमारे दिल को छू रहे हैं, तो वो सिर्फ छूते नहीं हैं बल्कि हमारी कैफियत का भी जो रूप रंग होता है उसमें भी कई बदलाव दिखाई पड़ते हैं।
0: सच कह रही हैं। और जब हम लोग बोलते नगमे कार्यक्रम रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सिल्वर स्क्रीन जगमगाने सा लगता है और वो ब्लैक एंड वाइट कैमरे से, मैं कहूँ सिल्वर स्क्रीन से, इस तरह से कुछ भावों को बयां करते हैं, लगता है ओह दिल थाम कर बैठते हैं और गवाह बनते हैं भावों के सुंदरतम रूप की। तो वंदना जी, मैं आपको ये बात नहीं बताने वाली हूँ कि मैंने पहला गाना कौन सा सिलेक्ट किया है। गायक का भी नाम नहीं बताऊंगी और बोल भी किन्होंने लिखा है नहीं बताऊंगी।
1: मतलब कुछ नहीं बताएंगी आप?
0: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
1: चलिए फिर
0: ठीक
1: हो जाए
0: हो जाए।

0: ओहो,
1: अब ये दंगल है,
0: सुरों का,
1: सुरों का दंगल है
0: सुरीला दंगल।
1: और पहचानने का दंगल है।
0: नेहा जी, जब रफी साहब की ये जो गुनगुनाहट निकली है, इसने सारे रहस्य से पर्दा उठा दिया है, क्योंकि मैं इस गीत के बहुत करीब हूँ।
1: श्योर, लॉक
0: बिल्कुल,
1: कर दें?
0: लॉक कर दीजिए।
1: अगर हारी तो फिर क्या,
0: जो भी आप कहेंगी।
1: दूसरा गाना भी मेरी पसंद का होगा।
0: अच्छा, तो अगर मैं जीत गई तो दूसरा गाना मेरी पसंद का होगा।
1: ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि इसमें रफ़ी साहब हैं।
0: हाँ
1: रफ़ी साहब बहुत सारे गानों में हैं।
0: बिल्कुल, इसमें तो जरूर ही है नेहा जी।
1: अच्छा,
0: और बंगाल का जादू, उसकी खुशबू भी है साथ में, घुली मिली सी।
1: दोस्तों देखिए, वंदना जी को आधा ही जीतने देते हैं, आधा मैं जीत जाती हूँ। तो ये गाना जो है ना, मिस्टर मिसेस 55 का है। और बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, आवाज जैसा कि वंदना जी ने पहचान ही लिया कि रफी साहब की है, और जो फीमेल वॉइस है वो गीता दत्त की है।
2: उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर

0: जिस तरह से वो शब्दों को चेहरे के एक्सप्रेशन से निभा रही हैं, वो दिल पर जादू सा असर कर रहा है। और गुरुदत्त साहब की तिर्यक मुस्कान, आह क्या कहने उसके, और गीत के एक एक शब्द, ऐसा लगता है कहीं हमारी ही मन के भीतर छुपी हुई बहुत सारी जो भावनाएं होती हैं जिन्हें हम बहुत छुपा कर रखते हैं, उसको व्यक्त कर रहा हो।
1: और वी के मूर्ति साहब का जो ये
2: छायांकन है,
1: छायांकन है
2: बहुत सुंदर। जरा देखिए, बहुत सारा अंधेरा है और कुछ हल्की सी ही रोशनी है और उसमें जादू है। एक छोटा प्यारा सा घर है, उसमें बांस दिखाई पड़ते हैं और छाजन है
1: जी।
2: और उस सन्नाटे में जब प्रेम उभर रहा है, दिल की हलचल को महसूस किया है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और बोल को इस कदर उन्होंने लिखा है कि जो ये रंगीन दास्तां है, फिल्म बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, और उस ब्लैक एंड वाइट में मुझे लगता है कि प्रेम ही वो भाव है जिसने रंगीनियत को पहचाना है और लोगों को जगाने का काम किया है।

उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, क्या कहने। रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू और उसमें गीता दत्त जी की चंचलता शोखी, और उस शोखी चंचलता को धारण कर रही हैं मधुबाला। खूबसूरती तो बेमिसाल है ही है, लेकिन

0: क्या बात है, कयामत की तरह से बहार है और इंतजार करने की बेबसी है, मुश्किल है। और जो माथे पर बल पड़ रहे हैं गुरुदत्त साहब के, वो भी अपने आप में बड़े पुरकशिश से नजर आते हैं। और निर्देशन भी, प्रोडक्शन भी गुरुदत्त साहब का ही है। अबरार अलवी साहब की ये कहानी है, स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का है। और नेहा जी, लेकिन जी, ये जो सारी मधुरता सरसता हमारे चारों तरफ तरंगित हो रही है, उसे क्रिएट किया है ओपी नैयर साहब ने अपने संगीत के जरिए। क्या जादू की तरह से गीतादत्त गाती हैं, क्या तरंग है, कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने एक एक शब्द को महसूस किया है।
1: ये कुछ ऐसा है जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई सम्मोहन है। और मैं जब रफ़ी साहब को इस गाने में सुनती हूँ, रफ़ी साहब बहुत खोल के गाते हैं, लेकिन इसमें जब वो गा रहे हैं तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ ये बात उनको और जो उनकी प्रेमिका हैं उनको ही पता चले। कई बार इस गहराई से गाते हैं कि ये बात सिर्फ दो लोगों के बीच ही रहे। मुझे लगता है कि जो संगीत के साधक हैं गीता दत्त जी और मोहम्मद रफ़ी साहब, दोनों की आवाज़ बाकमाल बहुत सुंदर उभरी है और तभी तो आज भी जीवंत है ये गाना।

0: उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है।
1: नेहा जी,
2: जी
1: कितनी खूबसूरती का एहसास करा गया ये गीत, बहुत सारे भावनाओं से भी हम रूबरू हुए
2: जी।
1: लेकिन हाँ, अभी आपने टेस्ट लिया था थोड़ी देर पहले।
2: हाँ, मैंने सोचा कि ले लिया जाए,
1: ले लिया जाए ना। आप बीच में लेती रहती हैं, सोचती हैं कि कब थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी साबित हो जाए। लेकिन फिल्मों के बारे में, फिल्मी गीतों के बारे में तो शायद अभी आप भी थोड़ा सा
2: कच्ची है
1: नेहा जी।
2: पता है, मैंने एक कथन हमारे वहाँ पे बड़ा प्रचलित है, गुरु गुड़ हो गया और चेला चिन्नी हो गया। लेकिन कमबख्त एवरी Person has his day. ये कहावत है।
1: तो अच्छा, चलिए आपको एक मौका देते हैं।
2: अच्छा, ओह वाह,
1: ये एक तबले की धुन है, आपको सुनाते हैं। अगर आप संगीतकार का नाम बता दें,
2: अब मुझे ऑप्शंस मिलेंगे।
1: देखिए, ये रेट्रो सिनेमा का युग है, 78 में ये फिल्म आती है और बड़े ही संवेदनशील विषय को लेकर इस फिल्म का निर्माण किया गया। और हाँ, उस रेट्रो सिनेमा के युग में ये जो संगीतकार हैं, इन्होंने अपना परचम लहराया है। जब कभी भी उनके संगीत से सजा हुआ कोई गीत हमें सुनाई पड़ता है तो मन हमारा भी किसी और दुनिया में खो जाता है। तो बहुत कुछ हमने बता भी दिया है, तो चलिए ये थोड़ी सी झलक तबले की सुनाते हैं और फिर देखते हैं कि आप पहचान पाती हैं कि नहीं। दोस्तों, आप सब भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
2: और देखिए, चोरी तो नहीं कर रही,
1: नहीं चोरी नहीं, कि हमारे दोस्त क्या वहां तक पहुंच पाए हैं कि ये गीत कौन सा है, किस फिल्म का है। जी नेहा जी, जरा बताइए, क्या आप पहचान पा रही हैं ये किस संगीतकार का जादू है?
2: मैंने पहचाना।
1: बताइए।
2: ये आपने संगीतकार का ही नाम पूछा है सिर्फ ना?
1: जी,
2: पंचम दा।
1: वाह, क्या बात है,
2: चेला चिन्नी हो गया है।
1: शक्कर बन गई आप तो।
2: घर फिल्म का गाना है, रेखा। ऐसा लगता है जैसे खूबसूरती उन पर खुद को लुटा रही हो और ये कह रही हो कि हाँ, तुमने मुझे पा लिया है।
1: तो चलिए, अब स्क्रीन आपके सामने कर देते हैं और थोड़ा सा वॉल्यूम को तेज कर देते हैं और दोस्तों को भी सुनाते हैं इसका मुखड़ा।

0: ये जो खिलखिलाहट बरबस मेरे चेहरे पर बिखर गई है, जीत की, ये कहते हैं कि इस तरह की खिलखिलाहट का असर आपने गालों पर रूज नहीं लगाया है तो रूज लग जाता है
1: क्या
0: ना?
1: बात है, बिल्कुल
0: ऐसा ही कुछ देखे ना रेखा को, जब हम देख रहे हैं बहुत सुंदर नजर आ रही है, ऐसा लगता है जैसे लाल रंग जो उनके श्रृंगार का रंग है वो अपनी ओर खींच रहा है और एक ठहराव भी है इसमें, एक ऐसे प्रेम की बात हो रही है जो कहीं जाने की बात नहीं करता, छूटने या बिछड़ने की बात नहीं करता, वो ये कह रहा है कि बस महसूस करते हैं और किसी का होना कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, उसको जो फिल्माया गया है जिस तरह

0: से दिखाया गया है वो अप्रतिम है।
1: नेहा जी,
0: जी
1: गृहिणी का जो एक रूप होता है जो हम सब अपने मन में जहन में बिठाए रखते हैं, उसमें एकदम रेखा खड़ी उतरती हैं। कितनी तन्मयता के साथ वो पूरी तरह से डूबी हैं। एक प्रतीक्षा का जो रंग होता है उसमें कितनी सरसता घुली हुई है, क्योंकि वो प्रतीक्षा जब समाप्ति की ओर होगी तो किस कदर हसीन दिलकश ये शाम होने वाली है। तो वो जो एक उसका जो एक सौंदर्य होता है वो रेखा की आंखों में नजर आ रहा है। तो ये गीत इतनी सुंदरता के साथ गुलजार साहब ने, लगता है कि जज्बात की कलम को उन्होंने डुबोया है एहसास की स्याही में और ऐसा कुछ लिख दिया है दिल के कागज पर कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आ रहा है दूर तक। और क्या ही दिलकश बात है, दिल का अंदाज है कि बस किसी को याद भर किया और ख्यालों में उसकी खुशबू समा गई।

0: जब हम इस गाने की कुछ लाइनों को ज़रा गौर से देखें तो ये मालूम पड़ता है कि गुलजार साहब ने डिक्शनरी से सिर्फ कुछ ही शब्दों को लिया। तेरे बिना, बिन तेरे, तेरे बिना, मतलब ये दो शब्द हैं, वो उलटते हैं, पलटते हैं और इतना प्यारा सा गाना निकल पड़ता है। ये वही कर सकता है जिसको ये पता है कि भावों के प्रदर्शन के लिए सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ों से कमाल दिखा देना ही तो जादूगर होता है वो।
1: बिल्कुल सच कह रही हैं। और लता जी की आवाज़ को हम कैसे भूल सकते हैं। पवित्रता, पावनता का अद्भुत मिश्रण नज़र आता है, वो सीधे हमारी रूह को छू जाता है, आत्मा को छूता है और दिल के करीब, बहुत करीब इस गीत को हम लोग बसा लेते हैं सदा के लिए। जब जब ये रेडियो से धुनें सुनाई पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि इनके साथ हमारा जीवन कितना सरस हो जाता है। लेकिन नेहा जी, जब लास्ट में किशोर दा
0: गाते हैं, वो भी सुनते चले
1: जी।

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको जीने के लिए प्रेरित करते हैं और खुश रहने के लिए कहते हैं। ये गाना वैसा ही कुछ है ना
1: जी।
0: अब चलिए बोलते हैं नगमे में तीसरा गाना भी अपने दोस्तों को सुनवाएं, नहीं तो कहेंगे अरे

0: हर बार तीन गाने बजते हैं और आज दो ही गानों पर क्यों बात
1: हम लोग रुक गए हैं।
0: बिल्कुल नेहा जी, और तीसरा जो गीत है वो आपकी भी पसंद का है, हमारे भी पसंद का है, और कोई भी ऐसा शायद ही मुश्किल से मिले नेहा जी जो हिंदी गीतों का प्रेमी हो और ये गीत उसके फेवरेट लिस्ट में ना हो, तो ये एक जो आवाज उभरेगी जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, एक एंग्री यंग मैन जब वो कोई बात वो भी इस शायराना अंदाज में करते हैं तो वो छवि धूमिल हो जाती है और प्रेमी का जो एक रूप होता है वो उभर कर सामने आता है। तो सुनते चलें।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: बहुत सुंदर। मुझे लगता है जब इस गीत की कल्पना यशराज फिल्म के बैनर तले जब ये फिल्म लिखी जा रही थी, सोची जा रही थी, और जावेद अख्तर साहब को बुलाया जाता है कि भाई आपको एक प्रेम पूर्ण गीत लिखना है, और वो जो समय है वो बिल्कुल एक खास तरह का कन्वेक्शन नज़र आता है नायक और नायिका के बीच। आपको ध्यान रखनी है ये बात कि एक तरफ समाज है और एक तरफ नायक और नायिका की मोहब्बत है। जावेद अख्तर साहब कुछ शायरियों को लेते हैं और कुछ जो रिदमिक अंदाज है वो लता जी के लिए। ये प्रयोग इतना सुंदर, अनूठा, इसकी मिक्सिंग, जब आपने कहा कि आप एंग्री यंग मैन की आवाज़ सुनिए, मैं बिल्कुल सचेत हो गई थी। मुझे लग रहा था कि आप कुछ ऐसा जादू तो कर ही देंगी क्योंकि गुरु गुरु ही होता है।
1: अरे नहीं नहीं नहीं आजी, देखिए जादू तो हमारे जो गीतकार संगीतकार होते हैं वो रचते हैं, और इस समय जब जादू जो देख रहे हैं हम, सिलसिला फिल्म का ये गीत है, और सबसे ज़्यादा फिल्म अगर मैंने देखी होगी कोई एक से ज़्यादा बहुत बहुत बार, तो उस फिल्म में ये सिलसिला फिल्म आती है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस फिल्म की कहानी बुनी गई थी। अमिताभ बच्चन, जया बादली और रेखा का कॉम्बिनेशन जो कि थोड़ा सा दुर्लभ था, लेकिन जो अलग सा संयोग बना उसके पीछे स्मिता पाटिल का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मनाया जया भादुड़ी को भी, अमिताभ बच्चन को भी और रेखा को भी।
0: बहुत
1: तो
0: सुंदर।
1: सुनिए आगे क्या ये गुफ्तगू हो रही है दो दिलों की।
2: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

0: तू बदन है, मैं हूँ साया, तू नहीं तो मैं भी कहाँ। मतलब एक बहुत सुंदर रूप है। आपने गुलजार साहब का एक बार जिक्र किया था
1: जी जी
0: कि प्रेम हमेशा दो लोगों के बीच पनपता है।
1: हाँ, प्रेम एक तरफा नहीं होता,
0: एक तरफा नहीं होता
1: जी।
0: है। और इसमें जावेद अख्तर साहब, जो कि गुलजार साहब और अख्तर साहब दोस्त ही हैं
1: जी,
0: कितनी करीबियत की बात है कि उनकी लेखनी एक एक मोड़ पर आकर मिल रही है, बहुत सुंदर।
1: लेकिन ये जो पहाड़ी धुन सुनाई पड़
0: जी,
1: रही है,
0: हाँ,
1: संतूर जो एक वाद्य यंत्र और बांसुरी
0: जी,
1: इसका जो समन्वय है इतना खूबसूरत बन पड़ा है। और ये जादू इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि संगीतकार हमारे शिव हरि साहब हैं। 1981 की ये फिल्म है सिलसिला, इसी में ये जोड़ी उभरती है और बहुत सालों तक लोगों के दिलों को झंकृत करती है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सच में दिल झंकृत हो गया, समय बड़ा कम बचा है
1: जी।
0: कुछ चंद बातें और रह गई हैं दोस्तों। जब लता जी की आवाज़ में ये बात हो रही है कि शाम ढल रही है, कोई चंदन कोई खुशबू नहीं है, लेकिन ये प्रेम ही है जो सारी कुरूपता को बहा ले जाती है, उसको बदल देती है। वो जो सूरज ढल रहा है उसकी जो लालिमा है, जब प्रेमिका के चेहरे पर कैमरा आता है वही लालिमा नज़र आ रही है। और लता जी, आहा, ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती बैठी हुई हों और बड़े करीने से उन्होंने उनके गले को रचा हो और आशीर्वादित किया हो कि जाओ धरा पर तुम राज करोगी।
1: बिल्कुल सही कह रही है नेहा जी।
2: और आज की हमारी ये जो प्रस्तुति थी वो बहुत दिलकश थी, दिलफरेब थी, मिठास से भरी हुई थी। ज़रूर हमारे दोस्तों ने भी पसंद की होगी, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अब बात करने का समय नहीं है, क्योंकि समय हो गया है अब आप सबसे इजाज़त लेने का। तो दीजिए हमें विदा।
3: नमस्कार, बोलते नगमे।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे। स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के, प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। दोस्तों, लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, संगीत को आप बहुत खास पसंद करते हैं और संगीत की इस सुरीली यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि अपने इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हुए, हम आपको ले चलते हैं संगीत की खूबसूरत दुनिया में। आप जहाँ भी हैं, घर में हैं, सफ़र में हैं या काम के बीच, हम चाहते हैं आज की इस संगीत भरे खूबसूरत प्रोग्राम में आप मुस्कुराएं और अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी हंसी लेकर आएं। तो आइए अब कार्यक्रम के पहले गीत से जुड़ते हैं।

श्रोताओं कहते हैं कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, और ये लोकप्रिय सी कव्वाली आपने बहुत सुनी होगी रेडियो पर। आवाज़ें हैं अमीन साबरी, फरीद साबरी और साथियों की, और इसे हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुमसे।

दोस्तों, पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है। इन गीतों में बीते ज़माने की खुशबू, यादों की मिठास और दिल को छू लेने वाली सादगी होती है। तो आइए यादों की गलियों में थोड़ा सा घूम आते हैं और सुनते हैं एक सदाबहार नगमा। आपने बहुत पसंद किया है फिल्म जुर्म के इस गीत को। आवाज़ है कुमार सानू और साधना सरगम की, गीतकार हिंदी और संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, सन 1978 की खूबसूरत फिल्म अखियों के झरोखों से का संगीत और इसके मधुर गीत आज भी प्रेम की मासूमियत और भावनाओं की खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। कहते हैं मोहब्बत की कोई जुबा नहीं होती, बस आंखें बोलती हैं और दिल सुनता है। इसी मासूम प्रेम की कहानी को आवाज़ देता है अगला गीत। तो आइए यादों के उसी सुनहरे दौर में चलते हैं जहां प्यार में दिखावा नहीं सिर्फ सादगी थी, जहां मुलाकातें कम और इंतज़ार ज़्यादा था। तो पेश खिदमत है फिल्म अखियों के झरोखों से का बेहद खूबसूरत गीत। आवाज़ है हेमलता की, गीत संगीत है रविंद्र जैन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं आशुतोष श्रीवास्तव। लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये पारंपरिक रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान

0: विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनके यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25

0: साधारण अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
2: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
1: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और ईएफटीए के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with News at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientists duo Henri B. Caron and Ken Sosuai win 2026 Nobel Prize.

0: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
1: Welcome back. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi tomorrow. It will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. Prime Minister Modi has called for a free, open and rule-based global maritime order that brings greater peace and progress for all. Mr. Modi said this in a written message to the third edition of Sagar Manthan, the Great Oceans Dialogue, which is being organized by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and the Observer Research Foundation in New Delhi. The 2026 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to French chemist Henri B. Cargan and Japanese chemist Kenzo Soai for their pioneering discoveries of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis. The Royal Swedish Academy of Sciences today said Cargan and Soai solved a century-old mystery of how molecular asymmetry or homochirality can emerge spontaneously in nature. Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel will lead the Indian contingent as flag bearers at the opening ceremony of the Asian Para Games, which will get underway later this month. The games will be held from the 18th to the 24th of October at Aichi Nagoya in Japan, with athletes from across Asia competing in the grand sporting event. Para badminton star Pramod Bhagat has won 6 Asian Para Games medals, including 2 gold and 4 bronze between 2014 and 2023. Para table tennis player Bhavina Patel has also won 2 Asian Para Games medals, a silver and a bronze, between 2018 and 2023. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years, also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientist duo win 2026 Nobel Prize in Chemistry. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नजरिया साज पॉलिसियों और सख्त मेहनत के जरिए साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगा। उन्होंने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। भारत ने बहरे अस्वद खित्ते में कमर्शियल जहाजरानी पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि वो कयाम अमन के लिए रूस और यूक्रेन के साथ राबते में है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने में तावुन के लिए भारत की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। आरबीआई ने मौजूदा माली बरस के लिए जीडीपी की शरह तरक्की 7.1% रहने का भी तखमीना लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। फ्रांस और जापान के साइंसदानों की जोड़ी हेनरी बी कैगन और केंसो साय ने मोलिक्यूलर अदम तवाजुन के राज को हल करने पर 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम जीता है। और पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल इस माह के आखिर में जापान में शुरू होने वाले एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय दस्ते के परचम बरदार होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का

0: नाखाब नजरिया साज पॉलिसियों और मेहनत के जरिए जरूर पूरा करेगा। आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी तमाम शहरियों के मसाइल के हल पर मरकूज है।
1: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त था जब भारत का तस्करा कमजोर पॉलिसी के लिए किया जाता था, लेकिन अब दुनिया भारत की बढ़ती हुई ताकत और मुश्किलात का मुकाबला करने की उसकी सलाहियत के बारे में बात कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 12 बरस के दौरान हालात में यकसर तब्दीली आई है। जनाब मोदी ने कहा कि पहले भारत की दरामदाद बढ़ाने की कोशिशें की जाती थी, जबकि आज भारत बरामदाद के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस तरह की तब्दीली उसी वक्त मुमकिन होती है जब नीयत दुरुस्त और वाजे हो, नीज पॉलिसियां बेहतर तौर पर वजा की गई हों।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है, और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है, और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है, और इस अंथक अज्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि कैसे बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA जैसी पहलों के जरिए इस विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है।
2: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में COP21 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA का मुश्तरका तौर से आगाज किया था। यह आलमी बैन हुकूमती तंजीम तवानाई तक रसाई, तवानाई की सलामती और पायदार तरक्की के लिए शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए वक्फ है। ISA शमसी तवानाई से मुतालिक बैनुल अक़वामी इश्तराक के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आज 129 रुकन ममालिक शामिल हैं। पेरिस में COP21 के दौरान बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद के आगाज की मुश्तरका तौर पर सदारत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह इत्तेहाद शमसी तवानाई को किफायती, काबिल इन्हिसार और काबिल रसाई बनाने पर तवज्जो मरकूज करता है।
1: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद के डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना ने कहा कि ISA वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की अक्कासी करता है और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, रोजगार और तवानाई की सलामती के लिए मुल्कों को यकजा करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। भारत की क़यादत में ISA का मकसद सिर्फ तवानाई तक रसाई को बढ़ाना नहीं, बल्कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में नुमाया कमी लाना भी है। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने को एक सुनहरा और तारीखी दिन करार दिया। आज गुड़गांव में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुल्क में कई अहम काम अंजाम दिए गए हैं, जिनमें दफा 370 की मनसूखी, नक्सलिज्म का खात्मा और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आला तरीन सतह तक पहुंचाना शामिल हैं।
1: आज गरीब से गरीब घर में जन्मे हुए एक व्यक्ति ने अपने गुणों के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर और करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ में लेकर लगातार 25 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और वो व्यक्ति है हमारे प्रिय

0: नेता नरेंद्र मोदी जी।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करने वाले आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। नाइजीरिया, डोमिनिका, बेल्जियम, फिलीपींस, भूटान और बोत्सवाना के रहनुमाओं की जानिब से मौसूल होने वाले पैगामात का जवाब देते हुए वजीर आजम मोदी ने इन मुल्कों के साथ भारत की शराकत दारी और ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में पिछले एक दो दिन के दौरान बहरे अस्वद के इलाके में होने वाले सिलसिलावार हमलों की मजम्मत की है। नई दिल्ली में सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमलों से कमर्शल जहाजरानी को खतरा लाहिक होता है और समंदरी शोबे से वाबस्ता अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: कैप्टन स्मिथ मच्छर की सेहत के बारे में वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि वो इस वक्त अबू जहबी में हैं और तेजी से सेहतयाब हो रही हैं। उनकी सेहत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। रूस की फौज में मौजूद भारतीय शहरियों के बारे में तर्जुमान ने बताया कि दस्तियाब मालूमात के मुताबिक 259 भारतीय शहरियों को रूस की मुसल्ला अफवाज में भर्ती किया गया है। भारत की कोशिशों के नतीजे में इनमें से 139 भारतीय शहरियों को कबल अज वक्त फौज से फारिग कराया जा चुका है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने के लिए भारत की आमादगी के लिए उसके तई तशक्कुर का इजहार किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को इस बहरान के पुरमन हल के लिए भारत की तजावीज पेश करने की आमादगी की सताइश करता है। उन्होंने ये बात मॉस्को में भारत की जानिब से यूक्रेन तनाजे के पुरमन हल के लिए 3 हिस्सों पर मुश्तमिल तजवीज पेश करने से मुतालिक मीडिया के सवालों के जवाब में कही। उनका ये बयान यूक्रेन के वजीर खारिजा एंद्री सिबिहा की जानिब से भारत की तजवीज को 4 पेशकशों में वसी तर बताने के बाद सामने आया है। भारत के अलावा तुर्की, मिस्र और अमरीका ने तजावीज पेश की हैं। रूस यूक्रेन जंग अब अपने 5वें साल में है और इसकी वजह से हजारों शहरी हलाक जबकि लाखों बेघर हुए हैं। भारत ने मुसलसल तनाजे के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। तकरीबन 3.5 साल के वक्फे के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आज महंगाई में इजाफे को रोकने के लिए अपनी अहम पॉलिसी शरह में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। यह फैसला आलमी और जुग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान किया गया है। दो माही मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे का फैसला किया है। RBI ने पिछली मरतबा फरवरी 2023 में रेपो रेट में इजाफा किया था, जब इसमें 0.25% का इजाफा करके इसे 6.5% किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये कांग्रेस टेलीमुवासलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तिरा के शोबों में भारत की नुमाया पेशरफ्त को उजागर करेगी। इसके अलावा ये आलमी सतह पर तआवुन, सरमायाकारी और मालूमात के इश्तराक के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का मौजू है लामहदूद तौसी, जो भारत की डिजिटल जिद्दत तराजी, अगले सिलसिले की कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पर मबनी इकतसादी तरक्की की बढ़ती सलाहियतों की अक्कासी करता है। 4 रोजा ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है और इसे टेलीमुवासलात का महकमा और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुश्तरका तौर पर मुनक्किद कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 से कबल आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ के मकाम पर मोबाइल के मुवासलाती निजाम से मुतालिक एसोसिएशन GSMA के बोर्ड मेंबरान से बातचीत की। GSMA एक आलमी तंजीम है जो मोबाइल के इको निजाम को यकजा करती है। मोबाइल ऑपरेटर्स और मोबाइल इको निजाम और इससे मुंसलिक सनतों की तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी करती है। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक को सबकी शमूलियत और पायदार तरक्की का एक आला बनना होगा। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हुए चैलेंज का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस मसले के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी हल तलाश करने की जरूरत है। साल 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम फ्रांस के केमिस्ट हेनरी बी कैगिन और जापानी केमिस्ट केंसो साई को नामियाती केमिस्ट्री

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुई वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे हम VBG राम जी भी कहते हैं, वो ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसके तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक काम करने की इच्छा होने पर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है और ये व्यवस्था पहले की मनरेगा की 100 दिन की रोजगार गारंटी का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए, इस योजना के बारे में समझने के लिए, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ में हैं आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे VBG राम जी भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो बेहतर होगा।
2: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी, यह एक ऐतिहासिक एक्ट जो बना हुआ है, वह पूरे देश में लागू हो चुका है। एक

0: ही दिन में भारत देश के सारे ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत जी राम जी के सारे प्रावधान जो है वो लागू हो चुके हैं। उसके तहत अब तक पिछले 3 महीनों में लगभग 36 करोड़ से भी ज्यादा मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिसे कि हम परसेंटेज कहते हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा वर्कसाइट्स पर जो है विकसित भारत जी राम जी के काम चल रहे हैं और 2,34,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में ये जो काम है वो किए जा रहे हैं। 2.99 ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों ने जिन्होंने रोजगार मांगा उनको 15 दिन के अंदर अंदर यह रोजगार उपलब्ध किया गया है और लोगों की रोजगार की और आजीविका की कई सारी ये जो डिमांड्स हैं उनको तभी के तभी फुलफिल किया गया है। तो एक तरीके से 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी का राष्ट्रव्यापी जो शुभारंभ हुआ है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई और बहुत ही स्मूथली विकसित भारत जी राम जी लागू हो चुका है और सारे ग्रामीण उसका बहुत सही तरीके से 125 दिन की जो बढ़ी हुई रोजगार की गारंटी है उसका यूज कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा अब उसमें आगे जाते जाते कई सारे पहलू जो है हम लगा रहे हैं, जैसे कि नए कामों की जो सूची अभी अभी भारत सरकार ने नोटिफाई की।
1: रोहिणी जी, इस मिशन का उद्देश्य रखा गया था कि केवल रोजगार ही उपलब्ध न कराया जाए बल्कि कई अन्य काम भी हो, जैसे कि गांवों में जल संरक्षण हो, जल सुरक्षा हो, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिले, आजीविका से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिले और साथ ही जलवायु या फिर अत्यधिक मौसम से बचाव जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाए। इस दिशा में कैसे प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक जो सफलता प्राप्त हुई उसके बारे में बताएं।
0: विकसित भारत जी राम जी का अगर आप नाम ही देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, मतलब यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम जो है वो केवल रोजगार की बात नहीं करता है, वो रोजगार के ऊपर जाकर आजीविका की बात करता है, जिससे कि लोगों को केवल मजदूरी केवल रोजगार ना मिले परंतु स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध हो। और इसी को रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो अनुमेय कामों की सूची है। अनुमेय कामों की सूची में जैसे आपने कहा टोटल 375 काम जो है वो अनुमेय माने गए हैं विकसित भारत जी राम जी में जिसकी सूची जारी हुई। इन 375 कामों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्राथमिकता दी गई है तो वह है जल संरक्षण, वाटर सिक्योरिटी। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जल है तो कल है, कैच द रेन, ऐसे कई सारे कैंपेन्स जो है भारत सरकार चलाता है जिससे कि हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण विभाग के लिए, हमारे शहरी विभागों के लिए पानी की कमी ना रहे, वाटर सिक्योरिटी बनी रहे। इंडियाज वाटर विजन 2047 भी यही कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें पहले वाटर सिक्योर भी होना पड़ेगा। इसीलिए जल संधारण के जो कार्य है उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आप देख सकते हैं कि 128 ऐसे काम है 375 में जो कि जल संधारण के कार्य है, वाटर सिक्योरिटी के कार्य है और उसके बाद जो है ग्रामीण अवसंरचना के कार्य है और जो 111 ऐसे काम है जो ग्रामीण अवसंरचना के है, जिसमें कि सारी बुनियादी ढांचे में जो भी जरूरतें हैं ग्रामीण विभागों की, रोड हो गए, पुल पुलिया हो गया, खेत सड़क हो गए, किसी स्कूल की लैबोरेटरी की बिल्डिंग हो या क्लासरूम बिल्डिंग हो या टॉयलेट्स हो या फिर आंगनवाड़ी की बिल्डिंग हो, जो भी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ग्रामीण विभागों में है वह सारा 111 कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में आता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैटेगरी ऐड की गई है जिसे कि हम आजीविका मूलक गतिविधियां कहेंगे, जिसमें कि 98 काम उसमें शामिल किए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना जब करना पड़ता है तो उससे निपटने के लिए भी 38 ऐसे काम है जो कि इसमें ऐड किए गए हैं।
1: रोहिणी जी, अभी आपने 128 कार्यों का जिक्र किया जल सुरक्षा के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की जो स्थिति है थोड़ी सी ऐसी नजर आती है कि वहां पर काम करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा, साथ ही कृषि की जरूरतें भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहती है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि को ज्यादा ज्यादा लाभ मिल जाए। तो इनका जो निर्धारण किया गया है 128 कार्यों का, इनके पीछे क्या यही सोच रही है सरकार, कुछ और भी प्लान कर रही है जिससे लोगों को और भी लाभ मिलेगा?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम पानी की बात करते हैं तो उसके सेंट्रल स्थान पे हमारे फार्मर्स हैं, हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और इसलिए किसान ही और जलवायु और जल सुरक्षा ये दो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इसमें किसानों को केंद्र स्थान में रखकर ये बात की गई है कि जल सुरक्षा के कार्य जो है उनको प्राथमिकता दी गई है। और किसानी के साथ साथ हमने यह भी देखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस जिसे लचीलापन कहते हैं वो करने के लिए या फिर ड्रॉट प्रूफिंग की बात, इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव की वजह से कुछ एरियाज हमारे देश में एडवर्सली अफेक्ट होने की संभावना है, कुछ एडवर्सली अफेक्ट हो भी गए हैं, तो ड्रॉट प्रूफिंग की जो बात है, क्लाइमेट रेजिलियंस की जो बात है, यह भी हमारे पानी के संबंधित कार्य ऐड करते समय यह भी हमारे केंद्र स्थान में रहा है, सोच में रहा है और इसीलिए पानी के कामों को जो है प्राथमिकता दी गई है।
1: आपने ये जिक्र किया था कि मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 111 कार्यों को

0: प्रावधान किया गया है। तो इसमें 100 स्ट्रीट लाइट की बात है, स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, पुस्तकालय, स्कूलों के अतिरिक्त कक्षाओं या फिर अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाने की बात कही जा रही है। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में ये जो बदलाव लाने की अपेक्षा है, आपको लगता है कि हम इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो इनके माध्यम से और तेजी से बढ़ेंगे?
1: भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा उनको और भी अपने अवसंरचना को मॉडर्नाइज करने का एक एस्पिरेशन जो है हमारे गाँव के लोगों में है, और इसीलिए हमने उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वो काम तो केवल शहरी विभाग में ही होने चाहिए। ग्रामीण विभागों में भी जब वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेग्रीगेशन करके उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, यह एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण विभागों में भी अब बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें ग्रामीण अवसंरचना में कई ऐसे काम ऐड किए गए हैं जो कि हमारे बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केटर करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी। हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका जब प्रसंस्करण होता है, उसका जब प्रोसेसिंग होता है, तो वह उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्रामीण विभागों की बदलती हुई इन जरूरतों को केटर करने के लिए हमने कई सारे ऐसे मॉडर्न कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो इसमें ऐड किए हैं, और जो ग्रामीण विभाग को न केवल मूलभूत कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा परंतु ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जो है ताकत रखता है।
0: ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर विकसित ग्राम पंचायत का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के हम चलते हैं या चल रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए लाभप्रद होगा इन योजनाओं को लेकर के?
1: विकसित भारत जी राम जी जब हम कहते हैं तो उसकी शुरुआत में ही विकसित भारत आता है। ऑलमोस्ट 60-65% हमारी आबादी निखिल जी आज भी ग्रामीण विभागों में रहती है। विकसित भारत की कल्पना विकसित गांव की कल्पना किए बिना की ही नहीं जा सकती। इसीलिए विकसित ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे विकसित भारत जी राम जी के ऑब्जेक्टिव्स में कोर ऑब्जेक्टिव रहा है, और इसीलिए जब हम 375 अनुमेय कामों की बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी में, तो यह बहुत जरूरी है कि इन कामों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से नियोजन किया जाए इन कामों का, और इसीलिए विकसित ग्राम की कल्पना जब तक हम नहीं करते तब तक हम विकसित ग्राम पंचायत प्लान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में पहले तो विकसित गांव की कल्पना की गई है, और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की बात की गई है, जिन प्लान्स में ये 375 टाइप के काम भी आएंगे।
0: रोहिणी जी, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 98 काम निर्धारित किए गए हैं, और इसका जो हिस्सा है पिछले ढांचे में लगभग वो 1.1% था, अभी बढ़कर वो 26% हो गया। तो इस बड़े बदलाव से ग्रामीण रोजगार को स्थायी आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलने की किस तरह की संभावना आपको नजर आती है?
1: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम विकसित भारत जी राम जी का जो प्रोग्राम है वह केवल रोजगार देने वाला प्रोग्राम नहीं है, यह रोजगार के आगे जाके आजीविका की बात करता है, और इसीलिए पहले के प्रोग्राम में एमजी नरेगा में लाइवलीहुड के बारे में बात ही नहीं की गई थी, अगर थी तो भी केवल 1 या 2 बहुत ही कम 1% काम जो थे वो लाइवलीहुड एक्टिविटीज में आते थे। विकसित भारत जी राम जी वही परसेंटेज जो है अब वो 26% हो गया है। इससे पता चलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है विकसित भारत जी राम जी में इन अनुमेय कामों को शामिल किया गया है। मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि ये काम केवल नंबर्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारे किसान जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण विभागों में रहते हैं, और किसान कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, धान्य होता है या फिर फल होते हैं, सब्जियां होती है, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना एक बात है, अच्छा भाव दिलाना एक बात है, परंतु कई बार इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर सही तरीके से उसका भंडारण किया जाए, स्टोरेज किया जाए, सही तरीके से उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, या उसमें मूल्य संवर्धन किया जाए, उसमें वैल्यू एडिशन की जाए, तो हमारे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। और इसीलिए हमने लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में खाद्य प्रसंस्करण हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज हो, या फिर उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हो, ऐसे कई सारी चीजें हमने इसमें ऐड की है। अन्नदाताओं से अगर हम महिलाओं तक जाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं गांव में, ये दीदियां रहती है, लखपति दीदियां बन चुकी है या करोड़पति बनने की ओर अग्रेसर है, तो ये हमारी जो दीदियां हैं वह भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, परंतु उनके लाइवलीहुड एक्टिविटीज को अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत पड़ती है तो ऐसे काम भी अब हमने जो है विकसित भारत जी राम जी में अलाउ किए हैं। जैसे कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर कोई एक एंटरप्राइज करना चाहता है जिसके लिए कि उन्हें वर्कशेड की जरूरत है, तो अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से वह वो वर्कशेड बना सकती है। कोई एसएचजी चाहता है कि हम एक

0: नर्सरी रन करें जिससे कि प्लांटेशन को भी बढ़ावा मिले, वह भी कर सकता है। तो हमारी दीदियां, हमारे युवा और हमारे अन्नदाता, इन सभी के आजीविका के जरूरतों को केटर करने का जो सामर्थ्य इन 98 कामों में है जो कि हमारे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है।
1: श्रोता, हम आपको बता दें कि नारी शक्ति और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्यों को इनमें शामिल किया गया है। तो रोहिणी जी, ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा, तो क्या इनका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना है या फिर इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और दीर्घकालीन आजीविका से भी जोड़ने की व्यापक रणनीति बनाई गई है?
0: बिल्कुल सही कहा, 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो मिनिमम गारंटी दी गई है कि 125 दिन रोजगार मिलेगा। परंतु विकसित भारत जीराम जी यह कहता है कि हमारे दीदियों को या फिर हमारी महिलाओं को या फिर अन्नदाताओं को केवल 125 दिन का अकुशल रोजगार लेना ही उनका एस्पिरेशन नहीं है। वह चाहते हैं कि उनको दीर्घकालिक एक आजीविका के अवसर मिले, और वो करने की क्षमता जो है विकसित भारत जीराम जी के कार्यों में है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे ग्रामीण विभागों की बदलती हुई जरूरतें अगर आप देखें, तो अगर एक पैकेजिंग और ग्रेडिंग यूनिट भी अगर हम गांव में बनाएं जो कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन के लिए काम आ सकता है, मिनी फ्लोर मिल्स बनाए जाए, मार्केट यार्ड्स बनाए जाए, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कई विभागों में भारत दुनिया का बहुत बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और अगर हमारे पास मिल्क चिलिंग प्लांट्स अगर बन जाए, क्लस्टर लेवल पे भी बन जाए, तो भी हमारे युवाओं को, महिलाओं को और अन्नदाताओं को यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है फॉर टू गेन सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार से आगे बढ़ करके दीर्घकालिक आजीविका के लिए ये लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
1: रोहिणी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि नई अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से संपदा और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जैसे विषय भी शामिल किए गए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और सरकार इन विषयों पर लगातार ध्यान देती रही है। तो क्या ये संकेत इस बात का भी है कि बुनियादी ढांचे की योजना अब केवल पारंपरिक निर्माण कार्यों तक सीमित न रह करके अधिक समावेशी बनने जा रही है और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम एक टारगेट सेट करके बैठे कि हमें बहुत ही जल्दी अपने यहाँ से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहता है प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में, आपने सभी ने, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। तो हमारे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, इसीलिए ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गए या फिर और भी कई रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो है वो विकसित भारत जीराम जी में हमने शामिल किए हैं। तो यह एक अलग डायमेंशन जो है वो विकसित भारत जीराम जी में ऐड हुआ है। समावेशी होने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी पीछे ना छूटे, इसीलिए विकसित भारत जीराम जी में भी यह कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कैटल शेल्टर हो गया या कोई खेत तालाब हो गया, जो भी इंडिविजुअल एसेट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनमें हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो अंत्योदय वाले सेक्शंस है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की गई है। और जो भी एसेट्स बनेंगे वो सारे डिफरेंटली एबल फ्रेंडली होने के बारे में भी हमने जो है प्रावधान रखे हैं।
1: रोहिणी जी, जैसा कि आपने अभी बताया, तो मैं आपसे यहाँ पर ये जरूर पूछना चाहूंगा, जो वास्तव में सबसे कमजोर परिवार तबके के लोग हैं या अंतिम छोर तक के वाले जो लोग हैं, वो इन परिसंपत्तियों या रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको विकसित भारत जीराम जी के प्लानिंग में केंद्र स्थान पर रखने की बात की गई है। अगर आप विकसित ग्राम पंचायत प्लान का, जो एक अभी बहुत ही हाल ही में विकसित ग्राम पंचायत प्लान का एक फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया, और राज्यों के साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान जब बनेगा, तब जब यह एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होगा, ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा के माध्यम से एक साथ बैठेंगे और चर्चा के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से, वह यह तय करेंगे कि हमारे गांव में कौन कौन से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसी के साथ जब बात आएगी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की, तब जो है ग्राम सभा ही यह सूची बनाएगा कि ऐसे कौन कौन से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं जिनको कि यह इंडिविजुअल एसेट्स देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उनकी सूची जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से सभी के संज्ञान के लिए वहां पर पब्लिक प्लेस में उसे डिस्प्ले किया जाएगा, और जिनको भी यह बेनिफिट्स चाहिए वो उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनको अगर किसी को कुछ आपत्ति भी है तो भी वो उसमें दर्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक पारदर्शी और लोगों को केंद्र स्थान पर रखने वाली विकसित ग्राम पंचायत प्लान योजना बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जा चुका है। और आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में जो ग्राम सभाएं हुई उसमें पहला डिस्कशन विकसित ग्राम पंचायत प्लान को लेकर

0: भी हो चुका है।
1: रोहिणी जी, ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसमें प्रत्येक कार्य को विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर शुरू करने और ग्राम सभा से अनुमोदित करने की व्यवस्था की गई है। अगर व्यवहारिकता को हम समझें तो स्थानीय जरूरतों और तकनीकी रूप से व्यवहार परियोजनाओं के बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर तकनीकी क्षमताओं का ये कहें कि अभाव है या फिर वहां पर सीमित है वो व्यवस्थाएं।
0: मंत्रालय या भारत सरकार जब भी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सक्लूजन या ना कि किसी प्रॉब्लम का वो द्योतक बननी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज टू मेक द पीपल्स लाइव्स इजियर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है लोगों की, उसको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मंत्रालय करता आ रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह दो प्रकार से किया जा रहा है। मैं यह कहूंगी कि युक्त धरा नाम का जो पोर्टल हमने इसरो के एसोसिएशन में उनके साथ मिलकर जो बनाया है, वह युक्त धरा पोर्टल हमारे पंचायत सेक्रेटरीज या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्राम पंचायत प्लान बना रहे हैं जो कि ग्राम सभा से ही अनुमोदित होगा, वहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे कि अगर आपके गांव में एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक, तो वह चेक डैम कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने से वहाँ सबसे ज्यादा पानी रुकेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा होगा, इसका सजेशन दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सजेशन जरूर मिलेगा जिससे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव एसेट होगा, परंतु अल्टीमेटली उसको अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वह ग्राम सभा के पास ही रहेगा। तो ग्राम सभा केंद्र स्थान में है, परंतु एक पोर्टल है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मदद करेगा। वह एसेट्स के दोहराव को भी रोकेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता इंश्योर करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को फास्टर करना, मोर एफिशिएंट करना, और यह करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इसकी वजह से छूटे ना, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्लूजन। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होता है कि अगर कोई टेक्निक फेल हो जाती है कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, तो वहां पर हमारा अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या रहेगी।
1: श्रोताओं को बता दें कि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से डिजिटल निगरानी और विभिन्न योजनाओं के निवेश के अभिसरण की बात कही गई है, और ये प्रणाली जमीन पर कामों के दोहराव को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी साबित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रोहिणी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहली बार इस तरह से आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए भी 38 कार्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसमें कि बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए कितने काम किए जा रहे हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे?
0: 38 काम ऐसे है जो पहली बार यह कैटेगरी ऐड की गई है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। यह एक सेपरेट कैटेगरी कभी नहीं थी जिसमें कि आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उन्हें टैकल करने के लिए पहली बार यह एक सेपरेट कैटेगरी ऐड की गई है जिसमें कि 38 काम है। हमारा देश, जैसे कि निखिल जी आप जानते हैं, बहुत बड़ा है और हर एरिया की एक अलग वल्नरेबिलिटी होती है। कोस्टल एरियाज है जहाँ पे साइक्लोन प्रोन कुछ एरियाज है, भूस्खलन के लिए वल्नरेबल कुछ एरियाज है, जहाँ पे बाढ़, सूखा, ऐसे अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए हमने यह 38 काम जो है इसमें ऐड किए गए हैं। कुछ काम इसमें ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके चलते फॉरेस्ट फायर्स की भी घटनाएं कई बार सामने आती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के मेजर्स जैसे कि फायर लाइंस हो गए, फ्यूल बफर जोन्स हो गए, वो भी अब ऐड किए गए हैं। जैसे कि फ्लड रिलीफ के शेल्टर्स, कई बार फ्लड आता है तो स्कूलों में या कहीं और लोगों को रखना पड़ता है, वो ना हो इसीलिए फ्लड रिलीफ शेल्टर्स, रिटेनिंग वॉल्स, एम्बैंकमेंट्स का स्ट्रेंथनिंग, ऐसे भी कई सारे काम जो।
1: रोहिणी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि 375 स्वीकार्य कार्यों का इतना व्यापक दायरा है, निश्चित रूप से कई सारे विकल्प हमारे सामने रखता है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन की जटिलता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो सरकार इस विस्तार के साथ गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है या करेगी?
0: सरकार ने विकसित भारत जीराम जी के एक्ट कई सारे गुणवत्ता मूलक गतिविधियां जो है वो एक्ट का ही पार्ट है, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे कि हमने देखा है कि एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उनको इसके लिए जवाबदेही माना गया है। पंचायत केंद्र स्थान पर है, कार्य योजना वही बनाएगी, विकसित ग्राम पंचायत योजना, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, वह इस कार्य योजना के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की हर एक स्थान पर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है।

0: जो कि एक्ट का ही एक पार्ट है, और सोशल ऑडिट की जो व्यवस्था है जिसमें कि गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकसित भारत जी राम जी में उनकी निगरानी करेंगे, तो उससे भी गुणवत्ता में जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता का मॉनिटरिंग होगा। ऑल्सो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं जैसे कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसका त्रिस्तरीय जियो टैगिंग करना पड़ता है, जैसे कि काम होने से पहले एक बार, जब काम हो रहा है तब एक बार, और काम होने के बाद भी एक बार जियो टैग करके फोटो अपलोड करना पड़ता है। जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की आपने बात की, तो एक डिजिटल निगरानी के लिए वह एक बहुत अच्छा साधन बनेगा जिससे कि पता चलेगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से पंचायतों में कौन से कैटेगरी के कितने कार्य जो है वो चल रहे हैं, कितने अभी पाइपलाइन में है। तो आगे जाकर ये निगरानी की व्यवस्था और भी बेहतर होगी, और राज्यों को इसके लिए पूरी तरीके से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है कर रही है। अभी हमारा नेशनल लेवल पे 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई, और फिर राज्यों में भी हुआ राज्य लेवल पे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हमारा NIRDPR का संस्थान है उसके माध्यम से भी बिल्कुल गांव लेवल तक की कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य चल रहे हैं। जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो सरपंचस हैं, हमारे पूरे देश में जितने प्रधान और सरपंचस हैं, उनके लिए भी हमने पंच सम्मेलन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे कि आज तक लाखों जो है एरियाज में पंच सम्मेलन जो है किए गए हैं, जिससे कि हमारे सरपंच और प्रधान भी जाने कि उनका विकसित भारत जी राम जी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उससे यह जो जटिलता आपको अभी लग रही है वह जरूर सिंप्लीफाई होगी।
1: जी बिल्कुल। और रोहिणी जी, वैसे आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन को स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ऐसे कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया होना जरूरी होती है जब भी कोई आपदा आती है, और समय पर उसमें रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात होती है, तो संतुलन कैसे बनेगा? ये
0: सेक्शन 7 जो है विकसित भारत जी राम जी का, वह ऐसे आपदा के समय पर किस टाइप के रिलैक्सेशन आपको एक्ट देता है उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट ने जो है वो आपदा को टैकल किया है, ऐसे मुझे लगता है। अगर एक जगह से विस्थापित होना पड़ता है लोगों को बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलमिटी, तो यह कहा गया है कि उनको टेम्पररी जॉब कार्ड्स भी देकर तभी के तभी जो है उनको लाइवलीहुड की, उनके रोजगार की व्यवस्था वहीं पर की जाए। कई काम जो अदरवाइज अलाउड नहीं है, ऐसे काम भी लिए जाने की पॉसिबिलिटी जो है नेचुरल कैलमिटीज में हो जाती है। जो गारंटीड वर्क डेज है 125, वह बढ़ाकर देने की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है अगर कोई आपदा आती है तो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है, हमारे विकसित भारत जी राम जी पोर्टल के माध्यम से। अगर आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आज भी दिखा सकती हूँ कि कौन से पंचायत में कितने लोगों का आज हाजिरी लगा है, कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह पता चलता है कि आज कौन कौन काम पर आया और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो फिर एक साइड में आपदा के लिए हम रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी हमें पता चलेगा कि अगर आपदा आई है तो कहाँ पर आई है, कहाँ पर लोगों ने काम किया है, कहाँ पर कौन कौन से रिलैक्सेशन अवेल किया है, तो यह बैलेंस इसी तरीके से बनाया जाएगा।
1: रोहिणी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य हमें दिया है, और हम भी वीवी जी राम जी को 2047 के विकसित भारत के व्यापक विजन के साथ जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं। तो अगले वर्षों में या अगले एक दशक की हम बात करें तो किस रूप में विकसित होते हुए आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा है आने वाले एक दशक में? क्या ये सिर्फ ग्रामीण रोजगार का एक कार्यक्रम रहेगा, या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ देश का जो एक टिकाऊ विकास होना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, उसमें भी काफी हद तक मदद मिलेगी और हम सफल होंगे?
0: विकसित भारत जी राम जी के नाम में फिर से जाने का मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि विकसित भारत बनाना है, और इसीलिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बन रहे हैं जिसके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। तो ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव तो विकसित भारत बनाने का ही है, और वो विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से ही विकसित भारत जो है बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा 5 साल का 7 साल का, तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन जैसे ने कहा, अगले दशक में अगर हम देखेंगे तो वीबी जी राम जी के माध्यम से पंचायतें पूरी तरीके से सैचुरेट होती हुई हमें दिखेगी, पंचायत पूरी तरीके से विकसित होती हुई दिखेंगी। हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वह रोजगार से आगे जाकर के आजीविका और हाई इनकम की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे थ्रू विकसित भारत जी राम जी।
1: रोहिणी जी, इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का हमारे देश के ग्रामीण युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन या ऐसे लोग जिन्हें इनकी जरूरत है, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें

0: अप्रोच करनी चाहिए?
1: 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो इसमें एक मिनिमम चीज है, ऐसा मैं कहूंगी। विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों को केवल ना देखें, विकसित भारत जीराम जी में जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, और भी पिछड़े तबके वाले जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन्होंने भी विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों के साथ साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर देखें तो गांव के विकास को संपूर्ण बनाने की क्षमता विकसित भारत जीराम जी रखता है। पूरी तरीके से अगर उसका यूज किया जाता है तो वह विकसित भारत की ओर जाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा।
0: रोहिणी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो इस योजना के साथ साथ हमारी जो अन्य तरह की विकास की योजनाएं होती जिनका हम लाभ उठा सकते, खासतौर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं?
1: निखिल जी, विकसित भारत जीराम जी में कन्वर्जेंस की बात करी है, इसीलिए आपने जो पूछा वह बहुत महत्वपूर्ण है। अभिसरण के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको वीबी जीराम जी में 90 से 95 दिन का रोजगार भी उसके साथ मिल जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, हमारी दीदियां, जैसे मैंने कहा, लखपति दीदियां बन रही है और वो हायर एंटरप्राइजेस की ओर अब जा रही है। तो दीदियों से भी ये अनुरोध है, जब आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही है तो वीवी जी राम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास पा सकते हैं, कौशल पा सकते हैं और उसको कई सारे उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं। मुद्रा लोन अवेल करके वह कई सारे अपने खुद के एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने उठाना चाहिए।
0: श्रोताओं, भी हम बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे से, जिन्होंने विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में तमाम विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद निखिल जी,
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए।

फिल्म संगीत। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब दिल में बहुत कुछ होता है मगर कहने के लिए शब्द नहीं होते। किसी की याद आंखों में नमी बनकर उतर आती है और दिल बस यही पूछता है, आखिर उसके बिना जिए तो जिए कैसे। दिल ही तो है, दिल ही तो है, न संगो खिस्त दर्द से भराए क्यों। इश्क में दर्द भी है, इंतज़ार भी है और ऐसी तड़प भी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। तो आइए सुनते हैं फिल्म साजन का बेहद खूबसूरत और दर्द भरा गीत।

लीजिए अब सुनिए फिल्म लावारिस का गीत, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। कुछ रिश्ते वक्त की धूल में भी अपनी खुशबू नहीं खोते, कुछ लोग दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते। प्यार में दूरी हो तो इंतज़ार जन्म लेता है, और इंतज़ार जब लंबा हो जाए तो धड़कन एक सवाल बन जाती है कि क्या वो फिर से लौट आएगा। कभी कोई अपना बरसों बाद सामने आता है तो लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो, जहां हमने आखिरी बार उसे अलविदा कहा था। इन्हीं बिछड़ने और फिर मिलने की खूबसूरत भावनाओं को अपने सुरों में समेटे है हमारा अगला गीत, लीजिए सुनिए।

कहते हैं प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो बिना दस्तक दिए दिल में उतर आता है। कभी किसी की मुस्कान अच्छी लगने लगती है तो कभी किसी की आवाज़ दिल को छू जाती है और फिर दिल खुद से ही पूछ बैठता है, ये क्या हो रहा है मुझे, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। नज़र मिली तो लगा कोई अपना है, दिल धड़का तो लगा कोई सपना है। बात कुछ भी नहीं थी फिर भी दिल ने कहा शायद यही प्यार का पहला अफसाना है। तो आइए इसी मासूम एहसास और दिल की पहली हलचल को महसूस करते हुए सुनते हैं फिल्म रंग का ये खूबसूरत नगमा।

कहते हैं इश्क में इंतज़ार भी एक खूबसूरत एहसास है, जिसे दिल से चाहा हो उसकी राह तकना भी मोहब्बत का एक अंदाज़ है। उम्मीद हो तो किसी के लौट आने की, इंतज़ार हो तो किसी ख़ास के आने की, और प्यार हो तो ऐसा कि दिल हर पल उसी का नाम गुनगुनाए। तो आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, ये था आज का फिल्म संगीत। कार्यक्रम को हम समाप्त करें उसके पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। श्रोताओं, आज 7 अक्टूबर है और आज के ही दिन जन्म हुआ था दुर्गा देवी बोहरा, जिन्हें प्रेम और सम्मान से दुर्गा भाभी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की साहसी क्रांतिकारी महिलाओं में आप अग्रणी थीं। आपका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, यहाँ पर ही एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका विवाह भगवती चरण बोहरा से हुआ, जो स्वयं एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ी थीं, क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहीं। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों का सहयोग किया। 1928 में लाहौर से भगत सिंह को सुरक्षित निकालने में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी के रूप में यात्रा की और अपने छोटे बेटे शची को भी साथ रखा था। उस समय उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियार और धन जुटाने में सहयोग किया था। भगवती चरण बोहरा की मृत्यु के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रहीं। दुर्गा भाभी ने लाहौर में एक स्कूल चलाया और बाद के जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देती रहीं। हम आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग था यमन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने

के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ

0: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye. सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: The Prime Minister said, India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that earlier efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in the last 1 or 2 days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that such attacks threaten commercial shipping and endangers the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royd Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were 3 Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them got injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo-flagged ship, Alpha Vatan, also came under attack yesterday. Expanding on India's broader diplomatic efforts to address the root cause of regional volatility, Mr. Jaiswal emphasized that New Delhi's ongoing communication channels with both Moscow and Kyiv. Meanwhile, Russia has expressed gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said, Moscow appreciates New Delhi's willingness to offer ideas aimed at finding a peaceful solution to the crisis. After nearly 3.5 years, the Reserve Bank of India, RBI, today raised the key benchmark